0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026। सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें नेहा बेनीवाल आपके साथ रहेंगी। सुबह 7:05 पर भावना नैयर के साथ आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसमें दिल्ली शहर की जानकारियां आप सुनेंगे और साथ ही साथ अन्य जानकारी भी आप सुन पाएंगे गीत संगीत के साथ। सुबह 8:00 नेहा बेनीवाल आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। भावना नैयर आपके लिए लाएंगी कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने सुबह 9:00। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक और साथ ही साथ कुछ पुराने गीत। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अंग्रेजी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आवर, जिसमें अदिति बिष्ट आपके साथ होंगी। इस कार्यक्रम में आप इंग्लिश गीतों का आनंद ले सकते हैं। सुबह 11:05 पर ज्योतिका सिंह आपके लिए लेकर आएंगे बॉलीवुड जगत की खबरों का कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। दोपहर 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम प्ले इट कूल का समय रहेगा, इसमें अदिति बिष्ट आपके लिए कार्यक्रम लेकर आएंगी। दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन, इसमें ज्योतिका सिंह आपके साथ रहेंगी और आज का विषय रहेगा ड्रग एडिक्शन। दोपहर 2:00 का समय रहेगा कार्यक्रम आशियाना का और साथ में इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आरोग्य पथ शीर्षासन पर भी जानकारी, कंचन कनन इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे। दोपहर 3:00 का समय रहेगा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का, ये फोन इन कार्यक्रम है, शैली भसंजना इसमें आपके साथ रहेंगी। इसमें विषय रहेगा डीलिंग विद ऑस्थराइटिस का, इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर दीपक जोशी। शाम 4:05 का कार्यक्रम रहेगा अल्फा जैन का, कंचन कनन इसमें आपके साथ रहेंगी। शाम 5:05 पर शैली आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम सिटी लाइट्स। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे रामा यादव के साथ कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स, इस कार्यक्रम में आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं और साथ ही साथ संदेश भी भेज सकते हैं। शाम 7:05 का समय रहेगा अंग्रेजी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक यू आस्क्ड फॉर इट, इस कार्यक्रम में

मल्लिका दास आपके साथ रहेंगी। रात्रि 8 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती का। इसमें आप नॉनस्टॉप डांस हिट्स का मजा ले सकते हैं। रामा यादव इसमें आपके साथ होंगी। रात्रि 9 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम आपकी याद आती रही मुक्ति सैनी के साथ। इस कार्यक्रम में आप 90s के गीतों का मजा ले सकते हैं। रात्रि 10:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम लिपिका दास के साथ और रात्रि 11:05 पर सजेगी गजलों की महफिल रंगे महफिल मुक्ति सैनी के साथ। तो ये थी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलरमरो मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक

उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 6:05 हो चुके हैं और प्रोग्राम सुप्रभात में आज नेहा है आपके साथ। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार ते सत श्री अकाल। आशा करती हूं कि आप सभी का जीवन बहुत ही ज्यादा खुशियों के साथ भरा होगा और एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। और ये बात हम सभी जानते हैं कि हर दिन अपने साथ एक नया पन्ना लेकर आता है। उस पन्ने पर हम क्या लिखें और क्या ना लिखें, ये कई बार हमारी सोच, हमारे व्यवहार और उन छोटे छोटे पलों पर भी निर्भर करता है जिन्हें हम कई बार अनदेखा कर देते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि जिंदगी की जो खुशियों भरे पल हैं उन्हें बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। और कई बार ये छोटे छोटे पल हमें इतनी खुशियां दे जाते हैं और सोचने पर भी, विचार करने पर भी मजबूर करते हैं। तो मैं आशा करती हूं कि आज मंगलवार की ये प्यारी सी सुबह आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और मंगलमय रहे आज का दिन आप सभी के लिए। सुप्रभात।

जिंदगी अपने आप में बेहद खूबसूरत है और ये जिंदगी हमें और ज्यादा खूबसूरत महसूस होने लगती है जब हमें जिंदगी से मोहब्बत हो जाती है। किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि एंजॉय द लिटिल थिंग्स फॉर वन डे यू मे लुक बैक एंड रियलाइज दे वर द बिग थिंग्स। यानी जीवन की छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर हमारी सबसे कीमती यादें बन जाती हैं। शायद जिंदगी को सुंदर बनाने का एक तरीका ये भी है कि हम उन पलों को जीना सीखें जो आज हमारे पास हैं।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

सुबह के 6:21 सुप्रभात में नेहा है आपके साथ और आप भी हैं मेरे साथ। साथियों, बहुत अच्छा लगता है जब देश के कोने कोने से हमें हमारे साथी सुनते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से हमारे साथी हमारे साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से, कुछ साथी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, कुछ साथी हरियाणा से हैं, कुछ दिल्ली से हैं। बेहद खुशी होती है जब आप सभी अपना कीमती वक्त बिताते हैं आकाशवाणी दिल्ली के साथ में। और कार्यक्रम सुप्रभात में होती हैं वो बातें जो हमारे दिल के बेहद करीब होती हैं। और कई बार मेरा प्रयास रहता है कि जो मैं सोचती हूं और मेरे अनुभव होते हैं वो आपके साथ साझा करूं, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास जरूर होता है कि आपसे कह सकती हूं और आप जरूर सुनते हैं मेरी बातों को। और साथियों, अभी एक बात पर विचार चल रहा था, मंथन चल रहा था मेरे दिमाग में कि जिंदगी में हर चीज हमारे अनुसार तो नहीं होती ना, हमारी उम्मीदों के साथ तो चीजें नहीं चलती। हर बार ऐसा नहीं होता, बहुत बार होता है, लेकिन नॉट ऑल द टाइम ऐसा नहीं होता ना कि हम जो कहेंगे वही होगा। लेकिन जो लाइफ है ना, वो हमें हर रोज कुछ नया सीखने, देखने और महसूस करने का अवसर जरूर देती है। तो ऐसे में हम क्या बेहतर कर सकते हैं कि जो चीजें हमारे पास हैं उनके लिए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए और जो सपने अभी बाकी हैं उनके लिए प्रयास करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि शायद यही एक संतुलित जीवन का आधार है।

क्या बात है, छोटी छोटी आशाएं, छोटी छोटी जिंदगी में हम बड़े बड़े काम जरूर करते हैं और कई बार छोटे छोटे काम बहुत बड़े हो जाते हैं। आज कुछ इसी थीम के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं और बात कर रहे हैं। और चलिए अब आपको एक कहानी सुनाई जाए, छोटी सी कहानी, इट्स स्टोरी टाइम। तो इस कहानी के पात्र हैं एक पिता और एक उनका बेटा। तो एक बार क्या हुआ कि ये पिता अपने बच्चे के साथ समुद्र किनारे टहल रहे थे और बच्चे ने देखा कि लहरों के साथ कुछ छोटी छोटी मछलियां किनारे पर आ गई। अब उस बच्चे ने क्या किया, एक एक करके उसने उन मछलियों को पानी में वापस फेंक दिया। पिता ने कहा कि भाई इतनी सारी मछलियां किनारे पर आ रही हैं, लेकिन तुम इन मछलियों को वापस जब पानी में फेंक रही हो तो तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है, पड़े रहने दो इन्हें। बच्चे ने मुस्कुराकर और मछली को समुद्र में फेंकते हुए पिता से कहा कि मुझे फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन इस एक मछली को तो फर्क पड़ेगा ना। क्या समझे भाई, उस मछली का जीवन तो जल ही है, और जब आपने छोटा सा एफर्ट किया कि आपने किनारे पर आई उस मछली को वापस से पानी में उसे रास्ता

0: हैं और अपने आसपास हम रिलेशनशिप्स को टूटते हुए भी देखते हैं, बिखरते हुए देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय ओपिनियन, कि ये गाना किसी भी कपल को सुनना चाहिए, क्योंकि इस गाने में मुझे लगता है कि वो बातें कही जा रही हैं कि जब हम कमिटमेंट करें किसी से, हम किसी के साथ प्यार में हैं, हम उसके साथ एक रिलेशन में आ रहे हैं, हम या तो शादी के बंधन में बंध रहे हैं, तो उससे पहले मुझे लगता है कि गाना सुना जाए, क्योंकि इस गाने में वो सारी बातें कही जाती हैं जो दो लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ याद रखनी चाहिए, निभानी चाहिए, कि प्यार किया तो निभाना है ना। और फिर इसमें दो लाइन आती है कि ना मैं तुम्हें सताऊं ना तुम मुझे सताओ, मैं तुमको समझ जाऊं तुम मुझको समझ जाओ। यही तो चाहिए किसी रिलेशनशिप में, कि हम एक दूसरे को परेशान ना करें, सताएं नहीं, एक दूसरे का सम्मान करें, और प्यार कर रहे हैं तो उस प्यार को निभाएं भी। तो गानों के माध्यम से हमें कितनी प्यारी बातें समझने को मिल जाती हैं। तो मैं अक्सर ऐसा करती हूं कि जब कोई गीत सुनती हूं तो उसके शब्दों पर अपने आप ही ध्यान जरूर चला जाता है, ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन हाँ, अगर गाना अच्छा नहीं है, शब्द अच्छे नहीं है, तो भी ध्यान जरूर जाता है, और एकदम से आप गाने से अपने आप को दूर करने की कोशिश जरूर करते हो। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं इन गानों के बारे में, और इस तरह के गानों के बारे में खासकर, जहां हमें बहुत कुछ समझने को और सोचने को मिलता है। चलिए, एक फिलहाल छोटा सा एड ब्रेक है, और उसके बाद बातें और गीत दोनों का सिलसिला जारी रहेगा FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की मधुर आवाजों में फिल्म मेजर साहब से आपने गाना सुना। मुझे ये गाना पता है, बहुत अच्छा लगता है। गाना अपने आप में खूबसूरत तो है ही, लेकिन अगर आपने इन बातों पर गौर किया कि इस गाने की जो लिरिक्स हैं, वो ऐसा लगता है कि आजकल जब हम लोगों को देखते

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

6:37 बाय द रेनबो क्लॉक और सुप्रभात में नेहा है आपके साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज क्योंकि मंगलवार है, इट्स अ वीक डे, तो आप सभी अपने दफ्तर जाने के लिए या स्कूल कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे। तो ऐसे में जब आप तैयार हो ना, तो डोंट फोरगेट दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद यू। और पता है वो चीज क्या है? नहीं नहीं, आपका बैग, घड़ी, फोन, ये सब नहीं है। आपके चेहरे पर ये जो प्यारी सी स्माइल है ना, इसे पहनना बिल्कुल ना भूलना।

कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम? मैं तो आशा यही करती हूँ कि आपको हमारी कोशिशें अच्छी लग रही होंगी। कोशिश रहती है कि अच्छा संगीत आप तक पहुँचाएं, अच्छी बातें और कुछ ऐसी बातें जो हमारे दिल से आपके दिल तक पहुँचती हैं। अब एक बार पता है क्या हुआ, एक लेखक ने एक व्यक्ति ने एक लेखक से पूछा कि भाई आप इतनी सारी किताबें लिखते हैं तो कैसे कर लेते हैं आप ये काम। तो उस लेखक ने उस व्यक्ति को पता है क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं पूरी किताब लिखने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि मैं बस हर दिन एक पन्ना लिखने की कोशिश करता हूँ और धीरे धीरे वो एक एक पन्ना करके मेरी पूरी पुस्तक तैयार हो जाती है। बात जो यहाँ समझने की वो ये है कि बड़े सपनों की शुरुआत अक्सर छोटे और नियमित कदमों से होती है। एक छोटा सा प्रयास जो रोज किया जाए समय के साथ बड़ी उपलब्धि बन सकता है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? मैं जानती हूँ कि आप भी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास भी ऐसे होंगे जहाँ पर ये बात साबित हो जाती है कि हमारे छोटे छोटे कदम किसी बड़ी चीज की ओर हमें लेकर जाते हैं, है कि नहीं? और किसी लेखक ने ये भी तो कहा है दैट अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। क्या बात है, एंजॉय कीजिए अगला गाना श्रेया घोषाल की आवाज में।

भाई देखिए, बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिलता, जन्नत भी देखनी है तो थोड़ा तो उसके लिए कुछ एफर्ट जरूर करना पड़ेगा, चाहे वो इश्क का काम हो या कोई और काम हो, बैठे बिठाए तो कुछ नहीं होता मेरी जान। और अब हमारा यहाँ से उठने का वक्त नजदीक आ गया है, क्योंकि आपसे लेनी होगी विदा और अगले कार्यक्रम की ओर आपको करना होगा मुझे रवाना। और मैं आपको बता दूं कि आगे कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद आप लेने वाले हैं FM रेनबो दिल्ली पर। तो अब से ठीक 7 बजे, कुछ ही देर बाद ठीक 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 7:05 से 8 बजे के बीच में रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। भावना नैयर इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी, और 8 से 9 के बीच में हम आपकी सेवा में आ जाएंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का दूसरा घंटा लेकर। मेरा नाम है नेहा और आपको बताएंगे कि दिल्ली NCR में क्या क्या खास हो रहा है। अच्छा, मैं आपको ना आज के फोन इन कार्यक्रम के बारे में भी बता दूं, जो दोपहर 3 से 4 के बीच में आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल से प्रसारित

होता है। इस कार्यक्रम का नाम है रेडियो डॉक्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसारण है ये आकाशवाणी का, और आज का विषय रहेगा डीलिंग विद ऑस्टियो आर्थराइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भाई मैं भी आज ये प्रोग्राम सुनूंगी, और हमारे जो विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर दीपक जोशी, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं SIC सफदरजंग हॉस्पिटल से, और मैं भी उनसे बात करने की कोशिश करूंगी, कहीं मेरे सवाल का जवाब भी वो मुझे दे दें तो मेरे को बड़ा फायदा हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम आप जरूर सुने श्रोता, और ऐसे ही हर घंटे एक नया कार्यक्रम नई जानकारी और नए मनोरंजन के साथ आकाशवाणी आपके लिए लेकर आता है। और अब 6:54 हो चुके हैं, नेहा आपसे ले रही है अनुमति, और चलते चलते हमेशा की तरह वही बातें कहूंगी मैं, आप चाहे सुन के पक जाएं, बोर हो जाएं, बट मैं हार नहीं मानूंगी और आपसे गुजारिश करती रहूंगी, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती रहूंगी कि अपने आसपास सफाई जरूर बनाकर रखें, कूड़ा कचरा इधर उधर न डालें, हमारी नदियां हमारी जो सड़कें हैं इन सबको हमें साफ रखना है, क्योंकि ये देश हमारा है, इसे हमें ही संवारना है, संजो के रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का दिन बहुत अच्छा बीते, और आपसे कुछ देर बाद होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने NEET UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनः परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन

को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दामुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: सात से नौ जुड़ता है आपके साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मैं हूं आपके साथ भावना, और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जहां 2 घंटे होती हैं मॉर्निंग के सबसे अच्छी शुरुआत। और पहले घंटे की शुरुआत आपकी मेरे साथ हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन 102.6 FM रेनबो पर। दिल से दिल तक यहाँ बातें होती है। 16 जून मंगलवार का ये दिन, नई सुबह और खुशनुमा सुबह के साथ नई शुरुआत हो चुकी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और जब ये मंगलवार की नई सुबह नए उत्साह के साथ शुरू हुई है, नई ऊर्जा लेकर आई है, नई उम्मीदें लेकर आई है, धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर अपनी रफ्तार पकड़ रही है। वक्त आपको बता दूं, सुबह 7:06 हो रहा है। ये वक्त होता है अपने से बातें करने का, या फिर बहुत सारी हलचल इस समय हो रही होती है क्योंकि आपको कभी ऑफिस जाना है, या फिर ऑफिस जाने की तैयारी हो रही होती है, रसोई में ब्रेकफास्ट बन रहा होता है, या फिर कहीं पर अभी एक्सरसाइज हो रही होती है, योगा हो रहा होता है। 21 जून पास है, मेरे दोस्त इंटरनेशनल योगा डे भी आने वाला है, लेकिन हम एक दिन के लिए क्यों इस व्यायाम और एक्सरसाइज को सीमित करें। या फिर वो चाय की प्याली सुबह सुबह की, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, इससे तो अच्छी कोई शुरुआत हो ही नहीं सकती आपकी, क्योंकि एक चाय की प्याली मिल जाए बस सुबह की, फिर तो दिन अपनी आप बन जाता है। तो अगले घंटे हम बात करने वाले हैं सेहत की, इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे, साथ ही महान विभूतियों को भी याद करेंगे और उन लोगों को सलाम भी करेंगे जिन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के साथ देश और दुनिया में गहरी छाप छोड़ी है। तो बने रहिए मेरे साथ यानी भावना के साथ, क्योंकि सुबह और भी खास हो जाती है जब साथ होता है आपका मेरा और 102.6 FM रेनबो का। और गाने बजते हैं एक के बाद एक, बढ़िया यानी कि गुड मॉर्निंग वाले गाने शुरू करते हैं मेरे दोस्त।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मेरे साथ यानी भावना के साथ। और दोस्तों, इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है और ये दिन 21 जून को आता है, और ऐसे में हम एक खास सेगमेंट चला रहे हैं, आरोग्य पथ। हम सभी योग की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि योग की आखिरकार शुरुआत कहाँ से होती है? उसका जवाब है हमारी सांसों से। और हर पल हम सांस लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी सांसों पर ध्यान दे पाते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, जब हम परेशान होते हैं तो भी हमारी सांसें भारी होने लगती हैं, और जब हम शांत होते हैं तो सांसें अपने आप गहरी और सहज हो जाती हैं। यही वजह है कि योग में श्वास प्रक्रिया यानी प्राणायाम को बहुत महत्व दिया गया है। योग में कहा गया है कि यदि हम अपने सांसों को नियंत्रित करना सीख लेना तो हम अपने मन को भी शांत कर सकते हैं। आज के आरोग्य पथ में बात करते हैं कुछ ऐसे आसन और लोकप्रिय प्राणायामों की। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें क्या होता है कि इसमें एक नासिका से सांस अंदर ली जाती है और दूसरी नासिका से बाहर छोड़ी जाती है। इसके नियमित अभ्यास से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और फेफड़ों की जो कार्य क्षमता है ना, वो भी मजबूत हो जाती है, साथ ही फोकस भी अच्छा होता है। भ्रामरी प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। इसमें सांस छोड़ते समय मधुमक्खी जैसे गुनगुनाहट की आवाज करनी होती है। ये प्राणायाम क्या काम करता है, आपका जो मेंटल स्ट्रेस हो रहा होता है, पूरे दिन आप बहुत थक जाते हैं, कभी कभी आपको बेचैनी होती है, इरिटेशन होती है, उसमें बहुत हेल्प करता है, यानी मन की शांति प्रदान करता है। एक और प्राणायाम है उज्जायी प्राणायाम। इसमें गले को थोड़ा सा संकुचित करके धीरे धीरे सांस ली जाती है और फिर छोड़ी जाती है, और ऐसी ही गहरी श्वास का अभ्यास आप कर सकते हैं। आराम से बैठिए, रीढ़ को सीधी रखिए और धीरे धीरे नाक से गहरी सांस लीजिए। कुछ क्षण रुकिएगा और फिर धीरे धीरे उसी सांस को छोड़ दीजिएगा। दिन में 5 मिनट भी आप इसका अभ्यास करते हैं ना, तो आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है कि प्राणायाम जितना लाभदायक होता है ना, उतना ही ज़रूरी है उसे सही तरीके से करना भी। कुछ सावधानियां इसमें ज़रूर बरतनी चाहिए, आपको बताती हूँ कि बहुत जोर लगाकर ना या तेज़ गति से सांस लेने की आप कोशिश बिल्कुल ना करें, और यदि आप खाली पेट हैं, हल्के भोजन के बाद भी प्राणायाम करना बेहतर माना जाता है। इसके बाद यदि आपको चक्कर आए, घबराहट महसूस हो, सांस लेने में परेशानी हो, तो तुरंत इस अभ्यास को रोक दें। या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, कोई हार्ट का इश्यू हो, अस्थमा हो, या कोई भी आपको मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जिसमें आपको एक विशेषज्ञ की सलाह लेने की ज़रूरत है, तभी आप प्राणायाम करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कपालभाति और भस्त्रिका जैसे जो ऊर्जावान प्राणायाम होते हैं ना, वो हर व्यक्ति के लिए ना समान रूप से उपयुक्त नहीं होते हैं। इन्हें प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन से ही करना चाहिए। तो याद रखिएगा, सांस सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि बेहतर ढंग से जीने के लिए भी होती है। और क्या 24 घंटे जब आप सांस लेते हैं, आपने अपनी सांसों पर ध्यान दिया क्या? आज से ज़रूर दीजिएगा, और इन सांसों के लिए अपने आराध्य को भी ग्रैटिट्यूड दीजिएगा कि इसी वजह से हम चल रहे हैं, हमारा शरीर चल रहा है इन्हीं श्वासों की वजह से। तो इन श्वासों को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं, ये कुछ प्राणायाम अपने ज़िंदगी में अपना लीजिए और फिर देखिए बदलाव आएगा।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, वक्त हो चला है 7:22। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, यानी मेरे साथ प्यारी भावना के साथ। तो चलिए आज के इतिहास को भी जान लेते हैं, क्योंकि हर दिन इतिहास को जानना बड़ा ज़रूरी होता है और हर तारीख अपने आप में कुछ खास कहानियाँ लेकर आती हैं। तो आज 16 दिन क्या महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है, आइए आपको बताती हूँ। आज ही के दिन ना 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी, फोर्ड का नाम तो आपने सुना होगा, उसकी स्थापना हुई थी, जिसने दुनिया में ऑटोमोबाइल उद्योग को एक नई दिशा दी। और 1911 में IBM जैसे विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी कंपनी की शुरुआत हुई, जिसने कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी। और एक बेहद ही प्रेरणादायक उपलब्धि के बारे में भी आपको बताती हूँ, जो इसी तारीख से जुड़ी हुई है। 1963 में यानी कि 1963 में सोवियत संघ की वैलेंटिना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। इसके अलावा ये दिन घरेलू कामगारों के अधिकारों और सम्मान के महत्व को भी याद दिलाता है। तो दोस्तों, इतिहास हमें यही सिखाता है कि बड़े बदलाव ना हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं, और यही तो दिन की एक मोटिवेशन भी है, और शायद आज का आपका एक अच्छा फैसला भी आने वाले समय में एक बड़ी उपलब्धि बन जाए, कौन जानता है। सोचते रहिए और मुस्कुराते रहिए और दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करिए। किसके साथ? 102.6 FM के साथ।

आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, यानी मेरे साथ भावना के साथ। और आइए, अब वक्त तो चला है कि बर्थडे भी विश कर दिया जाए हमारे सेलिब्रिटीज को। तो आज बर्थडे है किसका? मिथुन चक्रवर्ती का। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती तो आपको याद है, हमारे फेवरेट डांसर अगर कोई बॉलीवुड के हैं तो मिथुन चक्रवर्ती हैं। कैसे कलाकार जिन्होंने अपने अलग अंदाज में भारतीय सिनेमा को ना एक अलग पहचान दी है। मिथुन जी का जन्मदिन है। मिथुन दाना केवल एक अभिनेता नहीं है बल्कि एक बेहतरीन डांसर है और प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी है। राजनीति से भी अब इनका संबंध है। उनकी फिल्म डिस्को डांसर को कौन भूल सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है और उनका नृत्य भी ना आज भी लोगों को उतना ही याद आता है।

0: तो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आप मेरे साथ हैं यानी कि भावना के साथ, और हमारा सफर चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के साथ। सुबह की बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है, वक्त हो चला है 7:26 और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो जहां मॉर्निंग सबसे अच्छी होती है, वो होती है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के साथ। और आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी सीएसआईआर एनपीएल के एक विशेष कार्यक्रम है जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बीएनडी रिलीज का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको बताऊं, ये है कि वैज्ञानिक तकनीकों और शोध को उद्योगों और समाज तक पहुंचाना है ताकि जो उनका लाभ है ना वो सब तक पहुंच सके। और इसी अवसर पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है प्रोफेसर ए वेणुगोपाल अचिंत्या जी, जो कि निदेशक है सीएसआईआर एनपीएल के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: गुड मॉर्निंग भावना मैम।
0: सर, मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है।
1: मैडम, तो इसमें अभी सीएसआईआर हेडक्वार्टर्स में आज के दिन से जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे हम 4 टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर कर रहे हैं। वह ये क्वांटम टेक्नोलॉजीज बेहतरीन लगे, एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लेकर जो सोसाइटी के लिए, जो अपने टैबलेट रैपर्स जो होता है, ब्लिस्टर्स जो बोलते हैं टैबलेट्स को, उसमें प्लास्टिक होता है, उसमें एल्यूमिनियम होता है, मेटल होता है, इन सबको हम कैसे अच्छी तरह रिसाइकिल करें, जितना मैक्सिमम अमाउंट हम रिसाइकिल करें उतना हम करें। और दूसरा है कि एनवायरमेंट मॉनिटरिंग का है, जो अपने पास इक्विपमेंट है जो इम्पोर्टेड है मोस्टली, उसमें भी हम अपने हिसाब से, अपने इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ज्यादा डस्ट लेवल्स है, इसमें जो सैम्पलर एयर सैम्पलर जो होता है उससे हमारा AQI वैल्यूज जो है जो रिलायबल आ सकता है, वैसे एक सैम्पलर बनाए हैं वो लोकल इंडस्ट्रीज को दे रहे। और क्वांटम टेक्नोलॉजीज में बहुत सारा कुछ हम 99% हम इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडिजिनस विकसित भारत की ओर हम जा रहे हैं ताकि DRDO को कुछ वेपर सेल्स दे रहे। और जहां तक बड़े इक्विपमेंट होता है, रेफरेंस मटेरियल जैसे हॉलमार्किंग होता है गोल्ड का, तो उसका प्योरिटी कैसे चेक करें, वो एक रेफरेंस मटेरियल होता है, वैसे एक गोल्ड का एक है। और आयुष और सिद्ध मिनिस्ट्री अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए जो प्योरिटी है सब टेस्ट करने के लिए सैंपल्स जो लगेगा, रेफरेंस मटेरियल जो लगेगा, वो हम 8 अपने सिस्टर लैब सीमैप के साथ मिलकर 8 BNDs भारतीय निर्देशक द्रव्य, ये सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल से ये भी आज रिलीज कर रहे हैं। और गैस CNG का प्योरिटी चेक करना है तो प्रोपेन गैस का BND भी हम आज रिलीज करने वाले हैं।
0: जी,
1: तो डीजी मैम के नेतृत्व में हम आज CSR हेडक्वार्टर्स में ये 3 बजे से ये प्रोग्राम है।
0: प्रोफेसर वेणुगोपाल, जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, आम लोगों को ना ये शब्द थोड़ा नया सा लगता है, सरल भाषा में क्या आप बता सकते

0: एक इसका क्या मतलब होता है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
1: एक मिनट। तो यहाँ तक हम टीवी देखे या मोबाइल फोन देखे या कुछ भी, वो रिस्ट बैंड्स होता है, रेड हेल्थ मॉनिटर्स होता है, इसमें सब सारे कुछ सेंसर्स होते हैं, कुछ नया टेक्नोलॉजीज जो बनते हैं, नया चीज जो बनते हैं, वो हमारे दैनिक जीवन में वो हम लाभ ले सकते हैं कि हमारा बेहतरीन और बेटर लिविंग कंडीशंस हो सकता है। लेकिन ये लैब में जो बनता है, साइंटिस्ट जो लोग जो है जो बनाते हैं, R&D करते हैं, कुछ तो बनाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट की तरह नहीं आ सकते हैं। वो
0: जी
1: लोग टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल जो बोलते हैं, वो अभी 3 या 4, 10 तक हमको पहुंचना है, लेकिन जब हम लैब में करते हैं साइंटिस्ट, तो वो 4 तक जा सकता है। तो 4 से 10 तक जाना है तो हमको किसी इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करना है, या ये ट्रांसलेट करके हम इस प्रोडक्ट को, इस R&D वाला इंफॉर्मेशन को हम प्रोडक्ट की तरह बना के सोसाइटी के लिए या सिटीजन तक ले आए। तो इसके लिए हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, जो हम लैब से इंडस्ट्री तक पहुंचाते हैं, और इंडस्ट्री का काम है वो प्रोडक्ट बना के हमको मार्केट में लाए।
0: जी प्रोफेसर विनोद गोपाल, आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम विकसित भारत एट 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो सपना देख रहे हैं और उसको साकार करने के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, साथ ही हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स और आज का ये कार्यक्रम कैसे भारत को फ्यूचर रेडी बनाएगा?
1: अभी जो US ईरान वार में कई जगह पे हम सुने हैं कि 70 किलोमीटर दूर का कुछ हार्ट बीट हमने डिटेक्ट कर दिया, ये इलेक्ट्रिक पल्सेस जो है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका सिग्नल्स हम कैसे डिटेक्ट करें। तो आज का एक टेक्नोलॉजी है क्वांटम टेक्नोलॉजी, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसर जो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्लोज ट्रांसफर कर रहे हैं, वो उसमें ये वेरी ब्रॉड बैंड, हर एक फ्रीक्वेंसी का अलग अलग रेडार होने की जरूरत नहीं है। हम एक टेक्निक, एक टेक्नोलॉजी के साथ हम पूरा मेगाहर्ट्ज से लेकर गीगाहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज तक एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ हम ये सिग्नल्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और वेरी सेंसिटिव, बहुत दूर से भी हम सिग्नल से ये पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा विकसित भारत के लिए या अपना इंडिजनस डेवलपमेंट्स के लिए, जैसे मैंने बताया था, हर एक एक वेपर सेल्स जो होता है, रुबिडियम वेपर
0: जी
1: सेल, वैक्यूम सील वेपर सेल से उसके अंदर रुबिडियम गैस होती है, तो उसको भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये छोटी सी चीज है, लेकिन अभी हम जो टेक्नोलॉजी DRDO को आज दे रहे हैं, 5 वेपर सेल्स दे रहे हैं जो इंडिजिनसली बना है, ये टेक्नोलॉजी भी हम CSIR NPL में लगाया है, तो ताकि ये इंडिजिनस डेवलपमेंट तो हमारा आत्मनिर्भरता बढ़े।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वेणुगोपाल आचार्य जी, आपने इतनी सरल भाषा में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम और हमारे समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को इससे नई और उपयोगी जानकारी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद 102.6 FM के साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू भावना जी फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑल द ऑडियंस।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: अरे रीमा सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
8: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

साथ ही आज हम स्वतंत्रता सेनानी और महान नेता देशबंधु चित्तरंजन दास को भी श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी वकालत, नेतृत्व और देशभक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि देश के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ी सेवा है। इसी के साथ सुनते रहिए 102.6 FM, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

चले आइए अब कुछ महान विभूतियों को भी याद कर लेते हैं। दोस्तों, आज पुण्यतिथि है महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद और समाज सुधारक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय की। उन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज की प्रगति से भी जोड़ा। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज की सेवा करना ही है।

और इसी के साथ वक्त हो गया है अब आपसे अनुमति लेने का, लेकिन फुटबॉल विश्व कप का फीवर पूरी दुनिया पर इस समय चढ़ा हुआ है और कल प्रतियोगिता के इतिहास का एक बड़ा उलट फिर देखने को मिला है। विश्व कप में पहली बार हिस्सा ले रही केप वर्डे ने अपने डेब्यू मैच में ही खिताब का प्रबल दावेदार और 2010 की चैंपियन स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोककर सबको चौंका दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि स्पेन की फीफा रैंकिंग 2 है, वहीं केप वर्डे की रैंकिंग 67 है। और दीपिका के 2 गोल की मदद से भारतीय महिला हॉकी टीम ने सोमवार को FIH नेशंस कप के पूल ए के अपने पहले मैच में शुरू के पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए अमेरिका पर 3-2 से जीत हासिल की है। और भारत की तरफ से दीपिका के 2 गोल के अलावा नवनीत कौर ने भी 1 गोल किया।

भाला फेंक एथलीट की बात करें, नीरज चोपड़ा मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं। नीरज दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन 19 जून को होने वाला है। तो स्पोर्ट्स की खबरों के साथ ही आपको ये भी बताती है कि आप ना लगातार फिट भी रहिए, क्योंकि फिट रहने से ही देश भी हिट रहता है और आप भी हिट रहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। यूं ही मुस्कुराते रहिए। आपका मंगलवार मंगल में हूं, इसी शुभकामनाएं के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हैव अ वेरी वेरी वंडरफुल डे, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सुबह के एग्जैक्टली 8 बजते ही आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर हम और आप जुड़ जाते हैं और बातें करते हैं दिल्ली एनसीआर के बारे में, क्योंकि ये जो शो है ना 8 से 9 के बीच में, इसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और शो जो आपके लिए लेकर आई है उसका नाम तो आप जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बता देती हूँ। मेरा नाम है नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि दिन की शुरुआत तो बेहतरीन हो ही गई है और आगे भी आज आपका दिन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। 16 तारीख है, जून का महीना चल रहा है, मंगलवार का मंगलमय दिन है और ऐसे में क्या किया जाए, अपने आप को तैयार किया जाए और उसके बाद आज के शो के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं आप सभी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो मेरे साथ, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो मेरे साथ। क्या बात है, अगर आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं तो आ जाइए। जिंदगी का ये जो 4 दिन हमें मिलते हैं ना, इन 4 दिनों में आज तो हम बहुत मस्ती से धमाल करने वाले हैं और अमेजिंग गाने, ऐसे गाने जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करवाएंगे और अच्छा महसूस कराएंगे। मेरा वादा है पूरे शो में ऐसे गानों का पिटारा यहाँ पर खुल चुका है। गुड मॉर्निंग।

क्या बात है। पता है ये गाना ना मेरे जिम में प्ले होता था। पिछले साल मैंने कुछ समय के लिए जिम ज्वाइन किया था फॉर अ चेंज, और वहां पर ये गाना बहुत प्ले होता था। तो आज ये गाना जब मैंने सुना तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। अच्छा चलिए मौसम की बात कर लें। अब देखिए आज का जो मौसम है, मैंने खिड़की के बाहर देखा तो धूप छांव जैसा मौसम हो रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी का एहसास तो नहीं है, क्योंकि फिलहाल दिल्ली NCR में जो टेम्परेचर है वह 31 डिग्री सेल्सियस पर है और मैक्सिमम आज 37 तक जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अच्छा कल का याद है आपको? कल सुबह कितना प्यारा सा वेदर हो गया था ना, और दो चार बूंदे भी गिरी थी जहां पर मैं थी, जिस जगह पर थी, लेकिन कुछ और क्षेत्रों में दिल्ली NCR में बारिश भी हुई थी। और उसके बाद दोपहर में एकदम से धूप आ गई और शाम को फिर वही तेज हवाएं और आंधी जैसा मौसम बन गया था। आज भी मौसम विभाग का कहना है कि उसी तरीके से आंधी और तूफान का मौसम बन सकता है। तो ऐसे में अगर आप बाहर हो तो देखिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि जब तेज हवाएं चलती हैं तो जो सूखी लकड़ियां होती हैं पेड़ों से वो गिर जाती हैं। और कल जब मैं जा रही थी एक रास्ते से तो वहां पर ऐसी बहुत सारी लकड़ियां गिरी थी और मेरे को एहसास हुआ। और अपनी जो मेरे साथ मेरी सहेली थी, मैं उनसे पूछ रही थी और बात कर रही थी कि यार एक बात बताओ, अगर हम निकल रहे हैं गुजर रहे हैं इस रास्ते से और अचानक से ये पेड़ की लकड़ी टूटकर हमारे सर पे गिर जाए तो हमारा तो क्या ही हो जाएगा। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब इस तरह की चीजें होती हैं। और हाँ, आकाशवाणी के साथ जब आप जुड़े हों तो आपको म्यूजिक का पूरा अरेंजमेंट यहां पर मिलता है। ये वाला मजेदार गाना फ्रॉम द मूवी पार्टनर, आइए साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। वैसे आप और हम भी तो पार्टनर्स ही है ना।

0: साथियों, दिल्ली से हरिद्वार के लिए चल रही है विशेष रेलगाड़ी आज और कल। अब इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपसे साझा करूंगी बस अब से कुछ ही देर बाद। आप कहीं न जाएं, सुनते रहें FM रेनबो दिल्ली 102.6 पर।
1: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर

आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

सुबह के 8:16 और लीजिए 40 सेकंड पूरे हो चुके हैं। साथियों, सोमवती अमावस्या के अवसर पर रेल यात्रियों के लिए उत्तर रेलवे द्वारा आज और कल यानी कि 16 और 17 जून को विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। ट्रेन संख्या 04386 और 04385 हरिद्वार दिल्ली शाहदरा हरिद्वार और ट्रेन संख्या 04388 और 04387 हरिद्वार दिल्ली हरिद्वार जंक्शन, इन दोनों ही ट्रेन का संचालन दोनों दिन किया जा रहा है। तो अगर आप दिल्ली से हरिद्वार या हरिद्वार से दिल्ली आना चाह रहे हैं इस अवसर पर, सोमवती अमावस्या के अवसर पर, तो आप इस सुविधा का जरूर लाभ उठा सकते हैं।

0: द ट्रेन फिल्म से वो अजनबी आपने सुना मिथुन और शिल्पा राव की मधुर ताबड़तोड़ आवाजों में। अच्छा, अब अगला गाना मैं आपको सुनाऊं उससे पहले एक सवाल है मेरा आपके लिए। मुझे बताइए, खाने की ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप पहन भी सकते हो? कई बार आपने ये पहेली इधर उधर पढ़ी होगी, बुझाई होगी, जल्दी से बताओ ना मुझे। नहीं पता? ओहो, चलिए ये गाना सुन लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा।
1: This is something

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।

आमंत्रित किए जा रहे हैं और प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है। 1 जुलाई 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट का पता आपको बता रही हूँ, नोट कर सकते हैं www.ignu.ac.in। इसके अलावा ignuphd.samarth.edu.in पर भी आप जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और रिसर्च में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपके लिए है। अरे जो गाने बजा रही हूँ ना, ये सभी के लिए है, इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है।

0: इसको मिलकर सोचे जरा, पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है, तालाबों की रख रखाव की जिम्मेदारी ले, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

क्या आप जानते हैं कि दिल्ली से मेरठ के बीच चल रही नमो भारत ट्रेन का विस्तार होने जा रहा है अब हरिद्वार और ऋषिकेश तक। क्या बात है। और पता है, ये अगर हो जाता है तो दिल्ली से ऋषिकेश का सफर अब सिर्फ 2.5 से 3 घंटों में तय कर लिया जाएगा इस बहुत ही बढ़िया सी नमो भारत ट्रेन के द्वारा।

अभी लास्ट में इतना दम लगा के गा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं बाद में बात करूंगी, आपसे पहले इनको गा ही लेने देती हूँ। इट्स 8:52 बाय द रेनबो क्लॉक, वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। जाने से पहले कुछ खास बातें आपको बता दें कि अगला शो क्या होगा। 9 बजे आप सुनिएगा दिल के तराने, गाने नए पुराने, और इसके अलावा हर घंटे नए कार्यक्रम आपके लिए, नए नए प्रेजेंटर्स लेकर आते रहेंगे। फोन इन कार्यक्रम भी हैं जिसमें आप शामिल हो सकते हैं, और बहुत से मजेदार कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली आपके लिए रोजाना लेकर आता है। तो अब जाने का वक्त नजदीक है, और चलते चलते एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर मुस्कुराने का मौका आपको मिले ना, तो बिल्कुल भी उसमें कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि खुद मुस्कुराना और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देना एब्सोल्युटली फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगता इस पर। तो ये काम आप बड़े आराम से कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। और एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जब भी मुस्कुराएं, यकीनन दिल से मुस्कुराइए। डोंट हैव दैट प्लास्टिक स्माइल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं किसी को देखकर अगर मुस्कुराती हूं तो वो दिल से निकलता है, और जेन्युइनली मैं उसके लिए वो स्माइल, उस मोमेंट के लिए वो स्माइल मेरे चेहरे पर आ जाती है। वेल, ऑन दैट नोट, दिस इज नेहा साइनिंग ऑफ। आप सभी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, और आकाशवाणी दिल्ली के साथ बने रहें। अपने आसपास सफाई जरूर बना के रखें, और जिंदगी को बहुत मजेदार तरीके से आप जरूर जिए। चलते चलते आखिरी गाना उदित नारायण की आवाज में फ्रॉम द मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और हाँ, एक खास बात तो आपको बताना भूल ही गई, मैं आपसे मिलूंगी कल शाम 6 बजे, कार्यक्रम रहेगा मैसेज मसाला मिक्स। तो आप मेरे साथ यानी नेहा के साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: गुड मॉर्निंग दिल्ली, सुबह के 9 बज चुके हैं और आप सुन रहे 102.67 में। एक बार फिर से हाजिर हो आपकी प्यारी नटखट सी दुलारी से, भावनाओं से लबरेज भावना, हाजिर हो आपका अपना पसंदीदा शो लेकर, दिल के तराने गाने नए पुराने। पता है एक घंटे का ब्रेक मिला था क्योंकि मैं आपके साथ 7 से 8 भी थी और फिर उसके बाद एक घंटे का ब्रेक मिला तो मैं थोड़ा सा बाहर टहल कर आई तो लग रहा था कि बड़ी गर्मी होगी, सूरज की तपिश मिल रही होगी, लेकिन मौसम बिल्कुल उलट चुका है मेरे दोस्त और मौसम ने करवट ले ली है। मौसम बहुत ही ऑसम हो रहा है। 16 जून का दिन है, मंगलवार का दिन है। मौसम ने भी कहा कि मंगलवार का दिन है तो मंगलमय करने के लिए मैं अपना मूड सेट कर चुका हूं, क्योंकि मौसम आखिरकार अपना मूड सेट कर चुका है। बाहर बादलों ने आसमान को अपनी चादर से ढक लिया है, हल्की हल्की गरज सुनाई देने लगी है और ऐसा लग रहा है कि बस अब बारिश होने वाली है। और अब बारिश होने वाली ही है तो फिर क्यों ना कहा जाए कि अब बारिश हो जाए, क्योंकि ये सफ़र बड़ा लंबा था और बारिश का बड़ा इंतज़ार हो रहा था और बारिश कह रही थी कि कब आओ, आ जाओ, अब आ जाओ, आ ही गई है। तो बारिश के साथ आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, अगर आप बाहर निकलने का सोच रहे हैं ना तो बड़े ध्यान से निकलिएगा, क्योंकि ऑफिस, कॉलेज या फिर किसी ज़रूरी काम से अगर आप निकल रहे हैं तो जरा जल्दी निकलिए, क्योंकि बारिश होने वाली है। और बारिश होती है तो आपको पता है ना क्या होता है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम अपना रंग दिखाने लगता है। तो बारिश की पहली फुहार के साथ, चाहे सफर लंबा हो फिर या फिर सुबह की भागदौड़ जारी हो, आपका साथ निभाएगा ना 102.6 FM रेनबो दिल से दिल तक, क्योंकि अगले पूरे एक घंटे बजने वाले हैं बैक टू बैक बॉलीवुड म्यूजिक और बीच बीच में लगने वाला है ये रेट्रो का खास तड़का भी, जो आपकी यादों की खिड़कियों को खोल देगा। और दिल से एक ही बात निकल रही है इस समय, बरस भी जाओ अब मेघा, थोड़ा सा सुकून इस शहर पर भी बरसा दो। तो अपनी चाय की चुस्कियों के साथ या फिर अपने सफर के दौरान बस हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब बिना इंतजार के लिए आपके लिए आ रहा है ये पहला ट्रैक, सिर्फ और सिर्फ दिल के तराने गाने नए पुराने 102.6 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मौसम का लुत्फ उठाइए।

तो बरसो रे मेघा, बरसे जाओ क्योंकि मौसम तो पूरा बन चुका है। लेकिन आपको ट्रैफिक के बारे में जानकारी दे दें तो ट्रैफिक कुछ ये कह रहा है कि इमरजेंसी रिपेयर वर्क चल रहा है दिल्ली जल बोर्ड पाइपलाइन का आश्रम चौक के पास, जहां 3 से 4 दिन तक का ट्रैफिक जो है वो प्रभावित रह सकता है। और रिंग रोड के बीच जो महारानी बाग और आश्रम वाला रास्ता है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और जो ट्रैफिक मूवमेंट प्रभावित रहेगा वो रहेगा सराय काले खां से लेकर आश्रम चौक तक, डीएनडी फ्लाईवे से लेकर आश्रम चौक तक, और जो ट्रैफिक मर्ज कर रहा है सीवी रमन मार्ग से लेकर रिंग रोड तक, तो वहाँ आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है और अल्टरनेट रूट्स आप अपना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर ट्रैफिक सराय काले खां ITO DND नोएडा या मयूर विहार से आप आ रहे हैं टुवर्ड्स फरीदाबाद, तो आप आश्रम फ्लाईओवर को इस्तेमाल कर सकते हैं और लेफ्ट ले लें टुवर्ड्स कैप्टन गौर मार्ग, और फिर प्रोसीड करें ओखला मंडी रोड, मोदी मिल फ्लाईओवर और मथुरा रोड के पास। और अगर ट्रैफिक आ रहा है DND फ्लाईओवर टुवर्ड्स आश्रम, तो आप बारापोला एलिवेटेड कॉरिडोर का इस्तेमाल कर लें या फिर आश्रम फ्लाईओवर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसके साथ आपको जानकारी दे दें कि आज़ादपुर मंडी पर भी ट्रैफिक जो है वो प्रभावित रह रहा है हर रोज़, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ड्रेनेज एक्सकवेशन का काम चल रहा है। इसलिए GT करनाल रोड और महेंद्र पार्क और आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन पर ट्रैफिक की मूवमेंट थोड़ी सी धीमी रह सकती है। यहाँ कहाँ कहाँ पर यहाँ पे प्रभावित रह सकता है, वो रह सकता है आज़ादपुर मंडी, आदर्श नगर, महेंद्र पार्क और मुकरबा चौक। तो आप क्या कर सकते हैं, आप आउटर रिंग रोड टुवर्ड्स मुकंदपुर ले लें और फिर उसके बाद अरिहंत मार्ग या रोड नंबर 51 की ओर आगे बढ़ जाएं। अगर जहांगीरपुरी से आदर्श नगर की तरफ ट्रैफिक आ रहा है तो शाहलाम बंद मार्ग ले सकते हैं आप,

फिर उसके बाद रोड नंबर 5151 या अरिहंत मार्ग टुवर्ड्स आजादपुर चौक ले सकते हैं। और जिन रोड्स को आपको अवॉइड करना है वो है जीटी करनाल रोड जो आजादपुर मंडी की तरफ जा रही है, और जो स्ट्रेच महेंद्र पार्क और आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन की तरफ है यहां पर भी आप इन रूट्स को अवॉइड कर सकते हैं। दिल के तराने गाने नए पुराने सुनते रहिए, बैक टू बैक आपके लिए बॉलीवुड म्यूजिक चल रहा है।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: और अब वक्त आ गया कैसे सदाबहार नगमे का, ना जो बारिश के मौसम का नाम लेते ही जहन में अपने आप गूंज उठता है। बाहर बादलों की हल्की दस्तक है, हवा में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू घुलने लगी है और ऐसा लग रहा है कि बस बारिश किसी भी पल अपना जादू बिखेरने वाली है। ऐसे खूबसूरत मौके में ना एक ऐसा गीत दिल से निकलता है, रिमझिम गिरे सावन। फिल्म मंजिल का ये सदाबहार गीत किशोर कुमार की मखमली आवाज में

हर बार बारिश को और भी खास बना देता है। तो चाहे आप खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हों या ट्रैफिक में फंसे हुए हों, इस गीत को अपना हम सफर बना लीजिएगा दोस्त। चलिए बारिश की इन आने वाली बूंदों के नाम करते हैं ये खूबसूरत नगमा, रिमझिम गिरे सावन।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
0: पता का चाय गजब का स्वाद। आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: और अब वक्त आ गया एक और एवरग्रीन गीत को सुनने का, जो बारिश, शरारत और मुस्कुराहट तीनों का खूबसूरत संगम है। आज का मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, कुछ ऐसा ही गवाह बन रहा है। बादलों की आवाजाही और बारिश के इंतजार में डूबा हुआ दिल्ली शहर इस समय नजर आ रहा है, और मैं खिड़की से देख रही हूँ कि बादल और ज्यादा छा रहे हैं, यानी बारिश का बस अब कुछ देर में इंतजार। ऐसे में याद आता है ना एक चुलबुला सा नगमा, जो सुनते ही चेहरा खिल उठता है, एक लड़की भीगी भागी सी। फिल्म चलती का नाम गाड़ी का ये सदाबहार गीत किशोर कुमार की मस्ती भरी आवाज और उनकी दिलकश अदाओं की वजह से आज भी उतना ही ताजा लगता है जितने अपने दौर में था। तो चाहे आप ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हो या बारिश की पहली फुहार का इंतजार कर रहे हो, इस गीत के साथ अपनी सुबह को थोड़ा और खुशनुमा बना दीजिए। चलिए मुस्कुराइए और मेरे साथ और 102.6 के साथ गुनगुनाइए।
2: एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जा

0: एसी।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com।
4: कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: दे।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

और अब वक्त आ गया है मौसम में थोड़ी शरारत, थोड़ी मस्ती और थोड़ी सी चुलबुलाहट घोलने का वक्त। बाहर बादलों ने अपना डेरा जमा रखा है और ऐसी प्यारी सी सुबह में ना क्यों ना सुन लिया जाए एक ऐसा गीत जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आए। गपूची कपूची गम गम, याद आया फिल्म त्रिशूल का ये प्यारा और अलग अंदाज वाला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों से सजा हुआ है और आज भी अपनी मस्ती भरी धुन की वजह से हर किसी दिल की को जीतता रहता है। तो अगर बारिश का इंतजार करते हुए आपकी सुबह थोड़ी सुस्त सी लग रही है ना, तो इस गाने के साथ उसमें थोड़ी सी ऊर्जा और ढेर सारी मुस्कान जोड़ लेते हैं। चलिए गुनगुनाते हैं एक बार फिर से, मुस्कुराते हैं और सुनते हैं ये मजेदार सदाबहार गीत गपूची कपूची गम गम।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, मेरे साथ यानी भावना के साथ। और एक अच्छी सी सुबह हो चुकी है क्योंकि ये बारिश वाला मौसम हो चुका है। और बारिश वाला मौसम होता है ना तो बड़ा रोमांटिक सा महसूस होता है, क्योंकि ये बारिश की आहट, पुराने नगमों की मिठास और आपका मेरा ये संगम, आज का सफ़र बहुत ही सुहाना हो गया है। और दिल के तराने गाने नए पुराने लगातार आपको गाने सुना रहा है, एवरग्रीन भी और नए भी, यानी नए और पुराने का तड़का जब लगता है तो बात ही कुछ और हो जाती है और ये सफ़र और सुरीला हो जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपके साथ बने हुए हैं। और सबसे सुरीली जो धड़कन है ना, वो 102.6 FM पर ही बजती है। और ये धड़कन तभी बजती है क्योंकि आपका हमारा साथ लगातार बना रहता है। सुनते रहिए 102.6 FM, दिल के तराने, गाने नए पुराने।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

दोस्तों, उम्मीद है कि दिल के तराने, गाने नए पुराने का ये घंटा आपकी सुबह को थोड़ा और सुरीला, थोड़ा और खुशनुमा बनाया हो गया होगा, क्योंकि बारिश का मौसम कुछ ऐसा हो ही रहा है, क्योंकि बारिश की जो दस्तक है बस आने ही वाली है। ट्रैफिक का शोर हो या कामकाज से भरी ये मंगलवार की सुबह, अगर साथ में संगीत होना तो हर सफर आसान लगता है। इसी के साथ मुझे यानी कि भावना को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए 102.6 FM, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि बातों में नजाकत, आवाज में है प्रीत। वेस्टर्न बीट्स लेकर आएंगी हमारी अपनी अदिति बिष्ट। अगले एक घंटे सजाएंगी आपके लिए एक खूबसूरत म्यूजिकल सफर, जहां होगा वेस्टर्न म्यूजिक, नई रिदम्स, नई एनर्जी और ढेर सारी अच्छी वाइब्स। इसी के साथ मंगलवार आपका मंगलमय हो, जा रही हूं बहुत सारी खुशियां लेकर जो आपने मुझे आज दी है। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की

0: लगातार सातवीं भागीदारी है।
1: जी सात देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि जी सात देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपए प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुख और समृद्धि के दरवाजे धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से किए गए कार्यों से ही खुलते हैं। संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक निर्णय में पूर्ण विवेक आवश्यक है, क्योंकि सोच समझकर उठाया गया कदम सफलता की नींव बनता है। उन्होंने कहा कि बिना विचार किए गए जल्दबाजी में कोई निर्णय या कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घोर विपत्तियां आ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक निर्णय में विवेक का प्रयोग करने पर बल दिया। फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: I think this was the first ever song of Devanand that I had ever seen and fallen madly in love with him, like millions of others had done before me. And so, when Devanand and Nutan had come to film this song at Qutub Minar, a huge crowd had gathered to get just a glimpse of them. The film crew could shoot only two actual scenes at the real Qutub Minar. But this, of course, did not disappoint Devanand. He took some shots of Qutub Minar and then replicated Qutub Minar in Mumbai to finish the song. The film was Tere Ghar Ke Samne, and it had come out in 1963. It is said that in 1950s, Devanand had visited Qutub Minar as a tourist and was simply mesmerized by the beauty of this gigantic monument. That was the time he decided to shoot one of his film songs there. And today, I suppose it would be impossible to visit Qutub Minar and not hum this song, right? Well, more music on the other side of this break. A very tiny break, I promise.
1: Morning exercise ke baad fit body ka funda, 5 gram fat aur 80 calories wala breakfast, yani roze ek anda.
2: Swasth rehne ka funda, roz khaye anda. NECC dwara janhit mein jari.
3: Talent to hai. पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com. कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी.
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के.
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी. अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए.
7: पक्का.
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर

0: In 1987, Money Money by the iconic Billy Idol replaced I Think We're Alone Now by Tiffany as the number one song. But here's the interesting part. Both of these songs, Money Money and I Think We're Alone Now, were originally recorded in the 60s by Tommy James and the Shondells. Imagine creating something so good that 20 years later, another generation discovers it, recreates it, and takes it right back to number one. Friends, I'm wishing us, all of us, the same stroke of genius. Amen. And by the way, the word Mone Mone actually has no meaning at all. And talking about the word, I have to give you the word of the day, and that is pareidolia. Pareidolia, P-A-R-E-I-D-O-L-I-A. I promise to tell you the meaning on the other side of this break.
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात रेनबो की सौगात हर रोज जुड़िए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर Always wherever you are. 102.6 आपके लिए.
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्ष

0: कई प्रमुख प्राथमिकताएं जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एसएईडी में बढ़ोतरी की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमानन ईंधन के निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमरीका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। इस बीच एलएनजी ले जा रहे भारतीय टैंकर दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। इसमें 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है। इसके 18 जून तक गुजरात के दहेज पत्तन पर पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। फीफा विश्व कप में केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए दिग्गज टीम स्पेन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योतिका। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फिल्मी सफर बॉलीवुड ट्रेल्स में। बॉलीवुड देखिए सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है बल्कि जज्बातों, कहानियों, संगीत और यादों का एक ऐसा खजाना है जहां हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। किसी के लिए एक पुराना गाना बचपन की याद है तो किसी के लिए एक फिल्म जिंदगी की खास याद से जुड़ी हुई है। अगले एक घंटे तक हम करेंगे बॉलीवुड की इसी रंगीन दुनिया का सफर। बात करेंगे फिल्मों की, गानों की, कुछ नए अपडेट्स की और कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से जो बॉलीवुड को और भी थोड़ा सा खास बना देते हैं। तो तैयार हो जाएं एक म्यूजिकल राइड के लिए। मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स।

दोस्तों, जून का महीना बॉलीवुड के लिए एक इंटरेस्टिंग रिलीज लेकर आया है। है जवानी तो इश्क होना है। ये फिल्म 5 जून को हाल ही में थिएटर्स में रिलीज हुई है। फिल्म के डायरेक्टर हैं डेविड धवन और कास्ट में है वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, मनीष पॉल, चंकी पांडे और जिमी शेरगिल। इस फिल्म का टाइटल भी काफी नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि है जवानी तो इश्क होना है, ये जो नाम है ना, डेविड धवन की फिल्म जो थी 1999 में रिलीज हुई BV No. 1 के पॉपुलर सॉन्ग से लिया गया है। अब जब खुद का ये काम हो तो वहां से तो कॉपी पेस्ट करा जा ही सकता है ना। फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी स्पेस में है, जहां प्यार, रिलेशनशिप्स और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आई एम श्योर आपको मजा जरूर आया होगा। डेविड धवन और वरुण धवन की जो जोड़ी है, इससे पहले भी काम कर चुकी है साथ में, फिर मैं तेरा हीरो हो गया, जुड़वा 2, Coolie No. 1, इन सब में ये साथ में काम कर चुके हैं। तो फैंस के लिए ये जो फादर सन कह लीजिए या डायरेक्टर एक्टर कॉम्बिनेशन एक बार फिर से स्क्रीन पर एंटरटेन कर रहा है। इसी बॉलीवुड के मूड के साथ आपको एक ऐसी धुन सुनाती हूँ जो आपको नॉस्टैल्जिक भी फील कराएगी और हमारे इस मूड को थोड़ा कंटिन्यू भी रखेगी, है ना। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द मैं आपसे पूछूंगी वो वाला सवाल जो बना सकता है आपको बॉलीवुड सरताज।

0: दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्म फ्रेंचाइजी होती हैं जो वक्त के साथ और भी ज्यादा आइकॉनिक बन जाती हैं, और उन्हीं में से एक है डॉन। 1978 में अमिताभ बच्चन ने डॉन के रूप में एक ऐसा किरदार निभाया जो हिंदी सिनेमा के इतिहास का हिस्सा बन गया। इसके बाद 2006 और फिर 2011 में शाहरुख खान ने डॉन को एक नए अंदाज में पेश किया। उनका स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों को काफी पसंद आया और डॉन फ्रेंचाइज को एक नई पहचान मिली। आज भी जब डॉन का नाम लिया जाता है तो हर कोई कह देता है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे डायलॉग्स तुरंत याद आ जाते हैं ना। इसी वजह से जब भी डॉन फ्रेंचाइजी की जिक्र होता है, कोई इसका बात करता है, तो नए चैप्टर का हमेशा इंतजार रहता है। डॉन 3 को लेकर भी काफी चर्चा रही है। फिल्म के डॉन 3 का जो फिल्म का निर्देशन है वो फरहान अख्तर कर रहे हैं, और इस फ्रेंचाइज का अगला चैप्टर सबको एक्साइटेड रखा हुआ है, सबको इंतजार है। हाल ही में ये भी सामने आया कि रणवीर सिंह इस प्रोजेक्ट से बाय बाय कह चुके हैं, अलग हो चुके हैं। लेकिन अब देखना तो ये होगा ना कि मेकर्स डॉन को इस कहानी से क्या नया मोड़ देते हैं, किस अंदाज में पेश करते हैं, और जब डॉन की बात हो तो हम डॉन की यादों को कैसे ताजा ना करें।
1: अरे तुम का बताई भैया, हमरा हाल का है।
2: बताए दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भार कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे फिर तुमने दिया ये फान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान में।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2।

0: लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल एड ब्रेक. मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स. बॉलीवुड की दुनिया में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज के सालों बाद भी उतनी ही पसंद की जाती हैं जितनी अपनी रिलीज के दिन थी. इस महीने ऐसी ही एक फिल्म ने अपने 25 साल पूरे किए हैं और इस फिल्म का नाम है लगान. 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी. आशुतोष गोवारिकर ने इसको डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में आमिर खान ने भुवन का किरदार निभाया था. क्रिकेट और आजादी के जज्बे को एक साथ पेश करने वाली ये फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है ना. लगान को एकेडमी अवार्ड्स के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला था. आज भी जब भारतीय सिनेमा की ग्लोबली अक्लेम्ड फिल्मों की बात होती है तो लगान का नाम जरूर उठता है. इस फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने दिया था और गीत आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं. तो चलिए इसी यादगार फिल्म की धुन सुनते हैं ना.

दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट बॉलीवुड सरताज का। बॉलीवुड के दीवानों के लिए ये सेगमेंट हमेशा से खास रहा है। यहाँ हम आपके फिल्मी ज्ञान को परखते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन है वो हमारा असली बॉलीवुड सरताज। सो मेरा क्वेश्चन जो है आज का, ध्यान से सुनिएगा। जो फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, डायरेक्टेड बाय डेविड धवन, इसमें वरुण धवन और मृणाल ठाकुर के साथ और कौन है? जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल। मृणाल ठाकुर के अलावा यहाँ पर वो कौन सी दूसरी एक्ट्रेस है, मुझे बस उनका नाम बता दीजिए। व्हाट्सएप करिए अपना आंसर 9868107070 पर। लेट मी रिपीट, 9868107070। कौन है वरुण धवन और मृणाल ठाकुर के साथ वो दूसरी एक्ट्रेस यहाँ पर? तब तक के लिए छोड़कर जा रही हूँ आपको इस जबरदस्त हिट सॉन्ग रॉकस्टार मूवी से। आज इम्तियाज अली जी का भी जन्मदिन है। विशिंग हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आंसर्स का मैं वेट कर रही हूँ।

का अगला चैप्टर वेलकम टू द जंगल दर्शकों के सामने आने वाला है। फिल्म का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं और कास्ट में थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेती हूँ अपने आप को, ध्यान से सुनिएगा। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, जैकलिन फर्नांडिस, हो माय गॉड, रवीना टंडन, लारा दत्ता, दिशा पाटनी और कई अन्य कलाकार। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं इसमें। सच कहूँ, मुझे लग रहा है कास्ट के नाम पर, मतलब कास्ट के नाम सुनते सुनते ही ना लगता है कि पूरा का पूरा बॉलीवुड एक ही सेट पर पहुंच गया हो। शायद इसीलिए इसका नाम वेलकम टू द जंगल है, क्योंकि यहाँ सितारों का भी अपना ही जंगल लगा हुआ है ना। अब देखना यह होगा कि इतने सारे कलाकार मिलकर दर्शकों को कितना एंटरटेन करते हैं। ये फिल्म सिनेमाघरों में 26 जून को, जी हाँ, इसी महीने रिलीज होने के लिए तैयार है। और अब जब बात वेलकम की चली रही है तो व्हाई नॉट थोड़ा वेलकम का ही कुछ सुन ले हम।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल एड ब्रेक. आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स. एंड दोस्तों, जब भी हिंदी सिनेमा के सबसे सक्सेसफुल और यादगार फिल्मों की बात होती है तो गदर एक प्रेम कथा का नाम जरूर सामने आता है. 15 जून 2001 को रिलीज हुई इस फिल्म को इस साल इस महीने 25 साल पूरे हो चुके हैं. अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. तारा सिंह और सकीना की ये जो प्रेम कहानी थी इतनी प्यारी थी कि दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी इसने. फिल्म के डायलॉग्स, एक्शन सीन्स और उसकी जो धुन, उसके गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने रिलीज के समय थे. पता है, दिलचस्प बात यह है कि गदर और लगान दोनों ही एक दिन, जी हाँ, सेम डे 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी. दोनों ही फिल्मों ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपना अलग और खास मुकाम बनाया. सनी देओल के दमदार अभिनय और फिल्म की जो इमोशनल कहानी थी, इसे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बना दिया. आज भी जब तारा सिंह का नाम लिया जाता है तो फिल्म के कई यादगार दृश्य और डायलॉग्स तुरंत याद आ जाते हैं, ना? और मैं जब सनी देओल की बात करूं और उनके संगीत की बात ना करूं तो ऐसा नहीं हो सकता ना. मतलब मैं अगर आपको गदर का कुछ बहुत ही प्यारा सा ना सुनाऊं तो बॉलीवुड ट्रेल्स इनकम्प्लीट नहीं लगेगा.

दोस्तों अब वक्त आ गया है बॉलीवुड सरताज के सही जवाब का। आज के विजेता हैं कौन? आज के विजेता हैं तरुण कोहली जी, सूरजकुंड रोड मेरठ से। इन्होंने सबसे पहले फटाक से, जिसे कहते हैं ना, अपना आंसर दिया और वो भी सही था। मेरा सवाल था, जो अभी फिल्म रिलीज हुई है जवानी तो इश्क होना है, वरुण धवन और मृणाल ठाकुर के साथ वो कौन सी दूसरी एक्ट्रेस हैं? एंड तुरंत तरुण कोहली जी ने सही आंसर दिया एंड द करेक्ट आंसर इज पूजा हेगड़े। बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज। इनके अलावा सही जवाब भेजने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं। मैं सबका नाम यहां लेने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन भूल चूक माफ अगर आपका नाम मुझसे कहीं मिस हो जाए, सो आई एम रियली सॉरी। क्योंकि मैं ना अब मान चुकी हूं कि आप सारे लोग बॉलीवुड फैंस हैं, क्योंकि सब ने करेक्ट आंसर दिया है एक के बाद एक। अभी तक लुक, अभी तक ये मैसेजेस फिनिश ही नहीं हो रहे हैं। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। मैं पूरी कोशिश करती हूं आप सबके नाम लेने की। यहां पे ये आसिफ सैफी जी हैं मेरठ से, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। ईशा धर्मशाला से लिखती हैं, रंजय सिंह मेरठ से, प्रवीण चौहान जी हमें लिखते हैं, पंकज लिखते हैं हमें अमरावती महाराष्ट्र से, एंड द नेक्स्ट पर्सन हु हैज रिटन द करेक्ट, ओ आई एम सो सॉरी दानिश जी, आप यहाँ पर लिखते हैं मोनी रॉय, जो एक गलत आंसर है। बसंत तोमर मेरठ से लिखते हैं हमें पूजा हेगड़े, एंड

देर आर सो मेनी मैसेजेस कमिंग इन. विनीत कुमार हमें लिखते हैं उत्तर प्रदेश से. पूजा कोमल लिखती हैं हरिनगर नई दिल्ली से. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबने सही जवाब दिया है. लेकिन आज के हमारे जो विनर हैं वो हैं तरुण कोहली जी, सूरज कुंड रोड मेरठ से. सलीम मलिक जी भी हमें मेरठ यूपी से लिखते हैं. एंड द लिस्ट इज नॉट एंडिंग हियर. उमेश जी भी हमें लिखते हैं ख्याला से और इनका भी सही जवाब है पूजा हेगड़े. आई एम टेकिंग ऑल माई एनर्जी इन सबके नाम लेने के लिए. अगर कहीं आपका नाम मुझसे मिस हो गया हो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप सभी जो हमें इतना प्यार देते हैं शुक्रिया. इसी तरह बॉलीवुड ट्रेल्स के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखिए.

दोस्तों, सनी देओल के फैंस के लिए भी एक बड़ी फिल्म का इंतजार है। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बन रही बंटवारा 1947 भारत के विभाजन के दौर की कहानी को बड़े पर्दे पर लेकर आएगी। फिल्म में सनी देओल के साथ आपको प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और करण देओल नजर आएंगे। ये फिल्म पहले लाहौर 1947 के नाम से जानी जा रही थी। हाल ही में इसका नया टाइटल और पहला लुक सामने आया है। सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी पहले भी घायल, दामिनी और घातक जैसे यादगार सिनेमा दे चुकी है, इसीलिए दर्शकों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं और ये फिल्म माना जा रहा है इस साल 13 अगस्त को रिलीज होगी। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, कहीं भी मत जाइएगा।

द मोस्ट ब्यूटिफुल द मोस्ट एवरग्रीन संडे से आते हैं फ्रॉम द मूवी बॉर्डर। और दोस्तों, बॉलीवुड ट्रेल्स का आज का सफर यहीं समाप्त होता है। आज हमने बात की कुछ नई फिल्मों की, कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स की और कुछ ऐसे माइलस्टोन्स की जो हिंदी सिनेमा को और भी खास बनाते हैं। उम्मीद है बॉलीवुड की ये जो रंगीन दुनिया है आपको पसंद आई होगी और आपने इस सफर को भरपूर इंजॉय किया होगा। मैं हूं ज्योतिका और अब आप मुझे दीजिएगा इजाजत, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिलूंगी आपसे 1 बजे दोबारा रेनबो हेल्पलाइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो। लीविंग यू विद दिस अमेजिंग एनर्जेटिक सॉन्ग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एविया शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं।

पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा है कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
6: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है

0: पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: हाय
4: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी।

0: एचआईवी और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
1: गर्भावस्था में एचआईवी और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
0: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
2: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 और मैं हूं ज्योतिका। स्वागत है आप सभी का रेनबो हेल्पलाइन में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ड्रग एडिक्शन प्रिवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, उसका ट्रीटमेंट एंड रिकवरी, जो नशा मुक्त भारत अभियान से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहते हैं नशा सिर्फ एक व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि पूरे परिवार और समाज पर इसका असर पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही जानकारी, समय पर पहचान और उचित इलाज के जरिए इस समस्या से बाहर निकला जा सकता है। आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी, एमडी मेडिसिन और विजिटिंग कंसल्टेंट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, रेनबो हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, बिफोर वी स्टार्ट द शो, बिफोर वी बिगिन द शो, अगर हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहें कि ये एडिक्शन क्या होता है, नशा किस तरीके का होता है, क्या हर तरह का नशा एक एडिक्शन माना जाता है?
2: देखिए, एडिक्शन मतलब नशा, और नशा मीन्स आदत, आदत पड़ जाए। और ड्रग बोलते हैं, ड्रग जरूरी नहीं है, ड्रग वो किसी भी चीज़ के हम आदत पड़ जाए और उसको हम छोड़ना चाहें तो छोड़ नहीं पाए, और उसको छोड़ें तो उसके विपरीत इफेक्ट एक दिन भी उसके बिना नहीं रह पाए, तो उसको हम एडिक्शन कहते हैं। अब ड्रग इसलिए किया गया है कि इसमें ड्रग्स भी होती हैं, नॉन ड्रग्स भी होती हैं। नॉन ड्रग एडिक्शन ज़्यादा है। ड्रग्स जो हमारे मेन है वो है मॉर्फिन, पैरास्टामोल, फोर्टविन के लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, ड्रग कोडीन के इफेक्ट हो जाते हैं, कोई बार पेन किलर के ही एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मेन नशा जो चीज़ है, जो हानिकारक चीज़ें हैं, सबसे पहली लोगों को एडिक्शन है, सबसे कॉमन इंडिया में मैं बात करूं तो तम्बाकू का
1: जी,
2: और उससे बहुत ज़्यादा टंग कैंसर वगैरह सबसे ज़्यादा उससे होते हैं। सेकंड इज़ एल्कोहल, एल्कोहल मैं सेकंड बोलूँगा आपको, क्योंकि कई स्टेट में तम्बाकू इतना ज़्यादा है, लगता लोगों को कि एल्कोहल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है हमारी हीरोइन, कोकेन, LSD और गांव के अंदर भांग का नशा, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मेन इज ड्रग एडिक्शन विद, हम कंसल्ट करेंगे जो कोकेन, हीरोइन, चरस, गांजा जो सबसे ज़्यादा है, ये शहरों में ज़्यादा है।
1: मतलब जरूरी नहीं कि एक ही तरह का कोई ड्रग होता है जिसकी एडिक्शन हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो, आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहें, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ यहाँ रेनबो हेल्पलाइन पर।

0: आशियां तब बनता है जब आप खुश होते हैं, हेल्दी होते हैं। मैं हूं ज्योतिका, आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी, एमडी मेडिसिन एंड विजिटिंग कंसल्टेंट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। आज हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन के बारे में, उसके प्रिवेंशन के बारे में, कैसे पहचाना जा सकता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं, ट्रीटमेंट क्या रह सकता है, रिकवरी कैसे हो सकती है। और इसी सिलसिले में मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगी कि सबसे पहले आप ये बताइए कि नशा या ड्रग एडिक्शन असल में होता क्या है, मतलब क्या ये सिर्फ एक बुरी आदत ही मानी जाती है या ये एक मेडिकल कंडीशन है?
1: ये एक मेडिकल कंडीशन है और बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशन है। इसको लेते टाइम पता नहीं लगता, लेकिन ये ब्रेन पे इफेक्ट करती है सबसे पहले, और उसका बॉडी पे इफेक्ट करती है एंड सोशल, थ्री पार्ट पे अफेक्ट करती है। बॉडी पे सबसे ज्यादा ब्रेन पे करती है, जो ट्रांसमीटर होते हैं डोपामिन हमारा, वो इंक्रीज हो जाता है। तो शुरू में तो बड़ा एलिवेटेड मूड लगता है, उसके बाद वो डिप्रेशन में जाता है, उसको कंसंट्रेशन पावर खत्म हो जाती है, स्टूडेंट पढ़ नहीं पाता है, डिसीजन पावर खत्म हो जाती है और हाथों में कपकपी आने लग जाती है, बिल्कुल एक कर कोने में पड़ा रहता है, किसी बोलता नहीं है, खाता पीता नहीं है, बॉडी की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और बहुत सारी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं, लीवर खराब हो जाता है, लंग्स खराब हो जाते हैं।
0: तो इस तरीके से अगर मैं आपसे ये भी जानना चाहूं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या ये मतलब कोई भी ड्रग एडिक्ट बन सकता है या देयर इज अ स्पेशल, क्या कहते हैं, सर्कल, आपका जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, आपकी संगत जिसे कहते हैं, क्या ये प्रभावित करती है ये कंडीशंस?
1: देखिए, हमारी कंट्री में ना यूथ को ज्यादा है और इसका रीजन है, दो रीजन है इसको। एक तो हमारा एटमॉस्फेयर जो हमारी कंट्री में है, ईजी एसेसिबिलिटी, इतना ईजी है, हर पान की दुकान पे आपको तम्बाकू तो मिल ही जाएगा, ड्रग्स मिल जाएगी, हर कोने में मिल जाती है। किसी कंट्री में आप इतना 1 ग्राम 1 मिलीग्राम लेके एंटर भी नहीं कर सकते हैं, इतने सीवियर पनिशमेंट हैं। तो हमारे यहाँ कोई पनिशमेंट नाम की चीज़ नहीं है, पकड़ा जाता है, छूट जाता है। रोज हम देखते हैं एयरपोर्ट पर इतनी ड्रग पकड़ी गई, इतने किलो पकड़ी गई, तो इससे ईजी एसेसिबिलिटी। सेकेंड, उसी कंडीशन जो उसको सर्किल मिला, फ्रेंड सर्किल मिलता है, जो लोग उसमें होते हैं कि इसको, और वो इनोसेंटली उसमें घुस जाता है और फिर उससे बाहर नहीं आ पाता। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज स्ट्रेस, नाउ लोनलीनेस फीलिंग, पेरेंट्स दोनों वर्किंग है और जॉब छूट गया, एक टाइप की पर्सनैलिटी होती है जो डिप्रेसिव पर्सनैलिटी होती है, लोग वो स्ट्रेस को वीक पर्सनैलिटी होती है, थोड़ी हेरिडिटी भी हम कहेंगे, जो रोज रोज की स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाए, बोल्ड नहीं होते।
0: क्या मैं ये समझना चाहूँ आप कहना चाह रहे हैं?

0: कि जो डिप्रेशन है या वो
1: हेरिडिटी
0: अकेलापन जो है वो हेरिडिटरी रहता है।
1: भी हो सकता है, क्योंकि उसको अकेलापन में और वो डिप्रेशन बहुत जल्दी, कोई जॉब छूट गया, कोई एग्जाम में फेल हो गया, उस स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाता, वो ड्रग का सहारा ले लेता है, अल्कोहल का या इसका। लोग उसको फ्रेंड सर्किल और उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम ये ले लो तो तुम अपना दुख भूल जाओगे, तो इसलिए इस इंटेंशन से लोग ज़्यादा घुस जाते हैं।
0: वल्नरेबिलिटी जिसको कहते हैं कि
1: वल्नरेबिलिटी,
0: जो ये
1: यस,
0: सर्कल है वो
1: हाँ
0: उस शख्स को ढूंढते हैं जो आसानी से उनकी बातों
1: आसानी,
0: में आ
1: हाँ
0: सके। और पेरेंट्स को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे किस संगत में उठ बैठ रहे हैं और सबसे ज़्यादा क्या वो अकेला महसूस कर रहे हैं। कोई परेशानी है तो उसमें आपको ज़रूर उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल है आपके पास तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। 9868107070 पर आप अपना सवाल हमारे साथ यहां शेयर कर सकते हैं। हम आपका इंतजार कर रहे हैं।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन और आज हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन के बारे में, इसके प्रिवेंशन के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी, एमडी मेडिसिन एंड विजिटिंग कंसल्टेंट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। अभी हमने बहुत सारी जानकारी डॉक्टर साहब से ली कि क्या होता है ड्रग एडिक्शन, किस तरीके के ड्रग्स होते हैं और कितनी आसानी से आजकल मार्केट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हमें अभी फिलहाल मैसेज किया है राधेश्याम गुप्ता जी गाजियाबाद से, ये बहुत ही छोटा सवाल है इनका, पूछते हैं कि क्या ये जो एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में मिलती हैं, आपको कैफेज में भी मिलती हैं, रेस्टोरेंट्स में भी मिलती हैं, आप हाईवेज पे निकल जाएं तो आपको भरपूर मात्रा में मिलती हैं कि आपको जगाए रखें, क्या ये हानिकारक होती हैं?
1: ये बहुत हानिकारक होती है, स्पेशली स्टिंग सबसे ज़्यादा फेमस है बच्चों में। वो कहते हैं कि इसको पढ़ाई करने से नींद नहीं आती है, फ्रेशनेस रहती है, इसमें हाई लेवल ऑफ कैफीन होता है और इसमें जो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स से मिले होते हैं, तो इसको बहुत कम लेनी चाहिए।
0: और उसके बाद हमें ये सवाल भेजा है सादिर जी वेस्ट बंगाल से, पूछते हैं कि मैं अल्कोहल 6 से 8 ग्लासेस रोज लेता हूँ, इसको छोड़ने का क्या कोई दवाई है? मैं दिन में नहीं लेता लेकिन मैं रोज रात को लेता हूँ।
1: देखिए, इसको छोड़ने के लिए आपको पहले साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप खुद कह रहे हैं मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो आप उसको ग्रेजुअली छोड़िए। 7 से 5 पे आइए, 4 पे आइए, 3 पे आइए, मेडिकली परमिटेड 6 पैक्स अ वीक, 30 ml ले सकते हैं, वो भी हफ्ते में 6 दिन। इस पे अगर आप आ जाएंगे, क्योंकि जितनी हायर क्वांटिटी लेंगे मोस्ट डेंजरस इज लीवर के ऊपर, और एक बार लीवर फेलियर हो गया तो वो वापस रिवर्सिबल नहीं होगा। जो अभी आपका हाल है उसमें अभी रिवर्ट वापस, जैसे ही अगर आप छोड़ देंगे आपका लीवर विदिन 6 मंथ नॉर्मल आ जाएगा और लीवर फंक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे। तो आप जितनी कम से कम मात्रा में लीजिए और साइकेट्रिस्ट का सहारा लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे, कुछ मेडिसिंस भी देंगे जिससे रात को नींद आ जाए।
0: और अगला सवाल, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन इनका भी बहुत ही छोटा सा सवाल है कि मैं साल में 3 या 4 बार ही अल्कोहल का सेवन करता हूं और इसके अलावा कोई और तरीके का नशा नहीं करता, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा मुझ पर?
1: अगर साल में 3 या 4 बार लेते हैं, हम उसको ऑकेशनल अल्कोहलिक कहते हैं, उसको अल्कोहलिक नहीं कहते हैं, तो वो आप एडिक्शन में नहीं आएगा, पर 4 से 5 मत कीजिए बस आप।
0: और सिंस हम इस सब के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा 15 अगस्त 2020 को की गई थी। इस अभियान का जो मकसद है, उद्देश्य, लोगों खासकर युवाओं को नशा और नशे की हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक बनाना, समय पर पहचान को बढ़ावा देना और जरूरतमंद लोगों को काउंसलिंग, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन से जोड़ना है। अगर आप या आपका कोई भी परिचित नशे की समस्या से जूझ रहा है तो मदद लेना बहुत आसान है। भारत सरकार की नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नेशनल ड्रग एडिक्शन डी एडिक्शन टोल फ्री हेल्पलाइन 1-444-6 पर 24/7 संपर्क किया जा सकता है। इट्स 1-444-6। यहाँ ट्रेन्ड काउंसलर्स द्वारा टेली काउंसलिंग दी जाती है और जरूरत पड़ने पर नजदीकी डी एडिक्शन ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन सेंटर की

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
11: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
10: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
11: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
10: और विनर्स को क्या मिलेगा?
11: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
10: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
12: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं

0: भाषा विभाग दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

0: वेलकम बैक आफ्टर दिस स्मॉल एड ब्रेक. आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन विद मी ज्योतिका, और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी, एमडी मेडिसिन और विजिटिंग कंसल्टेंट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल. हम बात कर रहे हैं आज ड्रग एडिक्शन के बारे में, इसके प्रिवेंशन के बारे में, कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे आप इस सर्कल से अगर निकलना चाहें तो निकल भी सकते हैं. डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर कोई व्यक्ति नशे की तरफ बढ़ रहा हो तो शुरुआती सिम्टम्स या वार्निंग साइंस क्या होते हैं, मतलब जिन्हें फैमिली मेंबर्स पहचानना चाहें.
1: देखिए, कोई यंग है और अगर उसको ड्रग एडिक्शन हुआ स्टार्टिंग में, तो अगर वो बहुत ही एक्टिव है तो सडनली वो एकदम बिल्कुल लेजी दिखेगा और उसका फैमिली से इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है. बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, अपने कमरे में बंद रहेगा, एक किताब लिए पढ़ रहेगा, और उसके लाइफ में उत्साह खत्म हो जाता है. फिर धीरे धीरे बहुत सोएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोएगा, चलने में उसकी चाल बिल्कुल ढीली हो जाएगी, हाथों में ट्रेमर्स आने लग जाएंगे. तो ये सिम्टम्स तो बहुत है. बॉडी में फीवर हो जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा, फिर बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाता है. और वो इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं तो HIV और हेपेटाइटिस बी, ये बहुत कॉमन है ड्रग एडिक्स में.
0: अगर साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँ कि एज पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हम बच्चों को हमेशा सेफ रखें, एक सेफ एनवायरनमेंट दें, लेकिन आजकल की दुनिया में आप 24/7 तो किसी पर नजर नहीं रख सकते. वो क्या ऐसे अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाना चाहें इस बारे में, खुलकर बात करना चाहें, तो किस तरीके से करा जाए? क्या उन्हें डांटा जाए, धमकाया जाए, या क्या अगर कोई इसका सेवन करता है तो वो अपने दोस्तों का भी सहारा ले सकते हैं?
1: देखिए, एक बीमारी है एडिक्शन, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप नहीं फंसा है, धीरे धीरे जैसे इन्वॉल्व हो गया, अब वो उससे बाहर निकलना भी चाह गया, हर जना चाहता है बाहर निकलना. तो पूरे समाज की जिम्मेदारी है, खाली पेरेंट्स की नहीं है.

0: वैसे ही डिप्रेशन में होता है उसको, और साइकेट्रिस्ट के पास ले जाए, वो साइकोलॉजिकल थेरेपी देता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी समझाता है, उसके साइड इफेक्ट बताते हैं, और उसको एक अकेला नहीं छोड़े कभी भी, उसको डाइवर्ट रखें, उसको बिजी रखें, जरूरी नहीं है वो पढ़ाई करे, अखबार पढ़े, टीवी देखे, कुछ भी करे, लेकिन वो खाली नहीं रहे और बिजी रहे, और उसको अकेला कभी नहीं छोड़े।
1: अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, आप अपने दोस्त के लिए चिंतित हैं, या आपके कोई फैमिली मेंबर है, आपका नेबर भी हो सकता है, अगर आप किसी के बारे में भी कुछ भी जानना चाहें, डॉक्टर साहब आपका आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। 9868107070 इज द नंबर, आप अपना मैसेज हमें जरूर भेजिए एंड वी विल श्योरली टॉक अबाउट इट। आगे हम और भी बातें करेंगे डॉक्टर साहब से। स्टे ट्यून्ड विद अस राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन और आज हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन के बारे में। और इतने सारे सवालों के बीच एक और सवाल हमारे बीच आया है जो आपने नाम नहीं लिखा है, अगर आप नाम लिखते तो अच्छा लगता, लेकिन शी वॉन्ट्स टू आस्क अबाउट हर फादर, अपने पिता के बारे में जानना चाहती हैं। कहती हैं कि वो गोल्डन एक च्यूबल टोबैको है जो बहुत सालों से वो कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके चलते उनके दांत भी गिर चुके हैं और उन्होंने अभी टीथ एक्सट्रैक्शन करवाया है, नए डेंचर्स भी लगवाए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो गोल्डन नाम की इस चीज को च्यू करना चाहते हैं। तो क्या इससे बचा जा सकता है, कैसे मदद ली जा सके?
1: देखिए, मैं पहले ही बताया कि अल्कोहल से भी खतरनाक सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है, तो सबसे कॉमन टबैको, और टबैको का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है जो ओरल कैंसर, टंग कैंसर के केसेस इतने बढ़ गए हैं, और वो टोटली उन्हीं को हो रहे हैं जो टोटल टबैको एडिक्ट हैं। अल्कोहल से इतने नहीं हो रहे जितना कि टबैको से हो रहे हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि खाली डेंचर हो गया तो डेंचर रिप्लेस हो सकता है, लेकिन आगे कॉम्प्लिकेशंस में सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस हो जाता है, मुंह खुलता नहीं है, पूरा चबा नहीं पाता है, ये कॉम्प्लिकेशंस है बहुत ज़्यादा टबैको लेने की। और उसको छुड़ाने के लिए हमारे पास है निकोटिन च्युइंगम आती है, सिप्ला कंपनी की और भी आती है, वो तो लेनी होती है, उसको चबाओ तो इसको आप इतने सालों से अगर उनके फादर खा रहे हैं तो एकदम नहीं छोड़ पाएंगे, तो उसका नंबर ऑफ टाइम जितने ले रहे हैं, 10 बार ले रहे हैं तो 5 बार करें, 4 बार करें, तो वो जो च्युइंगम मुंह में रखते हैं तो उसका इफेक्ट जितनी देर रहता है तो उसकी फीलिंग नहीं होती जो एडिक्शन की, वो लें और धीरे धीरे इसको छुड़ाएं। एकदम तो नहीं छूट पाएगा लेकिन जितना हो सकेगा, और थोड़ा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से भी वो थोड़ा साइकोथेरेपी भी देंगे उनको, और आप लोग सब भी मदद कीजिए, लाइटर फॉर्म ऑफ तम्बाकू ले लीजिए जिसमें थोड़ा हो, और निकोटिन च्युइंगम आती है आजकल मार्केट में जो मुंह में वो रख लें च्युइंगम तो वो टेस्ट तम्बाकू जैसा रहता है, तो वो टबैको की फीलिंग नहीं आती लेने की।
0: ओके, कहा जाता है डॉक्टर साहब कि ये जो निकोटिन च्युइंगम होता है जो रिप्लेसमेंट होता है सुधार करने के लिए, इसको धीरे धीरे चबाना चाहिए, और मुंह में हल्की जब झंझनाहट या टिंगलिंग सेंसेशन हो तो उसको अपने दांतों के बीच में इसको पार्क कर दें, उसके दोबारा जब वो सेंसेशन खत्म हो जाए दोबारा से उसको च्यू करना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल इसका तरीका यही है जो आप बता रही हैं।
0: तो अगर आप अपने फादर को हेल्प करना चाहें तो ये जरिया बहुत ही इजी और आसान तरीके से आप इसकी तरफ बढ़ सकती हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, आप जानना चाहें कुछ, तो डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं, नंबर है 9868107070। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो ड्रग एडिक्शन है, क्या पूरी तरह इसका इलाज मुमकिन होता है, या ट्रीटमेंट आमतौर पर कितना समय लग जाता है अगर कोई दिल से नशा मुक्त होना चाहे?
1: देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, वंस अडिक्ट इज ऑलवेज अडिक्ट, पर उसके जो चैलेंज है बहुत बड़ा हमारे लिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, और बहुत इजी नहीं है ड्रग छोड़ाना, पर इसमें बहुत लोगों की हेल्प की जरूरत होती है, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। सबसे पहले अगर वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट है तो हम उसको एडमिट करते हैं डी एडिक्शन सेंटर में। जब एडमिट करते हैं तो वो जो 24 घंटे 48 घंटे जब वो मेडिसिन नहीं मिलती है तो वो रेस्टलेस हो जाता है, उसको नींद नहीं आती है, उल्टियाँ होती हैं, डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और कुछ खा नहीं पाता, तो उसको आई वी ड्रिप वगैरह, बी कॉम्प्लेक्स और ये सब देने पड़ते हैं, प्लस साइड साथ में लिवर टेस्ट, किडनी टेस्ट, उन पर इफेक्ट तो नहीं है ड्रग का, वो सब देखना पड़ता है, तो 2-3 डेज में वो जाके स्टेबल होता है। फिर हम उसको टैबलेट पे कर देते हैं जो ड्रग डी एडिक्शन की हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसको रेगुलर करता है साइकोलॉजिस्ट। कई कई एडिक्शन सेंटर हैं जो 21 डेज, 1-1 मंथ, 2-2 मंथ तक रखते हैं, 3-3 मंथ तक रखते हैं। अगर 6 मंथ तक अगर उसने नहीं ली एक बार भी तो वो हम उसको डी एडिक्ट कह देते हैं, वो नहीं लेगा। लेकिन आप एक बार डी एडिक्ट हो जाए तो कभी मत सोचिए, क्योंकि उसकी टेंडेंसी, उसकी पर्सनैलिटी, आगे उसको कभी भी जिंदगी में स्ट्रेस होगी, उसका जॉब चला गया या उसको कुछ किसी के घर में लड़ाई हो गई या कोई स्ट्रेस मिला, तो फौरन उस

0: आदि हो सकता है, उसका नज़र बनाए रखनी पड़ती है हमेशा। और 6 मंथ तक अगर वो नहीं लेगा तो 90% लोग वो छोड़ देता है।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी है। आप भी हमारे साथ बने रहिए रेनबो हेल्पलाइन में। आपके जहन में कोई सवाल हो हमें फटाफट व्हाट्सएप कीजिए 9868107070 पर।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल एड ब्रेक. और मैं हूं ज्योतिका, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन. डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमें अगला सवाल मिला है डिप्रेशन के बारे में. ये जानना चाहती हैं कि ये सिवियर डिप्रेशन से गुजर रही हैं, 15 से 16 घंटे ये आम तौर पर सोती हैं, इस चीज से निकलना चाहती हैं. हाउ टू एस्केप दिस हार्श रियालिटी?
1: देखिए, स्लीप जो है रिक्वायरमेंट एक पर्सन की 8 आवर्स है, 6 to 8, आइडियल 8 आवर्स. 18 आवर अगर आप सोते हैं, अगर डिप्रेशन में हैं तो आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कराइए. डिप्रेशन दो टाइप का होता है, या तो आप रिएक्टिव होता है, जो आपको कारण पता हो तो उस कारण से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तो आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको अपने आपका लाइफ को एक्टिव करो, मॉर्निंग में उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, और थोड़ा वो बाहर निकल के घूम के आइए, थोड़ा इंटरेक्शन कीजिए दोस्तों से, घर वालों से, अपने आप को लोनलीनेस फील कीजिए. प्लस साइकेट्रिस्ट से भी लीजिए, कोई एक आध कोई मेडिसिन हल्की सी दे देंगे, जिससे रात को एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हल्की सी लेके. बट 18 आवर्स स्लीप इज नॉट द आंसर, इट कैन बी ट्रीटेड वेरी इजीली.
0: मतलब अगर आप दिल से चाहें तो आप जरूर ये काम,
1: आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप जरूर.
0: जाते जाते शो का टाइम खत्म हो रहा है. अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, 9868107070 पर हम आपके सवाल का इंतजार कर रहे हैं.

0: अब धीरे धीरे हमारे जाने का समय हो रहा है और मैं डॉक्टर साहब से जाते जाते आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि हमारे युवा श्रोताओं और उनके माता पिता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि हम सब मिलकर नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बना सकें।
1: मैं सबसे ज्यादा युवाओं को आपसे अपील करूंगा, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। एक युवा अगर ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो उसका कैरियर खत्म हो जाता है, आगे कोई काम नहीं कर पाएगा। फाइनेंशियल बर्डन है कंट्री के ऊपर भी, पेरेंट्स के ऊपर भी, फैमिली के ऊपर और खुद के ऊपर भी। दूसरा, मोस्ट ऑफ द सुसाइडल टेंडेंसी इज इन द यूथ ऑफ ड्रग एडिक्ट, तो उनमें डिप्रेशन आता है, सुसाइड कर लेते हैं। तो दिस इज अपने आप को खुद को मारना है, तो इससे अपने आप को बचाएं और दोस्तों से दूर रहें, ड्रग एडिक्शन से बिल्कुल दूर रहें। कोई आपका व्यक्ति अगर ड्रग एडिक्ट आपको लगता है आपका साथी है तो उसके फौरन हेल्प करें, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें और उसको रीअश्योर करें, उसको ड्रग छुड़ाने में आसानी करें। और ड्रग एडिक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंट्री की और इसको जितना हो सके, ये सब यूथ के हाथ में है। जितना यूथ में अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा एंड दे मोटिवेट अदर थिंग, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं हेल्थ बनाने के लिए। फिटनेस में जा सकते हैं, प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, टेक फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल, गुड डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, टेक प्रॉपर स्लीप एंड रिलीव योर स्ट्रेस विथ योगा। थैंक यू वेरी मच
0: डॉक्टर अशोक शर्मा जी, रेनबो हेल्पलाइन में आने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिएगा, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। इसी मैसेज के साथ हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं ज्योतिका, आप सुन रहे थे रेनबो हेल्पलाइन, आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक प्रोग्राम आशियाना के साथ मैं कंचन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और दिल से दिल तक जुड़े होंगे एफएम रेनबो के साथ। घर आशियाना, जिसे बनाती हैं हमारी माँ, चाची, बहन, भाभियाँ, संवारती हैं उन्हें, हमारे आशियाने को सजाती हैं और उनकी जो उनका जो प्यार होता है ना, बसा होता है घर के हर एक कोने में और सबका इतना अधिक ध्यान रखती है जैसे कोई जादू की छड़ी हो उनके पास। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है जब कोई किसी लंबी बीमारी से, गंभीर मानसिक समस्या से हमारे अपने गुजर रहे होते हैं तो किसी अपने की लगातार देखभाल करते हुए वो तन के साथ भावनात्मक रूप से भी बुरी तरह से टूटती चली जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें और अपने खुद का भी ध्यान रखें, इसी बारे में बात होगी आज प्रोग्राम आशियाना में। जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक।

काश कोई समझ पाता, ऐसे विचार तो आते ही है ना, क्योंकि वो भागती रहती हैं, सबका ध्यान रखती रहती हैं, मशीन की तरह चलती रहती हैं सुबह से लेकर रात तक, और फिर अपनी थकान की तो उन्हें परवाह ही नहीं होती है। और ऐसे में कई बार जो अपने हैं वो गंभीर समस्या से जब गुजर रहे होते हैं तो वो जो थकान है वो पूरी तरह से हावी हो जाती है, और ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। और गुस्सा, बेचैनी, रोना, थकान या परेशान होकर वो बिल्कुल उलझी सी रहती हैं। तो ऐसे में अगर गुस्सा आए या बेचैनी हो, रोना आए, थकान हो या परेशान हो जाना कोई कमज़ोरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक मानवीय स्वभाव है, और खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक मानवीय स्वभाव है, अपने अपनों की देखभाल ठीक ढंग से ना कर पाने का जो अपराध बोध होता है ना, या कई बार हमें लगता है कि कहीं दूसरे हमें गलत ना समझ जाए, तो इन सब चीज़ों की परवाह ना करके कई बार अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना भी सही है, तभी सुकून मिलता है और बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी को हम जी सकते हैं। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, मैं आपके साथ कंचन।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
9: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो।

0: इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
2: पानी पानी पानी पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है। तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।

दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब किसी लंबी बीमारी से हमारे अपने गुजर रहे होते हैं या गंभीर मानसिक समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो उनकी देखभाल करते हुए जो घर की महिलाएं होती हैं वो अक्सर बहुत थक जाती हैं और वो अपनी परवाह बिल्कुल भी नहीं कर पाती। उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि उनका जो सेहत है वो किस तरह से बिगड़ता जा रहा है या फिर वो भावनात्मक रूप से टूटती चली जा रही हैं। तो ऐसे में अपनी शरीर की बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारा जो शरीर है वो तनाव को बहुत जल्दी दर्ज कर लेता है और जब आप बोझिल महसूस करें तो बहुत सारे टेक्निक्स का सहारा लिया जा सकता है। अपनी इंद्रियों को सक्रिय रखें, जैसे शांत संगीत सुनें, पसंदीदा एल्बम देखें, फोटोज़ देखें, अच्छा खाएं या फिर अपनी पसंद का कोई भी काम करें। और फिर एफएम रेनबो तो है ना आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाए।
2: दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। तन और मन की सेहत के लिए योग अपनाया जाना ही चाहिए, और आज आरोग्य पथ के तहत हम बात कर रहे हैं शीर्षासन की। शीर्षासन को योग मुद्राओं का राजा माना जाता है। शीर्षासन के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क, आंखों और बालों की सेहत जो है बहुत अच्छी हो जाती है, एकाग्रता बढ़ती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। साथ ही तनाव, चिंता, डिप्रेशन से भी निजात मिल जाती है। शीर्षासन जो है संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, शीर्ष और आसन, जिसका अर्थ होता है सिर के सहारे योग करना। तो शीर्षासन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस कठिन योग आसन को हमेशा किसी एक्सपर्ट योग टीचर की देखरेख में ही शुरू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि शीर्षासन की जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, मैं आपके साथ कंचन।

0: शबदंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे, कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओ, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षा

0: को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब, तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है, तो आपको बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओ, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800-440-559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थी। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने

0: चित्रकारी शुरू कर दी।
1: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
2: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
1: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
0: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
2: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
1: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
1: जी हाँ।
4: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
1: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
1: मैं पूछती हूँ।
0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
2: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
1: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
1: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
2: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
5: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए।
1: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
1: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
5: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
1: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी। मेरी तरफ देखो
5: सू, ओनली 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
1: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
5: 3 पत्तियां।

0: पत्तियां? हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सु,
1: हाँ,
0: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
1: क्या लगता है?
0: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
1: क्या जॉनसी?
0: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
0: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: हाँ
0: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
1: ओ जॉनसी।
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
0: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम 1 पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
0: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी।

0: रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू।
2: हाँ जॉन्सी।
3: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी।
2: मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ
2: हाँ,
3: मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
2: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: हाँ।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
3: ये लो कॉफी पियो।
2: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
2: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
3: हाँ।
2: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
3: हाँ वही।
2: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
3: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
2: ओ गॉड,
3: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
2: क्या?
3: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
2: क्यों नहीं गिरा?
3: हाँ,
2: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
3: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।

0: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ
1: मास्टरपीस, मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज के नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। रेडियो डॉक्टर में आज का विषय है डीलिंग विद ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हमारे आज के एक्सपर्ट, आज के रेडियो डॉक्टर डॉक्टर दीपक जोशी। आप डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपक आपका आकाशवाणी के स्टूडियो।
2: बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।
1: तो सर, ये जो विषय है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो हम सुनते तो बहुत ही गठिया का रोग है, बहुत कॉमन रोग है। हम समय समय पर रेडियो डॉक्टर में इस विषय को उठाते रहते हैं क्योंकि बहुत हमारे पास प्रश्न आते हैं कि इस रोग से संबंधित लोगों को जिज्ञासा है, उनकी कुछ समस्याएं हैं। तो मुझे सबसे पहले ये समझना है कि हम विषय को समझ लें, क्योंकि हम आज ऑस्टियोआर्थराइटिस पे बात कर रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन बना रहता है। क्या ये दो बीमारियां एक सी हैं, आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सेम है कि अलग है, और अलग है तो क्या अलग है?
2: बेसिकली जब हम आर्थराइटिस बोलते हैं तो आर्थराइटिस, बहुत तरह की आर्थराइटिस होती हैं जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस एक है, लेकिन आम भाषा में अगर हम लेके चलें, जब हम आर्थराइटिस लेके चलते हैं तो हम बेसिकली रेफर ऑस्टियोआर्थराइटिस को ही करते हैं। अच्छा। जबकि और तरह की आर्थराइटिस जैसे होती हैं जो ब्लड में की वजह से होती हैं, जैसे जिसको कहते हैं हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के उसमें कहते हैं, और बीमारियां होती हैं जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, या फिर आपका गाउट हो गया, गाउटी आर्थराइटिस हो सकता। तो ये बड़ी सारी आर्थराइटिस और तरह की भी होती हैं जो कि ब्लड में एक स्पेशल टाइप के एंटीबॉडीज होती हैं जिसकी वजह से होती हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली टिपिकली जो उम्र से रिलेटेड आर्थराइटिस होती है, जिसमें कार्टिलेज घिसने शुरू हो जाती है, सब में घिसती है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में एज रिलेटेड आर्थराइटिस है। तो इन जनरली जो बेसिकली अगर हम आर्थराइटिस माने तो हम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ही कहते हैं।
1: जी, तो जहां तक मुझे समझ में आता है, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ, तो आर्थराइटिस इज अ ब्रॉडर टर्म, उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस एक है, पर ऑस्टियोआर्थराइटिस इज मोस्ट कॉमन,
2: इज द मोस्ट कॉमन।
1: सो मैंने सही समझा, और अगर आप श्रोताओं ने भी सही समझा है तो बिल्कुल यही विषय है हमारा आज। हम आर्थराइटिस से जुड़े कुछ सवाल आपके ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को अच्छे से डिस्कस करें, इसको अच्छे से जाने, इसके बारे में समझें, और इसकी जो समस्या जो होती है, जो डॉक्टर साहब ने बोला एजिंग से रिलेटेड ज्यादा होती है, तो ये क्यों हो जाती है और किस तरह से इससे हम बच भी सकते हैं, ये भी डॉक्टर साहब जरूर बताएंगे। तो आपके मन में कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं, आपके मन में भी समस्याओं का या समाधान चाहते जरूर होंगे आप, तो बिल्कुल हमारे कार्यक्रम से जुड़ जाइए, इसको सुनिएगा जरूर। हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, डॉक्टर दीपक जोशी हमारे साथ रहेंगे कार्यक्रम के अंत तक। तो जो भी पूछना है चूकिएगा नहीं, जरूर पूछ लीजिएगा। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोनों तरह की जो आर्थराइटिस है, हर आर्थराइटिस का इलाज अलग है, लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस कॉमनेस्ट आर्थराइटिस है। तो हम ऑस्टियो आर्थराइटिस के लेके चलें कि पता कैसे लगता है कि एकदम से लगता है कि आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले जो हमने देखा है, जो हम मरीजों से भी पूछते हैं, सीढ़ियाँ उतरते समय दर्द नॉर्मली आता है कि उतरते समय हमें दर्द शुरू हो गया, या सीढ़ियाँ चढ़ते समय में, मतलब इंक्लाइन में जा रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं, तब जनरली दर्द शुरू होता है आगे पोर्शन ऑफ घुटनों में। तो सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है, तब इसका मतलब आपकी आर्थराइटिस स्टार्ट हो गया और आपको अपनी बॉडी पे अब ध्यान देना पड़ेगा।
1: जी, तो मैं सिम्टम्स जानना चाह रही थी डॉक्टर साहब। तो एक सिम्टम आपने ये बताया और ये इनिशियल सिम्टम है
0: इनिशियल
1: कि
0: सिम्टम जो
1: सीढ़ी
0: हमारे
1: चढ़ते और उतरते वक्त पेन
0: जो, क्योंकि
1: होना।
0: कॉमनेस्ट जो ज्वाइंट इन्वॉल्व है हिंदुस्तानियों में वो है घुटने का ज्वाइंट, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में। बाकी ज्वाइंट भी इन्वॉल्व होते हैं, वो लेट स्टेज में होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इन्वॉल्व होता है वो
1: नी वाला
0: घुटना,
1: होता
0: नी
1: है
0: होता है।
1: जी।
0: तो नी में सबसे पहला सिम्टम जनरली जो मरीज हमें बताते हैं कि हमें सीढ़ी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना मर्जी चला लो, लेकिन सीढ़ी जैसे ही उतरते हैं तो उतरा नहीं जाता, धीरे धीरे उतरना पड़ता है।
1: तो एक तो ये सिम्टम आपने बता दिया है जो सबसे पहले होता है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स और बताना चाहें जिससे लोग समझ जाएं कि हमें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो रही है।
0: तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली अगर हम लेके चलें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है हड्डी का घिसना, जो कि उम्र के साथ साथ नॉर्मल है। जैसे बाल सफेद होते हैं, स्किन में झुर्रियां पड़ जाती हैं, ऐसे जो हमारी कार्टिलेज है वो बहुत ही स्मूथ, जो कार्टिलेज जो जोड़ को चलाने वाली है, जो जोड़ के बीच में जो कार्टिलेज होती है वो बहुत स्मूथ होती है, उसमें लुब्रिकेशन होती है। मशीन की गरारी की तरह आप समझ लें कि मशीन की गरारी जब नई आप बनाते हो तो उसके जो एजेस होती हैं वो बहुत स्मूथ होती हैं। फिर जैसे जैसे वो मशीन चलती रहती है, चलती रहती है, आफ्टर सम टाइम वो घिसना शुरू हो जाती है, उसमें रगड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं। तो ऐसे ही इस कार्टिलेज में विद एज जैसे जैसे चलती जाती है वैसे वैसे इसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं। तो जो सिम्टम्स हो शुरू होते हैं ये स्पेशली होता है कि दर्द होना, पहले होता है डिस्कम्फर्ट कि कुछ कुछ एक्टिविटी करने में डिस्कम्फर्ट, जैसे सीढ़ियां चढ़ने में, सीढ़ियां उतरने में, या पहाड़ पे चढ़ने में, या बहुत लंबा चलने के बाद कभी थोड़ा बहुत दर्द शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कोई भी मूवमेंट आप कर रहे हो उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। आप अगर 3 किलोमीटर चल रहे थे पहले तो 1 किलोमीटर आप चलना शुरू हो जाते हो। और आमतौर पर क्या होता है कि हल्की सी चोट लगती है उससे दर्द इतना ज्यादा तेज होता है कि मतलब जरूरत से ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली ये सारे सिम्टम्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के
1: जी। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो
2: जी, नमस्ते मैम।
1: जी नमस्ते
2: जी, आपको आपको बहुत धन्यवाद मैम, दोनों डॉक्टर साहब को भी, आपको भी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अपना नाम बता दीजिए।
2: जी नाम है रहमत अली मैम।
1: जी रहमत अली, कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ?
2: जी हरियाणा से मैम।
1: अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है, आप कार्यक्रम सुनते हैं।
2: जी जी बराबर सुनते हैं मैम।
1: चलिए आज आप प्रश्न भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, स्वागत है। आप प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं।
2: जी डॉक्टर साहब से मेरी ये दरखास्त है कि हम सीढ़ी चढ़

0: को भी हम एक्सरसाइज बताते हैं, उनको बहुत जल्द ही आराम मिलता है, और शर्तिया इलाज, शर्तिया बेसिकली हम कहते हैं कि उनको डेफिनेटली आराम मिलेगा पहले से।
1: डॉक्टर साहब एक बात है कि आपसे अगर हम मिलना चाहें तो मिल सकते हैं ना?
0: हाँ जी बिल्कुल मिल सकते हैं आप हमसे, हम सब
2: जी। मैं बता देती हूँ आपको पुनः कि डॉक्टर दीपक जोशी हमारे साथ हैं, आप डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल में, और डॉक्टर साहब से आप वहीं मिल सकते हैं। बहुत भीड़ होती है डॉक्टर साहब बताते हैं कि वहां पर थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, पर डॉक्टर साहब सबसे मिलते जरूर हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो
3: नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार, आप अपना नाम बता दें।
3: धर्मवीर गंगेनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार धर्मवीर जी।
3: अक्सर जैसे कि हमारे एक रिश्तेदारी में एक महिला है, तो उनको सीढ़ी जब चढ़ती है तो हर स्टेप पे एक ही कदम रखती है, जो राइट का रखा है तो फिर वो राइट का ही दूसरे पे रख के, फिर जैसे बच्चे चढ़ते हैं सीढ़ी इस तरह ही चढ़ती है और इस तरह ही चलती है,
0: वैसे ठीक चलती है।
3: पैर का जो मूवमेंट है मतलब उसको ज्यादा एक्टिव नहीं ले पाती, तो क्या ये गठिया है या इनके बाकी ज्वाइंट में इसकी थाई की प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आता। तो उन्होंने अभी इलाज तो कराया पर आराम तो है नहीं इनको।
0: एक्चुअली डॉक्टर को दिखाना होता है। अब गठिया जिसको कहते हैं आमतौर पे एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डी की रोग, और गठिया जब होता है तो जनरली हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकती है। अगर बहुत सारे जोड़ इन्वॉल्व हैं, सारे जोड़ों में दर्द है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ब्लड टेस्ट करा के कि इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लामेटरी या इन्फेक्टिव या और तरह की आर्थराइटिस ना हो। पर आमतौर पर जो ये आप कह रहे हो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये हर आर्थराइटिस में होता है, पर अगर उम्र के साथ हो रहा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ना तो फिर एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और कुछ खास तरह की दवाइयाँ इसमें लेनी पड़ती हैं। जमीन पे नहीं बैठना होता है, आलती पालती नहीं मारनी होती है जिससे जॉइंट के अंदर प्रेशर ज्यादा पड़े, और थोड़े टाइम जब दर्द बढ़ जाता है तो उस वक्त आप जैसे सर्दियां होगी तो उनमें दर्द
3: ठीक हो सकता है,
0: बिल्कुल ठीक हो सकता है एक्सरसाइज से। बहुत ही आखिरी स्टेज है, सपोज करो स्टेज 4 पहुंच गई तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, अदरवाइज ये एक्सरसाइज और दवाइयों से डेफिनेटली बेहतर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज तो रिवर्स तो नहीं होगा लेकिन डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ेगा और दर्द में आराम मिलेगा।
2: जी धन्यवाद प्रश्न करने के लिए, बहुत सारी बातें आपने पूछी और बहुत सारी बातें हमें इस सवाल में पता चली। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर 4th स्टेज का है तो सर्जरी करनी होती है, मुझे यही पूछना था कि सर्जरी की नौबत कब आती है, तो आपने बताया कि जब बहुत बढ़ जाता है गंभीर हो जाता है। हाँ। तो पहले ये बताइए कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है, कितने प्रकार का हो सकता है?
0: बेसिकली अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की 4 स्टेजेस होती हैं, अगर हम क्लासिफिकेशन साइंटिफिक वे से क्लासिफिकेशन करें हैं, तो जो स्टेज 1 और स्टेज 2 होती है ना, वो एक तरह से हम लेके चलते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल तो होती नहीं है लेकिन डेफिनेटली एक्सरसाइज से बिल्कुल ठीक हो जाती है, आगे बढ़ती नहीं है। स्टेज 3 जब होती है उनमें स्टेज 1-2 में बेसिकली यही होता है कि सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दर्द, या बहुत लंबा चढ़ ले तब दर्द हो जाता है। जो जब स्टेज 3 और फिर स्टेज 4 होती है तो बेसिकली कार्टिलेज इतनी खत्म हो जाती है कि हड्डी हड्डी से रगड़ खानी शुरू कर देती है। तो जो मरीज थोड़ा सा ही चलता है तो हड्डी से, जब भी हड्डी से हड्डी, क्योंकि कार्टिलेज एक ऐसी चीज है जो कि जो बॉडी में जिसमें दर्द की जो नर्व्स हैं, जो ब्रेन हमारा, हम दर्द कब हमें होता है, जब हमारे दिमाग को पास नर्व्स जो पेन वाले फाइबर्स हैं वो हमारे ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन परसीव करता है, दिमाग परसीव करता है कि पेन को। अब जब ये कार्टिलेज घिस जाती है तो जो हड्डी है, हड्डी हमारी बहुत पेनफुल स्ट्रक्चर है, जैसे आप सोचो फ्रैक्चर होता है तो कितना ज्यादा दर्द होता है। तो हड्डी जब हड्डी हड्डी से टकराती है, मतलब दो नसें एक दूसरे से टकरा रही हैं एक तरह से, तो दिमाग को बिल्कुल एकदम से झंझनाहट होती है और दर्द की बहुत वो होती है और पेशेंट कराह उठता है। जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि हर कदम पे दर्द है तो ऑपरेशन कराना चाहिए, और ऑपरेशन भी बहुत सक्सेसफुल है।
2: जी तो ऑपरेशन मतलब उसको ट्रांसप्लांट ही,
0: हाँ,
2: हो गया,
0: घुटना बदलना, नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट या बाकी जो,
2: तो ये लास्ट स्टेज में करना,
0: ये लास्ट स्टेज में।
2: हाँ। तो ये लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचे इसके लिए आपने बताया कि एक्सरसाइज की बहुत आवश्यकता है। हमारे एक कॉलर वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो।
4: हाँ जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा दिल्ली से ही, और पहले तो शालिनी मैम और डॉक्टर साहब दोनों को तहे दिल से नमस्कार और आभार।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
4: अब अपने सवाल पे आते हैं डॉक्टर साहब, मुझे ना 2004 से ही कमर में और गर्दन में जो है वो परेशानी है। कमर में जो है जो डिस्क है उसमें कोई परेशानी नहीं है, जो दोनों ये हिप्स है ना इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे जो है इसमें प्रॉब्लम हो रही है, और गर्दन में भी होती है ना पीछे नेक की जो हड्डी होती है इसके दाएं तरफ ज्यादा। अब क्या होता है कि आगे की ओर अगर मैं बेंट होता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है।

0: मेरे हिप्स के थ्रू ही प्राण निकल जाएंगे, और अगर मैं दाएं बाएं या पीछे की ओर बैंड फोल्ड होता हूँ तो मुझे जो है उसमें रिलीफ मिलता है। तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि इज इट ऑस्टियोसिस या ये कोई और बीमारी हो सकती है। इसके लिए मैंने आयुर्वेदा की दवा भी खा ली, ऑइंटमेंट, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी।
1: चलिए राजेंद्र जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सवाल तो समझ गए डॉक्टर साहब
0: जी,
1: जी धन्यवाद।
2: जब आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पाइन की होती है, जैसे सर्वाइकल स्पाइन होगा या आपकी नीचे की स्पाइन है, तो उसको हम स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। तो एक तरह से इसमें भी जो रीढ़ की हड्डी के छोटे छोटे फेसेट ज्वाइंट्स हैं, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी नैरो हो जाती है और दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नसों पर प्रेशर पड़ता है। तो जो आप बता रहे हो एक साइड में दर्द है, इस तरह के पेशेंट बहुत कॉमनली आते हैं आम ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी में, क्योंकि जो मांसपेशी है ट्रेपीजियस जिसको कहते हैं, ये अकड़ जाती है। जनरली फिजियोथेरेपी और रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। अर्नेस्ट रंडेल, जो आप कह रहे हो हिप में पेन है, तो हिप में तो फिर एक्सरे करा के देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि हिप में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, पर इन जनरली हमने हिंदुस्तानियों में कम देखा गया है ये हिप की ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो देखना पड़ेगा एवियन ना हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम ना हो, तो ये आपको एक्सरे करा के मतलब सलाह परामर्श करना पड़ेगा आसपास के ऑर्थोपेडिक सर्जन से।
1: तो एक बार इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए डॉक्टर साहब, जैसा कह रहे हैं राजेंद्र जी। एक और हमारे कॉलर हैं। हेलो,
3: हेलो, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी यशपाल जी,
3: शाली मैडम और डॉक्टर जोशी को बहुत बहुत नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
2: नमस्कार।
1: जी।
3: मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ और कई बार ट्राई किया फोन करने को, लेकिन आज बहुत शुभ दिन ही फोन मिल पाया।
1: चलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका फोन आज लग गया, हमारा फोन अति व्यस्त रहता है, आपको भी पता है विशेषज्ञ होते हैं तो।
3: मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका यहाँ भी देखता हूँ और एक जो आता है सैटरडे को सुबह वो भी सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए, उनको पसंद करने के लिए।
3: स्वास्थ्य पत्रिका जो आता है,
1: जी स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत आता है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी सुन रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं। चलिए आप प्रश्न कर लीजिए।
3: हाँ, प्रश्न मेरे डॉक्टर साहब से ये है कि हड्डियों की जो बोन स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए जो डेक्सा स्कैन होता है रिकमेंड किया जाता है, तो वो कितना करेक्ट है और किस एज में एक नॉर्मल मेल और फीमेल को करवाना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो विटामिन डी सप्लीमेंट होता है, क्योंकि कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता विटामिन डी की कमी से, तो ये विटामिन डी कौन सा बेस्ट रहता है और उसको तरीका लेने का क्या है बेस्ट? क्या ये विटामिन K2 से कंबाइन भी किया जा सकता है? थैंक यू।
2: पहला सवाल था कि
1: ये डेक्सा स्कैन के बारे में।
2: हाँ, सो डेक्सा स्कैन ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी की कमजोर, मतलब इट इज नॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस, बेसिकली हड्डी कितनी कमजोर हो रही है उम्र के साथ साथ, हड्डी में कैल्शियम और उसका स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है। तो आमतौर पे हम 50 इयर्स के ऊपर हर फीमेल को और 60 इयर्स के 60 साल से ऊपर हर मेल को रिकमेंड करते हैं कि एक बार डेक्सा स्कैन कराना चाहिए, और ये बहुत ही सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक है और इसके मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होता है ये, ठीक है। इससे हमें पता लग जाता है फ्रैक्चर रिस्क कितना है। अगर आपका डेक्सा स्कैन खराब है उस उम्र में, तो फिर आपको दवाइयों के साथ एवरी ईयर कराना पड़ेगा। अगर आपका बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको एवरी 5 ईयर कराना पड़ेगा। मैं ये हम रिकमेंड करते हैं जनरली पेशेंट्स को। दूसरा सवाल था कि
1: विटामिन डी सप्लीमेंट,
2: नॉर्मली हमने देखा है कि हिंदुस्तान में मोस्टली जो लोग हैं विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो वी क्योंकि सन एक्सपोजर हमारा बहुत कम रहता है और डार्क स्किन भी है और पूरा बॉडी कवर रहती है, तो इसमें या तो आपको सनलाइट लेनी चाहिए, जो सनलाइट आप दिन की नहीं क्योंकि उसमें यूवी रेज होती हैं, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग की जो स्लांटिंग रेज हैं वो बहुत इफेक्टिव रहती हैं अगर आपकी बॉडी एक्सपोज्ड है, तो उससे विटामिन डी बनता है। दूसरा, सप्लीमेंट्स रिकमेंडेड हैं इस एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है आई थिंक 3 या 4 महीने इन्हें ईयर लेना है, ऐसा नहीं है कि पूरा साल लेते रहना, नहीं तो हाइपर विटामिनोसिस, विटामिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, वो भी नुकसानदायक होती है, तो लिमिट में लेना है 4 से 5 महीने आई थिंक इन ए ईयर जो है साल में, वो बहुत एडिक्वेट है अलोंग विद कैल्शियम अब्सॉर्बमेंट। विटामिन K2 के साथ लेना है या नहीं लेना, ऐसा जरूरी नहीं है, आप सिंपल विटामिन डी लीजिए, कोई भी विटामिन डी आप ले सकते हैं, उसमें हर तरह से है। अगर आपको कुछ GIT प्रॉब्लम है, आपको बार बार डायरिया या किसी को पेट खराब रहता है और लगता है कि विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसको इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जा सकता है। तो इंजेक्शन जैसे में 6 लाख यूनिट्स होते हैं, तो मतलब एक इंजेक्शन करीब करीब 3-1.5 महीने की 3 महीने की दवाई को कवर जनरली कर लेता है।
1: अच्छा, एक इंजेक्शन में उतनी रहती है। ओके, एक इन्होंने ये और जानना चाहता है, जहां तक मुझे समझ में आया, कि इसको कैसे लिया जाना है, क्या विटामिन डी की जो टैबलेट सैशे जो भी है उसको लेने की कोई विधि होती है, पानी के साथ, दूध के साथ, रात में, दिन में?
2: आजकल काफी जेल बेस्ड टैबलेट होती है, आप नॉर्मली पानी के साथ ले, दिन में ले सकते हो, अर्ली मॉर्निंग आप ले लो, है ना, दूध के साथ भी ले सकते हो, सैशेट्स को आप पानी में मिला के ले सकते हो, दूध में मिला के भी ले सकते हो,
1: ऐसे
2: हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है,
1: ठीक है। हमारे पास मैसेजेस भी आ गए हैं, हमारे श्रोता हमको लिखकर भेज रहे हैं, प्रलीना सेन झारखंड से हमें लिखकर भेज रही हैं। इनका प्रश्न है, डज ऑस्टियोआर्थराइटिस अफेक्ट टीनेजर्स आल्सो या सिर्फ एडल्ट्स को होता है, और व्हाट काइंड ऑफ डाइट वन शुड टेक टू अवॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस?
2: टीनेजर्स में जनरली नहीं होता है, टीनेजर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है फिर अलग तरह की, जनरली ब्लड बेस्ड आर्थराइटिस या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कॉमन होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस तभी होगी अगर बचपन में चोट लगी है, उसकी वजह से कार्टिलेज खराब हो गई है।
1: अच्छा,
2: तो जनरली ना के बराबर ही आप समझो। रिगार्डिंग डाइट, डाइट टीनेजर के अगर हिसाब से देखें तो डेफिनेटली जो कैल्शियम रिच डाइट, अराउंड जो 1000 mg कैल्शियम होना चाहिए वो डाइट में जरूर होना चाहिए, विटामिन डी भी ऑफ एंड ऑन लेना चाहिए। डाइट्री में जो बैलेंस डाइट है जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लीफी वेजिटेबल्स और जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो बैलेंस डाइट जरूर लेना चाहिए। बच्चे डेफिनेटली आजकल बाहर का फ्राइड फूड्स और पिज्ज़ा और इनमें खाते हैं, जो कि डेफिनेटली, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा मानेंगे नहीं आपकी बात की खाना बंद कर दो, तो बेसिकली है कि वो भी खाएं लेकिन जो हेल्दी डाइट है वो भी डेफिनेटली साथ साथ में लें। और दूसरा है कि जो पीक कैल्शियम है बॉडी का वो 30 साल तक बनता है, उसके बाद कैल्शियम डाउन होना शुरू हो जाता है, तो जो आपने एक्सरसाइज और व्यायाम और जो आपने कैल्शियम लिया है अप टू 30 ईयर्स तक, वही आपके पूरी जिंदगी के लिए काम आएगा, तो
1: वो पीरियड
2: भी वो आपका बैंक बन जाता
1: जी,
2: है
1: जी। तो 30 तक बहुत ध्यान रखना है और नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है और खान पान पे भी डॉक्टर साहब ने कहा विशेष ध्यान रखना है, पर डॉक्टर साहब ने खुद ही कहा कि बच्चे आजकल उनका खान पान उतना अच्छा नहीं है, तो क्या बच्चों को भी सप्लीमेंट्स देने चाहिए शुरू से ही?
2: आजकल हमें देने पड़ते हैं, बच्चे जैसे ग्रोथ होते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, लेते ही नहीं है कैल्शियम, और बॉडी पेन, बॉडी एक, बैक एक, जनरलाइज्ड बॉडी पेन के साथ आते हैं, तो हमें सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं उनको। पर आइडियली तो आइडियल अगर हम सोचें कि वो डाइट में लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, पर अगर नहीं ले रहे हैं तो सप्लीमेंट्स देने की जरूरत पड़ती है।
1: एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम एक प्यारा सा गीत भी सुनेंगे। हेलो,
4: नमस्कार
1: जी। नमस्कार
4: डॉक्टर सर को, नमस्कार।
2: नमस्कार
1: मेगा जी, बोल
4: रही से बात कर रही
1: जी। मेगा जी, हाँ प्रश्न कर लीजिए।
4: मेरे जो बुआजी है उनको ना, मतलब जो पैर का ऊपर होते हैं जहाँ से पैर स्टार्ट होती है वहाँ पे बैक में मतलब पेन होता है, कब होता है? या तो चिड़िया चढ़ती है तब, या फिर मान लीजिए चार पाई पे बैठे पैर ऊपर करने लगे तब, ये क्या कारण है और इसके लिए क्या करना चाहिए?
1: जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं,
2: पैर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं लोअर बैक है तो लोअर बैक इस उम्र में डेफिनेटली, उम्र ज्यादा है तो 2-3 चीजें हो सकती हैं, एक तो स्पॉन्डिलोसिस जो कॉमन है, दूसरी जो प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस होना, जो कि जिसके बारे में हम बोल चुके हैं, तो डेंसिटोमेट्री करानी चाहिए। फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर बहुत दर्द है तो एक्सरे जरूर कराना चाहिए कि रूल आउट करने के लिए कोई छोटा मोटा फ्रैक्चर ना हो, और दूसरा कि आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलोसिस किस तरह की है। ट्रीटमेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना, ठीक है
1: जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए मेघा जी, और अब यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे, आपके सभी प्रश्नों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लिखते रहिए, हमें फोन करते रहिए, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आज बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, बात कर रहे हैं आज ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। आज का हमारा विषय डीलिंग विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। डॉक्टर दीपक जोशी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल, हमारे साथ रेडियो डॉक्टर के रूप में। और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें हमें अभी बता दी हैं। कार्यक्रम में थोड़ा सा भाग अभी बाकी है। हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
2: मैं बीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी,
2: मेरा पूछना है कि मल्टीविटामिन का ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई सामंजस्य है? क्या कोई ऐसा विटामिन है जो आर्थराइटिस को प्रभावी है?
1: चलिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं।
3: ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एज सच कोई विटामिन्स नहीं है, कुछ मेडिसिन्स हैं कुछ तरह की जो दी जाती हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं ग्लूकोसामीन्स के, वो दिए जा सकते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम लेके चलें, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो एक्सरसाइज है, आप चाहे कोई भी दवाई ले लें, एक्सरसाइज के बिना नहीं होगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज करना और मसल्स को स्ट्रांग करना, ताकि मसल्स आपकी बॉडी का लोड लें, ना कि

0: जॉइंट्स ना कि कार्टिलेज, तो ये हमारा मेन एम रहता है। तो अगर आप स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो आमतौर पे हमने देखा है विद इन ए मंथ 50% रिलीफ आ जाता है एक्सरसाइज करने के बाद।
1: जी आप डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज के साथ आपने फिजियोथेरेपी का भी उपयोग बताया था उसमें, हाँ, तो फिजियोथेरेपी क्या रेगुलर करानी पड़ती है अगर किसी को आर्थराइटिस की समस्या हो रही है, या कुछ समय के बाद बंद भी हो सकती है?
0: नहीं, रेगुलर कराने की जरूरत नहीं है। फिजियोथेरेपी का जो होता है, फिजियोथेरेपी बेसिकली टेम्परेरी रिलीफ के लिए, जब दर्द बहुत ज्यादा है और घुटने के साइड में दर्द है, मसल में दर्द हो रहा है, तो हम वेरियस तरह की डिपेंडिंग अपॉन क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है एग्जामिन करके देखते हैं, तो हम उस तरह की फिजियोथेरेपी उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ समय के लिए। क्योंकि दर्द में अगर हम बोलेंगे कि जाओ दर्द ज्यादा है जाके एक्सरसाइज करो, तो पेशेंट करेगा ही नहीं एक्सरसाइज, क्योंकि दर्द में मुश्किल है। तो सबसे पहले है दवाइयां, दर्द की दवाइयां देना, सिकाई करना गर्म पानी से अगर मसल्स की हैं, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो वहां बर्फ की सिकाई एडवाइज करते हैं एक मीडियल साइड में, या जहां हमने देखा अंदर की तरफ कई बार बहुत पेन होता है पेशेंट्स को, तो हम लोग बर्फ की सिकाई करते हैं। और एक बार जब फिजियोथेरेपी वगैरह से दर्द खत्म हो जाए फिर हम एक्सरसाइज पर डाइव करते हैं। तो बेसिकली है कि दर्द कई बार, बहुत बार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, असहनीय होता है, तो बेसिकली तब हम शॉर्ट टाइम के लिए, मे बी हफ्ते दो हफ्ते के लिए फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं।

0: पॉइंट पे दर्द है, तो कई बार हम जैसे बोनी पॉइंट है कि वहां जहाँ पे है, तो कई बार हम लोग ठंडी सिखाई एडवाइस कर देते हैं, तो मोटा मोटा लेके चलें कि आप चोट लगे तो ठंडी, अगर अदरवाइज क्रॉनिक पेन है तो आपको गर्म सिखाई
1: जी
0: करनी
1: जी ये डिफरेंस भी समझना बहुत जरूरी था और बहुत सारे श्रोताओं के मन में ये सवाल होगा। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं? जी
2: मैम, गुड इवनिंग, मनीष आजाद बोल रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच।
1: हाँ मनीष जी,
2: एक सवाल पूछना था, मम्मी को उठा के हैं और डॉक्टर हितेश इनको देख रहे हैं। अब जैसे कभी कभी जब से मेरी सर्जरी हुई है मेरे को, उसके बाद मेरे को भी घुटने में दर्द शुरू हो चुका है, तो क्या ये जेनेटिक हो सकता है कि मतलब, और या मेरे को भी कोई टेस्ट कराना चाहिए, ऐसा कोई टेस्ट है जिससे मुझे पता लग जाए कि मेरे को है या नहीं है?
0: टेस्ट,
1: कोई टेस्ट हो सकता है सर?
0: क्लिनिकल एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है और एक्सरे कराना सबसे इम्पोर्टेंट है। एज सच कई पेशेंट मेरे पास आते हैं बोलने की मेरी मदर को भी था, मेरे जो ये जेनेटिक जो होती हैं ये जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लामेटरी जो ब्लड रिलेटेड आर्थराइटिस होती हैं, गाउटिया, ये जनरली कई बार जेनेटिक होती हैं, पर ऑस्ट्रो आर्थराइटिस प्योरली एज के साथ एसोसिएटेड है। और आपको जो दर्द हो रहा है तो बेसिकली अगर स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब आपको एक्सरसाइज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपका दर्द ठीक हो जाए और ये बिल्कुल आगे ना बढ़े उससे, और आपको नी रिप्लेसमेंट की नौबत ना आए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और डॉक्टर साहब हमारे पास मैसेजेस भी आए हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता धन्यवाद दे रहे हैं कि आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं समय निकालकर, और जो जानकारी और जो जवाब आप दे रहे हैं वो उन्हें पसंद आ रहे हैं। ऐसा ही एक मैसेज लिखा है देवदत्त पारसोलिया जी ने, और लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है, जानकारी बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। साथ ही साथ नमस्ते करके धन्यवाद दे रहे हैं हमारे श्रोता विद्यापति कुशवाहा जी कि कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आ रहा है, ऐसा उन्होंने लिखा है। डॉक्टर साहब एक ये प्रश्न लिखा है सुरेश जी ने, दिल्ली में रहते हैं और इन्होंने लिखा है इनकी उम्र 61 इयर्स है, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है और सूजन भी रहती है घुटने में, दवा खाने से थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है, तो ये किस तरह की समस्या है?
0: अगर बुखार के साथ सूजन आ रही है तब तो इन्फेक्शन होती है। जनरली जो सूजन देखने में आती है क्या होता है कि जब भी हड्डी रगड़ खाती है एक दूसरे के साथ तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं उसके जॉइंट में गिर जाते हैं, तो बॉडी रिएक्ट करती है, बॉडी हमेशा हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है, जो शरीर अपना हमेशा कोशिश करता है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसलिए वो, क्योंकि ग्रीस तो बना नहीं सकता तो इसलिए वो फ्लूइड बहुत सारा बना देता है ताकि हड्डी कम से कम रगड़ खाए, तो फ्लूइड बनने की वजह से कई बार मरीजों को काफी ड्रैगिंग सेंसेशन रहता है, दर्द बढ़ जाता है, घुटना मुड़ता नहीं है पूरा, तो ऐसी सिचुएशन बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखी गई है। और बहुत ज्यादा पानी भर गया तो कई बार हमें इंजेक्शन से पानी निकालना पड़ता है। ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि दवाइयों और एक्सरसाइज से धीरे धीरे धीरे धीरे पानी खत्म हो जाता है और दर्द भी कम हो जाता है।
1: जी हमारे एक और कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो
3: हेलो
1: जी, किशन लाल जी
3: नमस्कार। जी
1: जी नमस्कार,
3: मेरा नाम किशन लाल है, मैं वजीराबाद से बोल रहा हूँ।
1: जी आप क्वेश्चन,
3: मेरे को ना सर्वाइकल बताया था, मेरे को वैसे अस्थमा भी है, तो अब मेरे ना पैर चलने बंद हो गए हैं, थोड़ा सा चलता हूँ एकदम आप जाता हूँ। हेलो
1: जी, आपकी आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी आप क्या पूछना चाहते हैं?
0: थोड़ा सा चलते हाँ हो जाते हैं, आपको सांस की तकलीफ हो जाती है या दर्द बढ़ जाता है?
3: दर्द तो है नहीं जी, एक तो हाँफ जाता हूँ और दूसरा चल नहीं पाता, थोड़ी दूर भी चलते ही एकदम हाँफने लगता हूँ।
0: ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो कि आपको सांस फूल जाता है तो ये तो डेफिनेटली अस्थमा से रिलेटेड है, तो इसमें तो आपको चेस्ट के डॉक्टर,
3: मेरी उम्र है 75 साल।
0: तो बेसिकली अस्थमा है तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और नेबुलाइजेशन बार बार करना पड़ेगा, छोटा सा अगर हाँफना प्रॉब्लम है, जो अगर स्पॉन्डिलाइटिस या बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस में चलने से दर्द बढ़ जाता है, पैर सुन भी हो सकते हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपका हाँफना बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपका अस्थमा कंट्रोल नहीं है।
3: झनकार से निकलती है पैरों में?
0: हाँ, तो ये झनकार से जो निकलती है, ये जो आप बता रहे हो चलने से अगर सुन हो जाते हैं पैर, दर्द हो जाती है या करंट सा आना शुरू हो जाता है और आपको बैठना पड़ता है, तो ये होती है प्रॉब्लम लंबर कनाल स्टेनोसिस में, जो बेसिकली रीढ़ की हड्डी नैरो हो जाती है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड या नसों पे प्रेशर पड़ता है। इसमें अगेन कुछ दवाइयां देनी पड़ती हैं, लेकिन क्योंकि अस्थमा है बहुत ज्यादा दवाइयां भी नहीं दे पाएंगे हम, है ना, तो बेसिकली फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करनी चाहिए और बेसिकली एमआरआई कराना पड़ेगा आपको स्पाइन का देखने के लिए कि कितना कैनाल डायमीटर है। मोटा मोटा जो है फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करनी है।
3: आपके यहाँ आ सकती हूँ?
0: हाँ आप दिखा सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और

0: ये हमें प्रश्न मैसेज के माध्यम से लिखकर भेजा है। लिखने वाले हैं सुनीता जैन, उन्होंने लिखा है, डॉक्टर साहब आपको नमस्कार, क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस रिवर्सिबल है अगर फोर्थ स्टेज में है? वैसे आप बता चुके हैं लेकिन फिर भी इनका प्रश्न आया है तो प्लीज जवाब दे दें। वैसे ये कह रही है कि मैं अब रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रही हूँ एंड वेट पे कंट्रोल भी किया है, तो क्या सर्जरी को डिले किया जा सकता है अगर इस तरह का रूटीन फॉलो करते रहे तो?
1: बिल्कुल, डेफिनेटली, चाहे स्टेज 4 हो स्टेज 3 हो, एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर एक्सरसाइज में और वेट कम करने से डेफिनेटली आपका दर्द कम हो रहा है, तो हो सकता है आपको कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े और ये प्रोसेस रुक जाएगा और डिले हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिवर्सिबल नहीं है, बाल जो सफ़ेद हो गए वो काले कभी नहीं होंगे, जो कार्टिलेज घिस गई है, जो गिरारी मशीन की घिस गई है, वो कभी वापस नहीं होती, या तो वो नहीं डालनी पड़ेगी ट्रांसप्लांट के हिसाब से, TKR नी रिप्लेसमेंट के तरह, या फिर आपको उसके आसपास की जो मांसपेशियां उनको स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिससे लोड मांसपेशियां लें और कार्टिलेज पे कम से कम प्रेशर जाए। ठीक है, यही मेन हमारा मकसद होता है वेट कम करने का, ताकि फोर्स अक्रॉस द ज्वाइंट, जो वजन है ज्वाइंट के थ्रू जा रहा है, वो कम से कम जाए और मांसपेशियां ज्यादा से ज्यादा उसको अब्जॉर्व करें।
0: जी, तो अगर इस स्टेज पे भी वो एक्सरसाइज करते हैं और इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो जैसा आपने कहा उस स्टेज पर रुक जाएगा, है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: बिल्कुल,
0: और
1: हाँ
0: अगर उससे आगे नहीं बढ़ता है तो फिर क्या दवाइयां भी साथ में चलती
1: हाँ
0: हैं?
1: मतलब स्टेज 4 में हम जनरली कुछ दवाइयाँ भी देते हैं और एक्सरसाइज भी कराते हैं। मोस्टली पेशेंट काफ़ी 50-60% ठीक हो जाते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो कि रिप्लेसमेंट तक जिनको जाना पड़ता है। तो ऐसा एक्सरे जो स्टेजेस हैं, ये एक्सरे के बेसिस के ऊपर होती हैं। हमेशा एक्सरे को देख के कभी इलाज नहीं किया जाता, मरीज को देख के इलाज किया जाता है। अगर आपको दर्द नहीं है ज़्यादा, आप रोज़मर्रा के काम कर सकते हो, तो चाहे एक्सरे में स्टेज 4 दिखा रहा है, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। और रणधीर गुप्ता जी हमें लिख रहे हैं ओखला संगम विहार से कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं और इस कार्यक्रम से हम बहुत कुछ जानते हैं, सीखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से जुड़े रहिए। अनीता तेजवानी जी लिख रही है उज्जैन MP से कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्य घुटनों का दर्द ही होता है या उंगली और टखने में भी होता है या किसी और जोड़ में भी हो सकता है?
1: किसी भी जोड़ में हो सकता है, ये उंगलियों में पहले जनरली, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तानी पॉपुलेशन में है, जो हम क्रॉस लेग जमीन पे बैठते हैं, स्क्वाट करते हैं, और जो हमें हमेशा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा देखा गया है। बाकी ये हिप में भी बहुत कॉमन है, कूल्हे में भी होता है, एंकल में भी हो सकता है, और जब स्टेज बढ़ जाती है तो हाथों की उंगलियां भी सूज सकती हैं, उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो कोई भी बॉडी अगर हम लेके चले, स्पॉन्डिलोसिस लेके चले, स्पॉन्डिलाइटिस, वो भी एक ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरह का ही पार्ट है, उसमें भी कुछ ज्वाइंट्स है जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो इन्वॉल्व सारी बॉडी को कर सकता है ये, लेकिन कॉमनेस्ट जो हमने देखा है वो घुटने को करता है ये।
0: जी। और देखिए डॉक्टर साहब, आपके जो बोलने का अंदाज है वो हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आ रहा है। ये हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखकर भेजा है, डॉक्टर साहब मैं आपका दीवाना हो गया हूँ और आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो चलिए, अच्छा लग रहा है कि हमारे जो आज के गेस्ट हैं जो कि डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में, बहुत मुश्किल से समय निकाल पाते हैं सर आप कार्यक्रम के लिए, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे श्रोता भी दे रहे हैं,
1: हाँ,
0: तो
1: बहुत
0: आप
1: बहुत
0: आते
1: थैंक
0: रहिए
1: यू।
0: इस कार्यक्रम में, भाग लेते रहिए, क्योंकि आप जैसा जो समझाते हैं वो हमारे लिसनर्स को समझ में आता है। और देखिए, थैंक यू लिखकर हमारे दूसरे भी श्रोता लिखकर भेज रहे हैं, सुनीता जैन जी ने भी थैंक यू लिखकर भेजा है कि आपने उनकी बात जो उनके बारे में बताया, उनके जो डिले करा जा सकता है ये, तो उनको भी बात समझ में आ गई है। और देखिए, ये हम एक और प्रश्न आया है और ये लिखा है दिनेश शर्मा जी ने शिमला झुंझुनू राजस्थान से, उन्होंने लिखा है कि मेरी उम्र 70 वर्ष है, पिछले 12 वर्ष से BP की दवा ले रहा हूँ, वैसे मैं स्वस्थ हूँ, पैदल बहुत चलता हूँ, कहीं कोई दर्द नहीं है, मैं प्रिकॉशन के लिए कैल्शियम भी प्रतिदिन लेता हूँ, विटामिन D की भी गोली प्रतिमाह लेता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, कृपया बताएं कि क्या मैं सही राह पर हूँ?
1: आप बिल्कुल सही राह पर हैं और आप बिल्कुल सही रहेंगे, आप बिल्कुल फिट हैं और आगे भी हमेशा फिट रहेंगे।
0: जी, बहुत अच्छी बात कि आप इसी तरह से इसी राह पर चलते रहिए, और हमारे जितने सुनने वाले हैं, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये सही राह पे चल रहे हैं, तो इसी राह को आप सब भी पकड़ लीजिए और इसी तरह से फिर हम सब फिट रहेंगे। और यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और लौट कर आएंगे और फिर हम डॉक्टर साहब से ये जरूर जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं हो ये तो सभी चाहते हैं, तो क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं, क्या खान पान और लाइफस्टाइल अपनाया जा सकता है जिससे कि हो ही ना? तो चलिए इस गीत को सुनते हैं और वापस आते हैं रेडियो डॉक्टर में।

0: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और रेडियो डॉक्टर के आखिरी चरण पर हम आ गए हैं और अब हम चाहेंगे कि कुछ बचे हुए प्रश्न जो हैं वो डॉक्टर साहब जरूर लें, पर साथ ही साथ हम प्रिकॉशंस पर जरूर बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये कुछ मैसेजेस हमारे पास अभी भी हैं, वो मैसेजेस मैं एक एक करके लेना चाहूंगी। हमें लिखा है नेहा जी ने जबलपुर जयपुर से कि इनकी मदर की उम्र 69 इयर्स है और उनको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट एडवाइस किया गया है पर वो विलिंग नहीं है, जैसे एक प्रश्न पहले भी आया था। कोई अल्टरनेट ट्रीटमेंट हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, और ये जानना चाहेंगे कि अगर नी रिप्लेसमेंट कराते हैं तो उसकी प्रोसीजर क्या होता है।
1: अगर मरीज कराने जाता नी रिप्लेसमेंट तो उसको नहीं कराना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए। रिजल्ट तभी अच्छे होंगे अगर मरीज अपने मन से कराए, क्योंकि उसके बाद एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तभी वो घुटना भी तभी चलेगा जब एक्सरसाइज आप करेंगे, ठीक है। मांसपेशियां इंपॉर्टेंट
0: है, कराने के बाद
1: एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो एक्सरसाइज करा सकते हैं बेसिकली, अगर नहीं चाहती हैं तो कुछ दवाइयां स्पेसिफिक होती हैं वो डॉक्टर बताएंगे आपके, वो लेना है। सप्लीमेंट्स में लीफी वेजिटेबल्स ये सब चीजें लेनी पड़ती हैं, ग्लूकोसामिन रिच फूड या ग्लूकोसामिन सप्लीमेंट्स में लेने पड़ते हैं, और क्वाड बेसिकली आप मसल्स के जो आसपास की मसल्स हैं उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। थोड़े टाइम तक अगर दर्द ज्यादा है तो नी कैप भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए, तो ये आप कर सकते हैं। जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में बेसिकली है कि अब जिस तरह मशीन की गरारी है स्मूथ थी, जो

0: खुरदरी हो गई है उसको बदल के आपको फिर से स्मूथ करना है, तो हम कार्टिलेज बना तो नहीं सकते, नहीं तो बेसिकली तो हम एक मेटल का इम्प्लांट डालते हैं जो कि बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही इनर्ट होता है, जिसको बॉडी रिएक्ट नहीं करती और बॉडी अपने अंदर समा लेती है। तो इस तरह के इम्प्लांट हम घुटने में मेटल के इम्प्लांट, टाइटेनियम और अदर मेटल्स के इम्प्लांट डालते हैं, जिससे वो दर्द नहीं करता, आपस में रगड़ नहीं खाता और दर्द नहीं होता।
1: जी। और एक ऐसा प्रश्न और आया है, निसार अहमद जी हमें जानना चाह रहे हैं मेरठ से कि इनकी उम्र 72 इयर्स है और उनको इनको कूल्हे में दर्द की समस्या ज्यादा है, और ये लिख रहे हैं कि जब मैं स्टूल पर बैठकर काम करता हूँ, मेरा काम उसी तरह का है, तो 2 घंटे से ज्यादा समय होता है तो मुझे दर्द होने लगता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता
0: हाँ,
1: है।
0: बिल्कुल हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, कूल्हे का भी हो सकता है, इनको एवियन भी हो सकता है, वैस्कुलर नेक्रोसिस भी हो सकता है कूल्हे का, अगर बैठने का काम करते हैं तो। इनको सबसे पहले तो एक्सरे कराना चाहिए, एक्सरे में बिल्कुल डायग्नोसिस क्लियर कट बन जाएगा कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है या फिर एवियन है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंगली इसका इलाज किया जाएगा। अगर आर्थराइटिस है तो आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है, कूल्हे की अलग तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, वो आप सीखेंगे तो डेफिनेटली इसमें लाभ मिलेगा।
1: जी। और डॉक्टर साहब, आप समय इतना ही है कि जो मैंने प्रॉमिस किया था, आप जरूर थोड़ा सा एक बार चलने से पहले बता दें कैसे बचें, प्रिकॉशंस क्या जरूरी हैं, और लाइफस्टाइल पे कुछ बताएं।
0: लाइफस्टाइल में ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रिवेंशन के लिए हमें लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत तो बॉडी को ट्यून अप करना पड़ेगा, मसल्स को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, तो बच्चों से लेके जब आपकी यूथ है उसी में आप एक्सरसाइज जरूर करें, हिप की, नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग जरूर अपनी बॉडी को अराउंड, मे बी रोज नहीं तो एटलीस्ट 3 या 4 दिन एक हफ्ते में आप 15-20 मिनट अपनी बॉडी पे लगाएं। खान पान का ध्यान रखें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ग्लूकोसामीन्स होते हैं एडिक्वेट अमाउंट में, अगर पूरी उम्र खाएंगे इनको तो कभी बुढ़ापे में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बार बार बीच बीच में कैल्शियम और वाइटामिन डी भी साल भर में 3-4 महीने के लिए लेना चाहिए, तो डाइट, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है।
1: जी, तो आपने बता दिया है डाइट, लाइफस्टाइल, हेल्दी एंड बैलेंस्ड फूड, ये मूल मंत्र है। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचना चाहते हैं या और भी किसी बीमारी से आप बचना चाहते हैं तो यही मूल मंत्र है। आज हमने बात की डीलिंग विद ऑस्टियोआर्थराइटिस, हमारे साथ रहे डॉक्टर दीपक जोशी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद यहां आने के लिए, समय निकालने के लिए और इतनी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
1: स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन कल शुरू हुआ। श्री मोदी एवियां जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जनेवा में उतरे। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पालमलिन ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हार्दिक अभिवादन किया और परस्पर साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संक्षिप्त बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जनेवा से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित एवियां के लिए रवाना हुए। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन में भारत की निरंतर उपस्थिति प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से निपटने और शांति, सुरक्षा, सतत विकास तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देने में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। ये सम्मेलन भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक मंच पर विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज तथा चिंताओं को बुलंद कर सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पोस्ट किए गए संदेशों में बदलाव करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची K में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जन भागीदारी में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का मुकाबला उरुग्वे से होगा। उधर पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और महाराष्ट्र में बिजली चमकने तथा तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक। इस प्यारे से मौसम में हमारा रेनबो परिवार कैसा है दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप सभी अपने पूरे परिवार के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ। प्रोग्राम अल्फा जन लेकर मैं आ गई हूँ कंचन, नमस्ते। और उम्मीद करते हैं सब आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। और आज अल्फा जन में बात होती है करियर की, तो कौन से करियर की बात होगी? थोड़ा सा इंतज़ार तो करना बनता है।

जी बिल्कुल, प्रकृति भी सज चुकी है, रंग चुकी है, क्योंकि 2 दिनों से हो रही है दिल्ली में झमाझम वाली बारिश। और इस प्यारे से मौसम में हमारा आपका साथ है एफएम रेनबो पर, दिल से दिल तक प्रोग्राम है अल्फा जन। तो सो रंग बिरंगे सुंदर और प्यारे प्यारे अलग अलग प्रिंट्स में, डिजाइन में जो कपड़े हैं वो आपको भी लुभाते होंगे। और मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इन कपड़ों पर डिजाइन कौन बनाता है। तो वस्त्र और परिधान उद्योग जो है वो 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला एक बहुत विस्तृत फील्ड है। और इस फील्ड में डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल और रिटेल मैनेजमेंट में भरपूर अवसर हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में आज बात करेंगे प्रोग्राम में अल्फा जेन में, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सुनते रहिए एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है। कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
7: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
6: क्या ये जांच उपलब्ध है?
8: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
9: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
8: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
9: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
10: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है। कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन। मैं आपके साथ कंचन, और आज अल्फाजन में बात होती है करियर की। तो आज बात हो रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप किस तरह से करियर बना सकते हैं। दोस्तों, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात होती है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ सिलाई तक सीमित नहीं है। ये उद्योग जो है काफ़ी विस्तृत है, और इसमें कपड़ों की डिज़ाइनिंग, फैब्रिक से लेकर तैयार परिधान के बाज़ार में पहुंचने तक की बिक्री और पूरे प्रोसेस को समेटता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसमें डिज़ाइनिंग में जो है क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार में है बहुत ज़बरदस्त प्रतियोगिता। तो डिज़ाइनिंग है, उत्पादन है यानी प्रोडक्शन है, मर्चेंडाइजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, साथ ही टेक्निकल फील्ड है, साथ ही रिटेल और कॉमर्स फील्ड में भी आप इस तरफ जा सकते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता ना कि कैसे शुरुआत की जाए। टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल चेकर बनना चाहते हैं, मर्चेंडाइजर बनना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे की जाए। तो थोड़ी देर में बताएंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे आप अपना कदम रख सकते हैं।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है अल्फजन, और आज हम बात कर रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप कैसे कदम रख सकते हैं। तो अगर आपने 12वीं कर लिया है, 12th कर लिया है, तो बी डिज़ाइन कर सकते हैं, बीएससी टेक्सटाइल या उससे संबंधित कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज हैं। आईआईटी में भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, साथ ही निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में जाकर डिग्री ले सकते हैं। एनआईडी में भी डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज उपलब्ध हैं, तो वो कोर्सेज कर सकते हैं और फिर आप कदम रख सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जो एपरल ट्रेनिंग और डिज़ाइन है ना, वो एक बहुत ही विस्तृत है, और आजकल इसमें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग का बहुत ही बोलबाला है, तो लोगों को ज़रूरत होती है बहुत ही महारत हासिल करने की इस फील्ड में। वैसे डिज़ाइनिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें हर रोज़ आपको अपनी क्रिएटिविटी को साबित करना ही पड़ता है। प्रोग्राम चल रहा है अल्फजन, मैं आपके साथ कंचन, सुनते रहिए एफएम रेनबो, दिल से दिल तक बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही मीठे मीठे गीत।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: सडनली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

जी, अगर हम आपसे पूछे कि हम सबसे अधिक प्यार मोहब्बत किससे करते हैं, तो ज़रूर आप कहेंगे कि करियर से करते हैं। और आज बात हो रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप किस तरह से करियर बना सकते हैं। तो आप अपने शौक को करियर में बदल सकते हैं। अगर आपकी रुचि पेंटिंग में है या अलग अलग आर्ट फॉर्म में है, आप बनाते हैं पेंटिंग्स या फिर उनकी समझ रखते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना, आपके लिए एक आपको विस्तार देती है। आप अपनी करियर की उड़ान भर सकते हैं, बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और आजकल जो है निफ्ट में एग्जाम्स होते हैं, बहुत उनका जो लेवल होता है ना, काफ़ी ऊंचे स्तर का होता है, तो बहुत अच्छी तैयारी चाहिए। साथ ही NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग अहमदाबाद में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बहुत ही अच्छी तैयारी करनी होगी। साथ ही अगर आप आईआईटीज़ में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, जिसके लिए आपको JEE एडवांस जो है वो क्लियर करना होगा, तभी आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में आप BTech कर पाएंगे। और वैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं जिसकी तरफ आपका अगर रुझान हो तो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं। बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ से आप BTech कर सकते हैं। साथ ही इग्नू भी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में भी टेक्सटाइल से जुड़े कुछ कोर्सेज हैं, आप वो कोर्स कर सकते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रवेश पा सकते हैं। अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइनिंग सेंटर देश भर में सिलाई मशीन ऑपरेटर, फैशन डिज़ाइन असिस्टेंट, पैटर्न मेकर और मर्चेंडाइजिंग जैसे जॉब रोल्स जो है वो आधारित कोर्सेज जो है वो कराते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत गारमेंट निर्माण, एम्ब्रॉयडरी, हैंडलूम और टेक्सटाइल से जुड़े शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कराए जाते हैं, जो कि बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में कराए जाते हैं। तो आप नज़दीकी सेंटर की जानकारी के लिए skillindia.gov.in या nsdc.india.org पर जानकारी ले सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप किस कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, ताकि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपने कदम बढ़ा सकें। प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन, मैं आपके साथ कंचन, सुनते रहिए FM रेनबो, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जेन, और इस प्रोग्राम के ठीक बाद यानी 5:05 पर हमारी मित्र शैली भाषांजलि के साथ आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स, और वो बताएंगे कि शहर में क्या हलचल है, क्या कुछ है, मौसम कैसा है, ट्रैफिक कैसा है, इन सभी चीज़ों की वो जानकारी देंगी प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। मैं कंचन यहीं पर लेती हूँ विदा, जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ। दिल से दिल तक अपना ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए और अपने बच्चों का साथ बनाए रखिए। दीजिए विदा मुझे, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के इवियन शहर पहुंच गए हैं। इवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले श्री मोदी इवियन जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे,

0: हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन ने उनका स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की यह लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना विषय पर एक उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। दोनों नेता पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची K में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंकों के ऋणों की कथित धोखाधड़ी पूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह तलाशी अभियान कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े धन शोधन मामले में सबूत जुटाने के लिए चलाया जा रहा है। जांच संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सर्कुलर लेन देन, नीलाम की गई संपत्तियों का कम मूल्यांकन, बढ़ा चढ़ाकर या धोखाधड़ी से किए गए दावे और कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में लेनदारों के मतदान अधिकारियों और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों के संबंध में है। हिमाचल प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना के लिए जमीनी अभियान आज से प्रारंभ हो गया। राज्य में जनगणना कर्मियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य अगले महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि केरल और नागालैंड में स्वगणना सुविधा प्रारंभ हो चुकी है और ये इस महीने की 30 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। इस बीच महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गृह सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गुड इवनिंग, आप सुन रहे सैटेलाइट्स। इंफॉर्मेशन अपडेट्स को लेकर हम आते हैं शो सैटेलाइट्स में, पर सिटी का मिजाज भी टटोलते हैं। लोगों की जिंदगी से मांग, उनकी तलाश, कोई ख्वाबों का घर ढूंढता है तो कोई घर में अपना ख्वाब, कभी रिश्तों की कभी अकेलेपन की छांव ढूंढता है। कोई वक्त से कहता है कि आहिस्ता चल जिंदगी, अभी तो कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ कुछ फर्ज है वो भी निभाना बाकी है, आहिस्ता चल। लेकिन चलते रहो, शायद जिस चीज की तलाश है वो भी तुम्हें तलाश रही हो। आप सुन रहे सैटेलाइट्स।

And you stay tuned to Akashwani Rainbow. Ye show hai City Lights. Aur City Lights mein kabhi kabhi important baat aisi hoti hai jo jeevan se judi hoti hai. Aapki zindagi ya hamari zindagi sabki badi vyast bhag daud bhari zindagi hai jisme hum aksar aage ki taraf jhukte hain. Kabhi computer pe, kabhi mobile pe, kabhi kaam ke bojh mein, kabhi chinta ke karan. Just visualize it, think it or observe your own self. तो कभी आपने सोचा है कि शरीर को कभी पीछे की ओर झुकने का भी अवसर मिलना चाहिए, है ना? योग एक ऐसा कौशल है जिसे वो संभव कर सकता है ये सब कुछ. इसलिए आज थोड़ी सी बात अर्ध चक्रासन की, आधा चक्र हाफ व्हील पोज. अब कहते हैं या लोग अनुभव करते हैं कि ये जो आसन है सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं देता बट आत्मविश्वास को और एक खुलेपन का एहसास कराता है. अब कहते हैं ना कि झुकना ही जीवन नहीं है, तनकर खड़ा होना भी जरूरी है. आगे बढ़ना विकास हमेशा नहीं होता है, कभी पीछे मुड़कर देख करके उसे सीख कर आगे बढ़ना वहाँ जरूरी होता है, भीतर झांकना जरूरी होता है. अर्ध चक्रासन हमें सिखाता है कि यही वो संतुलन है जहाँ शरीर मन सांस एक लाइन में बहने लगे. मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि विश्व योग दिवस आने वाला है. तो आकाशवाणी पर हम ऐसी बातें करते हैं या दिलाते हैं कि आपकी आपका जिंदगी बेहतर हो सके. सांझ के शो सिटी लाइट्स में आपके साथ मैं शैली भाषांजलि और आपसे प्रार्थना

आप सुन रहे हैं सांझ का शो सैटेलाइट्स। मेरा नाम है शैली भाषांजलि और थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगी एक उस विषय की ओर जो शायद जहन में नहीं आता है। बहुत बिजी जिंदगी है ना, थोड़ी सी इधर उधर भागती जिंदगी में याद दिला देती हूँ कि सिर्फ हम ही नहीं, न जाने कितने जीव जंतु इस पृथ्वी की व्यवस्था को कायम रखने में बहुत सहायक होते हैं। अब सी टर्टल, समुद्री कछुआ भी उन जीवों में से एक जीव है। समुद्र तट पर आप जाते होंगे जरूर आनंद में अपने, लेकिन वहां तक सोच शायद नहीं जाती। आज वर्ल्ड सी टर्टल डे है, विश्व भर में इस जीव के प्रति जागरूकता का एक सजग प्रयास। अब बहुत हैरानी की बात है, इनके बारे में जानना चाह रही थी तो एक जो समुद्री कछुआ होता है ना, वर्षों बाद भी उसी समुद्र तट पे लौट आता है जहां उसका जन्म हुआ था। पता नहीं क्या खींच, क्या जुड़ाव प्रकृति ने ऐसा बनाया कि वो जैसे वो वापस आता है। लेकिन आज इन इन जो पृथ्वी के ये अद्भुत यात्री हैं, जीव हैं, उनका सफर आसान नहीं है क्योंकि समुद्र में तैरता है प्लास्टिक, प्रदूषण है, इसलिए इनके अस्तित्व के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है। कभी कभी एक प्लास्टिक बैग इन्हें जेलीफिश जैसा दिखाई देता है, भोजन समझकर निगल लेते हैं, इनकी जान जा सकती है। इसलिए विश्व समुद्री कछुआ दिवस केवल एक दिन नहीं, एक याद दिलाने वाला संदेश है। इसलिए मैं सांझ के शो सैटेलाइट्स में ये दोहरा रही हूँ कि हमारी जो आदतें हैं ना, छोटी छोटी, किसी भी जीव का, इस पृथ्वी के जीव का भविष्य बदल सकती है। एक प्लास्टिक कम, प्रकृति के प्रति थोड़ा और संवेदनशील।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। 5:29 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। ड्राइव एब्सोल्युटली केयरफुली, बी माइंडफुल और सोचिएगा कि छोटी छोटी दूरी के लिए कभी कभार अपने वाहन का प्रयोग छोड़ सकते हैं कि नहीं, सार्वजनिक जो परिवहन है उसको प्राथमिकता दे सकते हैं कि नहीं। जस्ट अ थॉट, मल ओवर इट। हम आते हैं फिर सांझ के शो सिटी लाइट्स में।

आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स और सिटी शहर के किसी भी शहर के इतिहास को, उसकी पहले जो घटित बातें हुई हैं या जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उसको जानने के लिए जो एक पहल हुई है, हो रही है हमारे शहर में, दैट इज नाइस, वो सराहनीय है। मैं बात कर रही हूँ फोर्थ स्टैंडर्ड से सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक खास बुकलेट लाने जा रहे हैं लोग और जो अथॉरिटीज हैं, और इस बुकलेट में दिल्ली के 23 ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी होगी, और जब बच्चे इन स्मारकों की सैर करेंगे तो वहां से एक उनको खास स्टैम्प भी मिलेगा। जैसे जैसे वो सफर करेंगे, कवर करते जाएंगे ये सब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, वैसे वैसे ये जो बुकलेट है ना, लाइक अ पासपोर्ट भरता जाएगा। और मजेदार बात यह है कि जो 23 स्मारक है उसके स्टैम्प जब जुड़ जाएंगे, उनका पासपोर्ट एकदम भरा भरा लगेगा, तो पर्यटन विभाग की ओर से सम्मान और आकर्षक पुरस्कार भी मिल सकते हैं। ये कहा गया है, इस पे तैयारी हो रही है, सोचा आपको ये बता देती हूँ। एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 टिल क्लास 6 शुड बी इंटरेस्टेड एंड शुड नो अबाउट द सिटीज हिस्ट्री। और इतिहास को किताबों से निकालकर अनुभव में जो ये बदल रहे हैं, इसका कुछ महीनों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। और तो तैयार हो जाइए, मतलब मैं स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही हूँ राइट नाउ कि दिल्ली की विरासत को करीब से जानने के लिए एक, जिसको कहते हैं ना, रोमांचक हेरिटेज ट्रेल, उसका हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। देयर आर थिंग्स बीइंग डन, प्लान हैज बीन फॉर्मुलेटेड,

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आजकल ना हम लोग में से कई, आजकल क्या, काफी टाइम से बहुत लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन, ऑफ द शेल्फ दवाई ले लेते हैं। हल्की सी खांसी हुई, गला बैठ गया, बुखार जैसा लगा नहीं कि पुरानी जो दवा की शीशी है वो निकाल ली या मेडिकल स्टोर से दवा खरीद ली। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन की जो आदत है ना, नुकसान पहुंचा सकती है, ये समझ लीजिए। इसीलिए एक कदम उठाया गया है बहुत इम्पॉर्टेंट। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाया है कि अब जो कफ सिरप है उसके समेत सिरप वाली कई दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। यानी दवाओं को खरीदने के लिए यू एक्चुअली नीड अ प्रॉपर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि कहा भी जाता है कि हर खांसी एक जैसी नहीं होती, हर मरीज के लिए दवा एक जैसी नहीं होती, कोई ब्लैंकेट ट्रीटमेंट तो होता नहीं है। इसलिए जो दवा आपके लिए असरदार है वो शायद दूसरों के लिए सही नहीं हो। इसीलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट, शॉर्टकट मत लीजिए, सलाह ले लीजिएगा डॉक्टर की। सेहत कहते हैं कोई प्रयोगशाला तो है नहीं जहां हर नुस्खा आजमा लीजिएगा। सेहत का जरा ख्याल रखिए, जागरूक रहिए, एंड यस, डॉक्टर की सलाह को अपना पहला इलाज बनाइएगा। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, सिटी लाइट्स में आपके साथ हूँ।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। समय बता देती हूँ 5:48 और 10 सेकंड हो चुके हैं। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट बात सैटरडे से शुरू हो रही है, दैट इज टुमारो इज अ सैटरडे, और हर थाना जो है ना जन सुनवाई करना शुरू करेगा, जहां लोग अपने सीधे अपनी शिकायत कर सकते हैं, सुझाव रख सकते हैं। कई बार ना शिकायत सिर्फ अपराध की नहीं होती है, बल्कि ये भी होती है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है। जब सुनवाई की उम्मीद ना हो ना, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए दिल्ली पुलिस, जनता और पुलिस के बीच की जो हो सकता है कोई अगर गैप हो, दूरी हो, इस दिशा में ये नई पहल है, जहां पर जन सुनवाई होगी हर दिल्ली के हर थाने में। हर सैटरडे को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। यहां पर आप अपनी शिकायतें हो या सुझाव हो या सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, सीधे अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। खास बात यह भी है कि जो वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, वो भी समय समय पर इस जन सुनवाई कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ऐसे ये खाका तैयार किया गया है जनता के लिए, ताकि समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके। कहा जाता है कि मजबूत जो समाज होता है ना, उसकी पहचान कानूनों के अलावा इस बात से होती है कि आम नागरिक की आवाज कितनी आसानी से सुनी जाती है और इम्प्लीमेंट होती है। और जब दरवाजे खुले हों, संवाद जिंदा हो, तो समाधान की पहली सीढ़ी मिली जाती है।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मेरा नाम है शैली भाषांजलि। सांझ के शो सिटीलाइट्स में आज बस इतना ही। कहते हैं कुछ ख्वाब होते हैं पूरे होकर बहुत खुशी देते हैं, लेकिन कुछ अधूरे रह के बहुत सीख दे देते हैं। जिंदगी दोनों का नाम है, बस मुस्कुराइए, चलते रहिए और आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये सातवीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से

प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIEF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बिल्कुल, ये है आकाशवाणी और रेनबो पर अब है मैसेज मसाला मिक्स, और मैसेज मसाला मिक्स में आपके मैसेजेस पढ़ने के लिए यहाँ तैयार हूँ मैं। और आपको मैसेजेस कहाँ करने हैं ये आपको मालूम है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, 9868107070 वो नंबर है जहाँ आपको मैसेजेस करने हैं। और बिल्कुल, मैं भी ड्राइव कर आई हूँ और मुझे लग रहा है कि अब आप भी ड्राइव कर रहे होंगे। तो जो मैसेजेस हैं वो आज का टॉपिक यही है कि जब ट्रैफिक हो और ड्राइव कर रहे हों, और रेड लाइट बहुत लंबी हो और ड्राइव कर रहे हों, तो फिर आपको किस बात का ध्यान

ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ और ये भी मैं जानना चाहूँगी कि जो दुपहिया वाहन है वो अगर आपके सामने हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, तो आप उनका ध्यान कैसे रखते हैं? ये है आकाशवाणी रेनबो और आपके साथ फिलहाल मैं हूँ रमा यादव।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मैसेज मसाला मिक्स है ये, और थोड़ी देर में चांद भी निकल आएगा क्योंकि जो पखवाड़ा है शुक्ल पक्ष का, उसका आज पहला दिन है और मैसेज आने शुरू हो गए हैं। ये लिख रहे हैं कि सिस्टर रमा जी नमस्ते, शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से लिख रहे हैं। साथ ही लिखते हैं कि रफ्तार अपने वाहन से कहीं जा रहे हैं जाएं, लेकिन सड़क को रेस का मैदान कभी ना बनाएं, क्योंकि रफ्तार से होड़ बन सकती है पल भर में मौत भी। प्रेमचंद प्रेमी जैतपुरा धामपुर से। और फिर एक चीज़ और लिखते हैं, ये सड़क मिलना भी जिंदगी का आसान नहीं, वाकिफ है हर शख्स अनजान नहीं, पाना है अगर मंजिल तो आहिस्ता चलो दोस्त, ये सड़क है ये रेस का मैदान नहीं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। अब ये मैसेज आया हीरामणि वर्मा द तेरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। वो लिखते हैं कि सबसे पहले ट्रैफिक रूल्स व ज़ेब्रा क्रॉसिंग मैंने देखा है, किसी की ड्राइविंग के लिए मैंने मदद ली, उनको मैंने कहा कि मेरी ड्राइव में थोड़ी हेल्प कीजिए, और मैं देखती हूँ कि कैसे ड्राइव कर रहे हैं वो एकदम सटासट। उनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग का भी कोई ध्यान नहीं था, तो मुझे कितनी बार उनको कहना पड़ा कि थोड़ा आहिस्ता थोड़ा धीरे, कहते कहते मैं थक गई, लेकिन उनकी जो रफ्तार है वो धीमी नहीं हुई। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का तो खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, ये हीरामणि वर्मा कह रहे हैं, और क्योंकि वहाँ पर मंडी हाउस की एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, देखिए वहाँ पे एक सबसे, मुझे दिल्ली की जो सबसे अच्छी ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगती है वो वही लगती है, वहाँ पर ट्रैफिक भी कंट्रोल होता है और साथ में जो चल रहे हैं वो लोग भी बड़ी स्मूदली रोड क्रॉस करते हैं। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो मैसेज मसाला मिक्स। पहले ही गीत बहुत शानदार, तेरे हाथ में मेरा हाथ। वो आज के टॉपिक पर हमारी यही कहना है कि जब हम ट्रैफिक में हों और आसपास दुपहिया वाहन हों, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि हमारी गाड़ी उनसे कहीं भी टच ना हो, और अपनी स्पीड को नियंत्रित रखना चाहिए। नाइस प्रेजेंटेशन किशन वंजनी नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से इसको लिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक। सौरभ अनेजा गाजियाबाद से लिख रहे हैं, और ये मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हरदर्शना विहार से लिख रहे हैं, मैं ट्रैफिक में धैर्य शिष्टता बनाए रखता हूँ, दोपहिया वाहन चालकों को पर्याप्त जगह देता हूँ। मैसेज मसाला मिक्स है ये, मैसेज मसाला मिक्स में आपके साथ जो हूँ मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ रमा, और 9868107070 पर आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रही हूँ। और मैसेज तो वही है कि अगर ट्रैफिक है, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम ध्यान नहीं रखेंगे, ध्यान भट

दिन डूबता है और दिन फिर से निकलता है, फिर से डूबता है, रात आती है और दिन फिर से निकलता है, ये जो चक्र है चलता रहता है। लेकिन ये वाला जो गाना है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है, श्रेया घोषाल और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में, ओमकारा फिल्म से, बहुत ही फिलोसफिकल सा सॉन्ग है और इसको सुन के हम भी कुछ दूसरी ही दुनिया में चले जाते हैं। बात हो रही है ड्राइविंग की, ट्रैफिक की और ट्रैफिक में धैर्य बनाए रखने की। रमा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? हमेशा वहाँ लिमिटेड स्पीड में चलाएं और आगे वाले वाहन से एक दूरी बनाए रखें, ज़रूरी है। नो लिसनिंग टू द कॉल वाइल ड्राइविंग, रवि जोशी मेरठ से। रवि, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये बात। रमा, मैं अनिल शर्मा, सरिता विहार निवासी। मेरा तो सुझाव है कि चलती सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए अपनी गाड़ी रोककर उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अनिल जी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि नन्ही गिलहरियाँ या कोई और जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो भी सड़कों पर न जाने क्यों दाना चुगने आ जाते हैं, क्योंकि दाना डाल दिया जाता है कोई भी, तो बहुत ही चौकन्ना होके जो है वो ड्राइव करनी चाहिए। कोई बुज़ुर्ग जो धीरे धीरे चलते हैं सड़क पार करने में, मदद के लिए करें उनकी। और मैं भी वरिष्ठ उम्र 70 वर्ष का हूँ और रोज़ सड़क पार करने में 10 से 20 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है। अनिल शर्मा लिख रहे हैं, ये बिल्कुल सही कहा आपने अनिल जी। मैसेज मसाला मिक्स में रमा यादव साहिबा जी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आपको भी आदाब। मुझसे वो दूर रहें तो कोई बात नहीं, दिल से दूर हों ऐसी मुझे चाहत नहीं। सड़क हो या परवाज पर चलना यारो, कहीं भी गफलत में आप हो ना नहीं। गुनौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली लिख रहे हैं और कह रहे हैं शुक्रिया। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को शुभ संध्या। मैडम जी, आपके कार्यक्रम के संदेश पुनः

विषयों से प्रेरित होकर आज के विषय पर मैं भी अपने विचार की कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। गाड़ी चलाओ सोच समझ कर, रखो नियमों का मान, सुरक्षित घर पहुंचना ही है चालक की पहचान, सीट बेल्ट बांधो हर दम, रखो सड़क पर ध्यान, मोबाइल पर बात न करना इससे बढ़ता है नुकसान, तेज रफ्तार का जोश कभी मत सिर पर चढ़ने दो, अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में मत पड़ने दो। गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना लिख रहे हैं। और भी कुछ कहते हैं कि अक्सर दुर्घटना का कारण स्पीड बनती है, पल भर की लापरवाही छीन लेती जीवन का दामन। और ये भी पता है ना कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से नमस्कार कहते हैं और कहते हैं कि सड़क पर ड्राइव धीरे करनी चाहिए और संध्या आपकी और जीवन मंगलमय हो, कोटि कोटि धन्यवाद लिख रहे हैं। यातायात के नियमों के पालन की बात कह रहे हैं, बल ये तो मैं भी कहूँगी। और देखिए ये गाना आपके लिए खास चला रही हूँ, सुनिए इस गाने को। लेकिन मैसेज करना मत भूलिएगा 9868107070, ट्रैफिक आप और आपकी कार या दुपहिया वाहन।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

यह है आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ रमा। 9868107070 पर आपको मैसेज करना है कि आप क्या करते हैं जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है। इरिटेट तो नहीं होते ना बिल्कुल भी, क्योंकि हम ही तो नहीं चल रहे ना, बहुत कुछ चल रहा है सड़क पर, उसका भी ध्यान रखना है हमको।

प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

बिल्कुल, ये है आकाशवाणी रेनबो, हमारा अपना साथी और आपके साथ और आप मेरे साथ। रमा जी, खूबसूरत गानों के साथ प्रेजेंटेशन और आवाज़ खूबसूरत है, फिर क्यों ना ड्राइविंग भी बेहतरीन होगी। रवि जोशी मेरठ से लिख रहे हैं, रवि क्या अभी ड्राइविंग कर रहे हो। दानिश खटौली से, रमा यादव कैसी हो आप, गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो बॉयज, अच्छी है। तपिक ये क्या लिखा है, बहुत दिन बाद आए हो, सॉन्ग अच्छे हैं, प्लीज़ मैसेज पढ़ लो। मैसेज तो पढ़ लिया, लेकिन आपने सब कुछ तो लिख दिया, पर जो मैंने मैसेज पूछा वो तो आपने नहीं लिखा, तो अब करूँ मैं शिकायत। गुड इवनिंग। अच्छा, मैं जब ड्राइव करती हूँ तो बहुत कई बार बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ट्रिपलिंग कर रहे हैं, दो बैठे हैं, ट्रिपलिंग ही नहीं, बीच में एक छोटा बच्चा भी बैठा है, हेलमेट नहीं लिया हुआ है, जिक जैक चला रहे हैं। मुखर्जी नगर के इलाके में तो स्टूडेंट्स बहुत रहते हैं और ऐसा बहुत होता है कि कहीं से भी निकल जाते हैं। कई बार मैं देखती हूँ कि जो लोग कार चला रहे हैं उनको हॉर्न देते रहो, अपनी मर्जी से वो इतना धीरे चला रहे हैं, अपनी मर्जी से वो इतना हाई स्पीड पर चला रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं, ये कितना गलत है। गुड इवनिंग मैम, जब मैं ट्रैफिक रोड पर होते हूँ तो दो बातों का ख़ास ध्यान रखते हैं, एक तो एम्बुलेंस का और हमसे ज़्यादा जल्दी में तो उसे स्थान देना। आई एम मजहर अली, तुगलकाबाद विलेज, दिल्ली से। बिल्कुल, जब एम्बुलेंस आती है तो हमें तो रास्ता देना ही होता है। नमस्ते मैम, मैं कृष्णा रायपुर छत्तीसगढ़। ट्रैफिक के नियमों का हमें तब एहसास हुआ जब परिवार में 2016 में कार आई। पैदल साइकिल बाइक पर बहुत लापरवाही किए जाते हैं, समझ की बात है कि सड़क पर आते ही हम सभी को सावधानी से काम लेना चाहिए। गुड इवनिंग, मैं तो स्वयं ड्राइव नहीं कर पाता, लेकिन मैं जिसके साथ भी जाता हूँ उन्हें गति और यातायात नियमों के पालन करने की ज़रूर सलाह देता हूँ। रंजीत कुमार मंडल लिख रहे हैं सिकटी अररिया बिहार से। फिर ये मैसेज आया, रेड लाइट पर व्यवहार। ये बहुत लंबे लंबे मैसेजेस, मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाता है। मोहम्मद सरफराज, इतने लंबे मैसेज कैसे पढ़ूँ, ना सबके ही पढ़ने होते हैं, फिर भी मैं की कोशिश करूं, प्लीज थोड़ा मैसेज छोटा भेजिए। रेड लाइट जब सामने आती सबको रुकना याद दिलाती, धैर्य रखो ना करो जल्दबाजी, यही है सड़क की सच्ची राजी। दो पहिया हो या चार पहिया, सबका सम्मान है सबसे बढ़िया, ना धक्का मुक्की ना ऊंची बात, मुस्कान से बनती है अच्छी बात। हॉर्न बजाकर क्या पाना है, ये बात आपने अच्छी लिखी, बहुत ज्यादा। हॉर्न बजाकर क्या पाना है, सबको लोग सब लोग टक टक टक टक हॉर्न दिए जाते हैं, सबको घर सुरक्षित जाना है, नियम माने संयम धरे, मिलकर बेहतर सफर करें। ट्रैफिक में जो शांति अपनाए वही सच्चा नागरिक कह लाए, सम्मान सहयोग और सद्भाव, यही है सड़क पर अच्छा व्यवहार। वैसे मोहम्मद सरफराज आलम जी, आपने बहुत ही सुंदर ये कविता लिखी। हेलो मैम, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली, हाउ आर यू। ऑन टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट व्हाइल ड्राइविंग इफ एनी एम्बुलेंस कम्स इन आवर वे वी शुड गिव इट स्पेस टू गो अहेड सो दैट इफ देयर इज एनी पेशेंट इन साइड द एम्बुलेंस दैट पर्सन कैन रीच द हॉस्पिटल ऑन टाइम एंड कैन बी सेव्ड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भुवनेश, क्योंकि वैसे ही हमारी सड़कों पर इतना ट्रैफिक है कि अगर हम भी रास्ता नहीं देंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो क्यू कर लिया है, मैं बजा रही हूँ उसको। आप अपने मैसेजेस भेजिए ना मुझे 9868107070 पर, कि आप क्या करते हैं जब ट्रैफिक होता है, आप क्या करते हैं जब कोई दुपहिया आपके

तो आप सुन रहे हैं रेनबो और रेनबो पर आपके साथ हूँ मैं रमा और बातें कर रहे हैं ट्रैफिक की, क्योंकि घर तो जल्दी पहुँचना होता है, काम पे जल्दी पहुँचना होता है। थैंक्स किस लिए? अच्छा, क्योंकि मैंने आपके मैसेज को पढ़ा तो वो तो मुझे पढ़ना ही था। मज़हर थैंक्स लिख रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है शुभ संध्या। रमा जी, मैं तो ट्रैफिक नियमों का बखूबी पालन करता हूँ, टू व्हीलर चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करता, कोई ऐसा काम करता है तो उसे भी टोकता हूँ। कार्यक्रम गाने अच्छे लग रहे हैं, देहरादून से आलोक पमार और मिनी लिख रहे हैं। देहरादून में तो बाइसिकल्स भी काफ़ी चलती हैं, है ना? यस मैडम, लेकिन ध्यान मेरा सड़क पर ही है। वैसे भी मेलेडियस म्यूजिक थेरेपी एकाग्रता बढ़ाता है, रवि मेरठ से लिख रहे हैं। अच्छा, रवि ड्राइव कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, म्यूजिक सुनते हुए ड्राइव कर सकते हैं, मैं जानती हूँ, मैं भी करती हूँ। नमस्कार रमा जी, आप का शो हमेशा ही अच्छा लगता है। रोड सेफ्टी इज मस्ट। मयंक लिख रहे हैं मंडी हाउस से। डियर रमा जी गुड इवनिंग। डियर, काफ़ी टाइम से आपकी स्वीट वॉइस में शो एंजॉइंग, बट मेरे पास कुछ नहीं, बट जिनके साथ जाती हूँ और हर तरह से ध्यान होता है, बस प्रेयर करती हूँ कि सब ठीक हो। मिसेस धर्म बाटिया रोहतक से लिख रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सिग्नल पर सबसे पहला काम स्टॉप लाइन के पहले रुकना और गाड़ी बंद करना, सीट बेल्ट लगाए रखना और वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखना। रात में यू टर्न लेफ्ट या राइट मुड़ना हो तो इंडिकेटर को ज़रूर ऑन करें। प्रवीण चौहान लिख रहे हैं ऐसा। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़ावन गाँव में से ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करता हूँ और मेरे दोस्तों को भी करवाता हूँ। वो अगर ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो मैं उतर जाता हूँ। दो बार हो गया है मेरे साथ। देखिए प्रोग्राम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है, शाम से रात की ओर हम जा रहे हैं। 9868107070 वो नंबर है जहां आप भी मुझे बता सकते हैं कि जब आप ड्राइव करते हैं तो आप क्या करते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
3: आकाशवाणी रेनबो पर मैसेज मसाला मिक्स का जो समय है वो बिल्कुल खत्म होने को है। वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम लेकर लिपिका आने को है। रमा जी, आई अवॉइड ड्राइविंग। रवि जोशी मेरठ से लिख रहे हैं, मुझे लगा जल्दी से आपका नाम पढ़ दूँ। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाहजहाँ बेगम मरियम, वो कह रहे हैं कि ध्यान से ड्राइव करो। बस्तर छत्तीसगढ़ से शेख अनवारुल खान, रात में ड्राइव करते समय खास ध्यान रखो। रमा जी, आपने आज मेरा मैसेज नहीं लिया, ले लिया जी। कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से बेगम जवाहर कैंप मोहम्मद इम्तियाज एंड सलमा बेगम, बिल्कुल। और अब मैं आपको एक घंटे के बाद मिलूंगी यहीं पर रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ये लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एवियों में इस समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UGC परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छाया श्रमिक योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़ियों और तराई डुअर्स क्षेत्र में बंद पड़े 25 चाय बागानों को फिर से खोलने के प्रयास किए जाएंगे। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनन से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनन पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनन में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक आवश्यक होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल होंगे आमने सामने। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: tonight. Great choice of music there, Train, Hey Soul Sister, for Manisha and Rajini in the Radha India listeners. Time now to split for a short commercial break. Stay with us, we have 24 minutes to go.
1: Talent to hai. पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए.
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com. कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी.
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा.
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली. और सबसे

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी आपकी वाणी और रेनबो है ये, और रेनबो पर मैं हूं और साथ में है म्यूजिक और मस्ती।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक। हिमालय की गोद से लेकर
0: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

तो म्यूजिक मस्ती से मैं चलती हूँ, दोबारा मिलने आऊंगी आपसे जल्दी ही यहीं पर, बिल्कुल आकाशवाणी रेनबो पर। और यहाँ पर चला कर जा रही हूँ आपके लिए ये गाना, म्यूजिक मस्ती मस्ती चलती रहेगी फुल ऑन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम आपकी याद आती रही। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मुक्ति सैनी। और इस समय इस लम्हे में खो जाने का दिल करता है, बहुत खामोशी, बहुत इत्मीनान से ये वक्त सिर्फ हमारा है और सिर्फ हमारा है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। कभी दूर, कभी वक्त तो कभी हालात हमें उनसे दूर कर देते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। और आज का ये खास कार्यक्रम उन सभी लोगों के नाम है जिनकी यादें हमारे दिल में बसती हैं, चाहे वो कोई दोस्त हो, कोई अपना हो, या कोई ऐसा शख्स जो हमारे साथ नहीं है लेकिन उसकी याद हर पल हमारे साथ चलती है। तो बताइए, आपको किसकी याद आती है? कौन है वो शख्स जिसकी याद आज भी आपके दिल में बिल्कुल वैसे ही मुस्कान ले आती है, आंखों में नमी ले आती है जब वो आपके सामने होते हैं, या फिर उनकी यादें एक याद बनकर आपके सामने खड़ी हो जाती है, एक हकीकत बनके। सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत और जुड़ जाते हैं उन यादों के साथ जिनके सहारे हमें उनकी याद आती है, क्योंकि हम हैं तो वो है और वो है तो हम हैं।

कहते हैं कि किसी की याद बार बार आए तो समझ लीजिए कि उस रिश्ते ने दिल में एक खास जगह बना ली है। कभी किसी दोस्त की याद आती है जिसके साथ घंटों बातें किया करते थे, कभी किसी अपने की याद आती है जो अब दूर है, और कभी किसी ऐसे इंसान की याद आती है जिसने जिंदगी को जीना सिखाया था, हंसना सिखाया था, बोलना सिखाया था, देखना सिखाया था। यादें अजीब होती हैं, ना इन्हें छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन ये दिल को हंसा भी देती हैं और कभी कभी रुला भी देती हैं। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ लोग और कुछ पल हमेशा हमारे साथ चलते रहते हैं, साथ साथ। इसीलिए अगर कोई अपना आज आपके साथ है तो उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि कल वही एक खूबसूरत याद बनकर हमारे साथ रह जाएगी और उस शख्स को हम ढूंढते फिरेंगे। तो अब

एक बहुत ही खूबसूरत से गीत का वक्त हो चला है और शायद इन यादों के पिटारे में कहीं ना कहीं हम आप गुम हैं और उन यादों को, उन शख्स को, उन पलों को कहीं ना कहीं टटोलने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे जहन में तो बसते हैं लेकिन शायद हम अपनी आँखों में उन्हें उतरने नहीं देते हैं। तो फिर क्यों बांध रखा है जंजीरों में इन यादों को? खोल दीजिए ना, आने दीजिए ना सामने वो शख्स, वो लम्हा, वो समय भले ही हमारे साथ अभी ना हो लेकिन वो यादें बहुत ही मीठी यादें हैं जिन्हें आज आप साक्षात अपने सामने देख सकते हैं और उस एहसास को जी सकते हैं जो बरसों आप उनके साथ जिया करते थे। और शायद ये उस भगवान का बहुत ही खूबसूरत हमारे लिए एक तोहफा है, एक खूबसूरत एहसास है जिसे हम जी सकते हैं यादों के सहारे। प्रोग्राम आपकी याद आती रही में बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजी दोस्त मुक्ति सैनी।

यादों की बात हो और कविता का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है? कवि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था कि जो बीत गई सो बात गई। पर दोस्तों, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो बीत तो जाती हैं पर दिल से कभी जाती नहीं, वो हमेशा याद बनकर हमारे साथ चलती रहती है। और इसी एहसास को कुछ पंक्तियों में यूं कह सकते हैं, कुछ चेहरे दिल में ऐसे बस जाते हैं, वक्त गुजर जाता है वो याद आते हैं, मिलना हो या ना हो मुकद्दर की बात है, उनके किस्से हर दिन मुस्कुराते हैं। यादों का दीपक दिल में जलता रहता है, कोई दूर होकर भी अपना लगता रहता है, वक्त चाहे कितनी ही करवट बदल ले, कुछ नामों का जिक्र हमेशा चलता रहता है। जिंदगी में ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे दिल के करीब तो बहुत होते हैं, लेकिन जब दूर चले जाते हैं, कोई भी हालात, कोई भी मंजर, कोई भी तकलीफ उसे रोक नहीं पाती है, बस वो एक रेत की तरह हाथों से निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं और निकलते जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो दिल में बसी यादें हैं, हम उन्हें बस संजो कर रखना चाहते हैं, एक डिब्बे में अपने बंद आँखों में कैद करके रखना चाहते हैं, और वही यादें बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं और कहीं ना कहीं जीने का सबक, जीने की सीख और ऐसे एहसास दे जाती है जिसे हम जिंदगी में सही गलत की पहचान कर पाते हैं, किस राह पर चलना है, क्या राह सही है, वो हमारे और भी ज़्यादा करीब आ जाती है। तो उन्हीं यादों के साथ आप भी इस पलों को हमारे साथ बिताते चलिए, क्योंकि ये जो समय है 9 से 10 का, इसमें बहुत सी यादें ऐसी आएंगी जिनको शायद हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, कहीं ना कहीं धुंधला चुकी हैं, लेकिन सब वो एक हकीकत बन के आज हमारी आंखों के सामने ज़रूर आएंगी। हम और आप मिलकर उन यादों को जिएंगे, उन सुनहरी यादों को जिएंगे जिनसे शायद हम पर्दा हटाना तो चाहते हैं पर हटा नहीं पाते हैं। आप और हम मिलकर उनसे एक मुलाकात करते हैं।

दोस्तों, यादें बड़ी अजीब होती हैं। ये बिना दस्तक दिए चली आती हैं। कभी किसी पुरानी तस्वीर को देखकर, कभी किसी रास्ते से गुजरते हुए, तो कभी किसी ऐसे गीत को सुनकर जिसे हम किसी खास इंसान के साथ सुना करते थे। लेकिन यादों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे हमें ये एहसास दिलाती है कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते जिए हैं जो सचमुच अनमोल थे। हर रिश्ता हमेशा साथ रहे ये जरूरी नहीं, हर रिश्ता हमेशा साथ रहे ये जरूरी नहीं, लेकिन हर अच्छा रिश्ता हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाता है। अगर आज आपको किसी की याद आ रही है तो उस याद को बोझ मत बनाइए, उसे खूबसूरत मुस्कान की तरह अपने दिल में सजा कर रखिए। क्योंकि कुछ लोग भले ही दूर हो जाएं, लेकिन उनकी दी हुई खुशियां, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, सुनहरी यादें बनकर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रहे। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजी दोस्त मुक्ति सैनी। यादों के इस घेरे में हम आप घिरे हुए हैं और शायद यहीं घिर के रहना चाहते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत यादें हैं ना कि इनका दामन छोड़कर जाने का दिल ही नहीं करता। बस लगता है कि धीरे धीरे ही सही

वो बातें, वो मुलाकातें, वो साथ बिताए हुए लम्हे और आँखों में एक हल्की सी नमी छोड़ जाते हैं। दोस्तों, किसी की याद आना कमजोरी नहीं होती, ये इस बात का सबूत है कि वो इंसान कभी आपकी जिंदगी में बहुत खास था। और शायद इसी वजह से आज भी उसका जिक्र आते ही दिल की धड़कनें ठहर सी जाती हैं। कई बार हम किसी को कुछ कह नहीं पाते, लेकिन दिल के किसी कोने से एक आवाज जरूर आती है, काश वो एक बार फिर मिल जाए, काश एक बार फिर वैसी ही बातें हो जाए, काश वक्त थोड़ी देर के लिए लौट आए। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, यादों को साथ लेकर चलना ही शायद प्यार का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, ये बस यादों में बदल जाते हैं और फिर उम्र भर हमेशा हमारे साथ चलते रहते हैं, सदा के लिए, हमेशा के लिए।

और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम आपकी याद आती रहे में, आप सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। अगर आज आपको अपने किसी व्यक्ति से, जी हाँ, किसी खास से सिर्फ एक बार बात करने का मौका मिले, जो अभी आपके साथ नहीं है, और उससे बात करने का अगर आपको मौका मिले, तो आप उनसे क्या कहेंगे? शायद कोई कहेगा, आपकी बहुत याद आती है। शायद आप में से कोई कहे, आपके बिना सब कुछ अधूरा है। और शायद कोई सिर्फ इतना ही कह पाए, धन्यवाद मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। कुछ लोग बिछड़कर भी बिछड़ते नहीं, दिल के रिश्ते कभी टूटते नहीं। यूं तो मिल जाते हैं नए लोग सफर में, पर कुछ चेहरे उम्र भर कभी भूलते नहीं। तो इन खूबसूरत यादों के साथ और इन तन्हा यादों के साथ, या ये कहें कि ये यादें बहुत कुछ समेट के हमारे साथ जो है ना, वो कोई आसान बात नहीं है। इसे हमें ही समझना होगा और हमें ही अपने साथ कैद करके रखना होगा, क्योंकि ये वो एहसास हैं, ये वो जज्बात हैं, जो एक लंबे अरसे तक, जो एक लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे, भले ही वो शख्स हमारे साथ हो ना हो। इसीलिए आपके साथ जो अभी है, उनकी कद्र कीजिए, उनसे प्यार कीजिए और उन्हें हमेशा अपने साथ समेट कर रखिए। फिलहाल प्रोग्राम आपकी याद आती रही में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे 11 बजे प्रोग्राम रंगे महफिल में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के वियो में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई जिम्मेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर कर रहे हमारे संवाददाता अंकित कुमार की एक रिपोर्ट।
1: इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी पूरी तरह रणनीतिक है। कई G7 अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वे अब भारत को सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी नवाचार के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधारभूत भागीदार के रूप में उभरा है। भारत के दृष्टिकोण से यह G7 शिखर सम्मेलन अपने राष्ट्रीय हितों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। नई दिल्ली का मुख्य जोर व्यापार, नवाचार और मजबूत सप्लाई चेन में गहरे सहयोग पर है, और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह के दौरान कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG Ramji की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कार्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की है कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। मध्य भारत की यह पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि यह दावा निराधार है। इकाई ने कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से संचालित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। मौसम विभाग ने कल उप

मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की पहली बार एकमात्र तलवारबाज ओलंपिक खिलाड़ी सीए भवानी देवी की अगुवाई में 24 सदस्यीय भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी।

मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रंगे महफिल में, एक ऐसा कार्यक्रम जहां अल्फाज दिल से निकलते हैं और सीधा दिल तक पहुंचते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, और अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर गजलों की उस खूबसूरत दुनिया में सफर करेंगे जहां मोहब्बत है, यादें हैं, एहसास है और जिंदगी के अनगिनत रंग हैं। गजल केवल शायरी नहीं बल्कि दिल की आवाज है। कभी ये मुस्कुराने की वजह बनती है तो कभी बीते हुए लम्हों की याद दिला जाती है। गजल के हर शेर में कहानी छिपी होती है और हर कहानी में एक एहसास। तो आइए, इस महफिल का आगाज हम कर चुके हैं और इस कारवां को हम और आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं बेहतर गीत गजल। बस आप बने रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, प्रोग्राम रंगे महफिल खास आपके लिए।

वाह क्या खूबसूरत अंदाज था। गजल की यही तो खासियत है कि कुछ ही शब्दों में वे दिल की पूरी दास्तान कह जाती है। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपने जज्बातों को शब्द नहीं दे पाते, लेकिन गजल वही अनकहे एहसास हमारे सामने रख देती है। कभी किसी की याद, कभी किसी का इंतजार और कभी किसी की मुस्कान, सब कुछ गजलों में बड़ी नजाकत से समाया होता है। और कहा भी गया है, कुछ ऐसे एहसास होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और गजल उन्हीं एहसासों की जुबान बन जाती है। तो बस गजलों का ये दौर अब शुरू हो चुका है। एक से बढ़कर एक गजलें रंगे महफिल प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचती रहेंगी। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सहनी, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं।

और दोस्तों, अब बात करते हैं, हम उनका जिक्र करते हैं और आप उन्हें बहुत ही अच्छे से उनसे रूबरू हो जाएंगे। अब जिक्र उस शायर का जिसकी शायरी में मोहब्बत की नरमी भी है, तन्हाई की खामोशी भी है और जिंदगी की गहरी सच्चाइयां भी। हम बात कर रहे हैं शहरयार साहब की। उनका असली नाम अखलाक मोहम्मद खान था, लेकिन अदबी दुनिया उन्हें शहरयार के नाम से जानती है। शहरयार की गजलों में अल्फाज की सादगी और एहसासों की गहराई देखने को मिलती है। उन्होंने सिर्फ किताबों तक ही नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में भी अपनी शायरी का जादू बिखेरा। उमराव जॉन फिल्म के गीत दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती के, और ये क्या जगह है दोस्तों, आज भी अदब और संगीत के चाहने वालों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी शायरी हमें सिखाती है कि खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, और कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि शहरयार का कलम आज भी उतना ही ताज़ा और असरदार लगता है जितना अपने दौर में था। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और आगे बढ़ते हुए यही कहना चाहूंगी, इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ आइए सुनते हैं शहरयार साहब की एक दिलकश गजल, जिसे सुनकर आप भी हमारे साथ मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और आज शहरयार साहब के जन्मदिवस पर ये बहुत ही सुंदर सी गजल आपके लिए, उन्हें याद करते हुए आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं।

0: भोसले ने, और बहुत ही सुंदर आवाज़, साथ ही बहुत ही खूबसूरत लिखा है शहरयार साहब ने, और यही आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे आपके समक्ष हम यही रख सकते हैं। और यही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बातें आगे बढ़ती रहती हैं, चीज़ें जज्बात आगे बढ़ते रहते हैं, और बहुत कुछ हम सभी कहना चाहते हैं। कहते हैं कि हर इंसान के दिल में एक छोटी सी महफिल बसती है जहाँ कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ मीठी यादें और कुछ अनकही बातें हमेशा मौजूद रहती हैं। जब कोई गज़ल सुनाई देती है तो लगता है जैसे वही महफिल सज उठी हो, और शायद यही वजह है कि गज़लें सिर्फ सुनी नहीं जाती हैं, महसूस भी की जाती हैं। तो इसी तरह गज़लों का कारवा हमारे साथ बना रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं आपके साथ।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

प्रोग्राम रंगे महफिल में मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी और प्रोग्राम अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा है। गजलों का ये सिलसिला आपके साथ और हमारे साथ बना रहेगा। गजल का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि जिंदगी के हर रंग से है। इसमें खुशी भी है, उम्मीद भी है, तन्हाई भी है और सपनों की उड़ान भी। कभी कभी एक गजल हमें उन यादों तक ले जाती है जिन्हें हम कहीं पीछे छोड़ आए होते हैं, और कभी यही गजल हमें ये एहसास दिलाती है कि हर गुजरता हुआ पल अपनी एक अलग कहानी लेकर आता है। अगर आप भी इस समय किसी खास

अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, लेकिन गजलों का असर अभी खत्म नहीं होता। अच्छे अल्फाज और मधुर सुर हमेशा हमारे दिलों में बसे रहते हैं। गजल हमें सिखाती है कि भावनाएं चाहे जैसी भी हो, उन्हें खूबसूरती से व्यक्त किया जा सकता है। यही वजह है कि बरसों बाद भी गजलें लोगों के दिलों में उसी तरह जिंदा रहती है। अब समय है महफिल को आगे बढ़ाते हुए कुछ आखिरी पेशकशों का। उम्मीद है कि आज का ये सफर आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आखिरी चंद गजलें जो है वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, और इसी वादे के साथ एक खूबसूरत गजल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, और उम्मीद है कि सभी गजलों की तरह ये गजल भी आपको पसंद आएगी।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: दोस्तों, गजलें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। कभी एक मिसरे चेहरे पर मुस्कान ले आता है, तो कभी एक शेर बरसों पुरानी यादों का दरवाजा खोल देता है। जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो साथ रहकर भी खामोश रहते हैं, और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दूर होकर भी हर पल हमारे साथ चलती हैं। गजलें इन्हीं अनकहे जज्बातों का आईना है। इसी के साथ रंगे महफिल में आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि गजलों की ये रात आपके दिल को सुकून और मुस्कान दे गई होगी। फिर मुलाकात होगी कुछ नई गजलों, नए एहसासों और नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी को दीजिए इजाजत, और मुक्ति कहेगी जहां अल्फाज सुरों से मिल जाए, जहां अल्फाज सुरों से मिल जाए और सुर दिलों को छू जाए, वहीं से शुरू होती है रंगे महफिल। मुक्ति कहेगी आपसे इतना ही कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्यार की इज्जत कीजिए। आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और ये खूबसूरत सा आखिरी ट्रैक आज के रंगे महफिल में आप सभी के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर बल दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों तथा व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि इन फैसलों से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लगभग 4 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुवाहाटी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को इस वर्ष की विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और ये इसकी बढ़ती वैश्विक पहचान को दर्शाता है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही 45 टन चिकित्सा सामग्री भेज चुका है और जरूरत के अनुसार आगे भी मदद देने को तैयार है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसियन शहर के पास स्थित बर्गिन स्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में हैं, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब करते हैं शुरुआत अपने रात्रिकालीन सफर की। और इस सफर में पहला कार्यक्रम जो हम आपके लिए लेकर आए हैं यह है जीरो आवर शो। आपके साथ रहेंगे हम पूरी रात लेकर सुरों का साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है।

साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: हाय
0: कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: हाय।
0: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

आज नई समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता

सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से भी मुलाकात की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनसीआर के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श किया गया। रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 42 किलोमीटर लंबे चंपा कोरबा थर्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 755 करोड़ रुपए है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि इस परियोजना में चंपा और कोरबा के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण शामिल है, जिसमें पहले से मंजूर हो चुके मडवारानी सारकगुंडिया सेक्शन को शामिल नहीं किया गया है। इस कॉरिडोर की पहचान भारतीय रेल के मिशन 3000 MT और हाई सिटी नेटवर्क कॉरिडोर के अंतर्गत की गई है, जिनका उद्देश्य माल ढुलाई को और बेहतर बनाना तथा देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मंजिल तो खैर किसकी कौन बताता है, ये तो वक्त तय करता है, लेकिन कई बार होता यह है कि किसी के ज़रिए आपको मंजिल का रास्ता मिल जाता है, किसी ख़ास इंसान या किरदार के ज़रिए, या फिर किसी किस्से या कहानी या घटना के ज़रिए जो आपके जीवन में कभी घटी हो, और वहीं से आपको अंदाज़ा लग गया हो अचानक कहीं चलते चलते कि यहाँ से शायद वो रास्ता होकर जाता है जो मुझे मेरे मकाम तक लेके जाए, मेरी मंजिल तक लेके जाए। और ऐसा होता है, कई बार हम ध्यान देते हैं, कई बार नहीं भी दे पाते, लेकिन अगर आप सब कुछ चौकस होकर देखें तो ये मैंने कहा ना कि कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ऐसा होता है। आप जब स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं स्कूल में या कॉलेज में, वहाँ आपके माता पिता की गाइडेंस आपको रास्ता बताती है। कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने आपको बता दिया हो कि ये करना है और वो आप कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि उनकी किसी बात में आपकी मंजिल आपको दिखने लग जाती है। खैर, कहने का जो मतलब है इतने फलसफे गढ़ने का, वो ये है कि हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सकारात्मकता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिविटी मिल ही जाती है अपने परिवार में, अपने यार दोस्तों में, स्कूल कॉलेज में, या फिर वहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं। कई बार सड़कों पर चलते हुए हमें कई बार लग जाता है कि हाँ, यहाँ से कुछ मुझे सूझा और मुझे ये करना है, तो पॉजिटिविटी का रास्ता आपको ढूंढना पड़ता है, आप ढूंढ लेते हैं, मिल जाता है। सिर्फ पॉजिटिव रहना है, आपको मंजिल भी मिल जाएगी। फिलहाल अभी हमारी मंजिल है आप, और अगर जगे हुए हैं आप तो आपकी मंजिल है हम, और प्रोग्राम है सुहानी रात। रात को सुहाना करने का ये जो खूबसूरत अभियान है, आज इसकी अगवानी मैं कर रहा हूँ आकाशवाणी रेनबो 102.6 के मार्फत। और अगर आप कहीं दूर दराज में हैं, दिल्ली NCR या फ्रीक्वेंसी की जद से बाहर, तो वहाँ आपको मिलेगा न्यूज़ ऑन एयर ऐप का रास्ता, जिससे आप हमें देश और दुनिया के कहीं भी किसी भी हिस्से से, किसी भी कोने से बैठकर सुन सकते हैं। फिलहाल बता दूं, समय हुआ 1:13 और कार्यक्रम का आगाज़ हम कर चुके हैं, जिसका नाम है सुहानी रात, मेरे यानी रजत के साथ, यहीं आकाशवाणी रेनबो पर। एक बार फिर बता दूं, आप जुड़ना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो 9868107070 भी एक रास्ता है। 9868107070 पर आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। मैं हूँ रजत, आपका इस्तकबाल करते हुए, आपको खुश आमदीद कहते हुए इस शानदार प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहानी रात, मेरे यानी रजत के साथ।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए

कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और

सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ मौसम के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वो जल्दबाजी में बुआई ना करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वो बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनसीआर के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श किया गया। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक डिजिटल रूप से बदले गए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल पी आर शंकर ने नए सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की नियुक्ति की आलोचना की है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये वीडियो एआई की मदद से तैयार किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर समय हुआ है 2:05 और आइए अब ले चलते हैं हम आपको हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका शीर्षक है भुलाए ना बने। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही गीतों को जिन्हें कभी भी भूल पाना संभव नहीं।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ मौसम के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इसमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में NCR के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा परिषद और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 24 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के अनुसार अब हर वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और नियमित कक्षाएं 25 जून से शुरू होंगी। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, सुस्वागत है एक बार फिर से मिडनाइट मेलोडीज। इस बार नए रंग में आती हुई, नया रंग इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि रंग मैं भर के लाया हूँ इसमें, और ये रंग आपको सराबोर करने वाले हैं अब से लेकर आने वाले 40-45 मिनट तक, जब हम बॉलीवुड के खूबसूरत नंबर्स, खूबसूरत गाने, वो गाने जो अमर हैं, जो गाने चलते रहें, चाहे वो 90s की बात हो, 80s की बात हो या उसके बाद की बात हो, आपसे रूबरू कराएंगे एक बार फिर से। और खूबसूरत गानों के साथ साथ रहेगा आपके दिलकश ख्यालों का भी इंतज़ार, जो कहीं ना कहीं इन्हीं गानों की डोर से बंधे रहे एक ज़माने में। आज भी जब हम रंगों की बात करते हैं तो आपके ख्याल, आपके ख्यालात, आपके जज्बात, आपके वो अरमान जो अभी किसी लिफाफे में है और वहाँ से निकलकर परवान चढ़ने वाले हैं, उनको साथ लेकर हम चलना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके साथ मैसेजेस पर बात होती रहे, अगर हो सकता है तो। लेकिन आप अगर सुने सोए नहीं हैं तो जुड़िए इस प्रोग्राम के साथ, मिडनाइट मेलोडीज जिसे हम कहते हैं, और एक अच्छे खासे कलेक्शन के साथ मैं हाजिर हूँ। रजत, 3:14 हो चुके हैं घड़ी के मुताबिक, आप जुड़े हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी रहेगा आपका इंतज़ार कि आप सुने और सराहें, आपको लगे कि रात जगे तो क्या किया, सोने हम नहीं देंगे आपको अगर आप सोए नहीं हैं तो। लेकिन हाँ, गानों के साथ आपकी जो यादें जुड़ी हैं, उन यादों को ज़रूर एक नए कैनवास पर रंगने की कोशिश करेंगे, उकेरने का प्रयास करेंगे, ये वादा जरूर कर रहा हूँ मैं। रजत, आकाशवाणी रेनबो 102.6 और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी 9868107070968107070 है हमारा नंबर, व्हाट्सएप का नंबर, जिससे भी आप जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके दिल में क्या है। तो है आप सभी का शान शान इस्तकबाल, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम एक बार फिर बता दूं, मिडनाइट मेलोडीज, मेरे यानी रजत के साथ।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 से 9 तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: हिमालय की गोद से लेकर
8: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
7: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
8: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
7: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक।

0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। NTA ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। इस आयोजन के साथ ही 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह का शुभारंभ भी होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाश

0: वाणी करता है सलाम, इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

पौराणिक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने कहा कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों से जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। NTA ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के

साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। इस आयोजन के साथ ही 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह का शुभारंभ भी होगा। फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप आई मुकाबले में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। वहीं लॉस एंजलिस में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। मियामी में उरुग्वे और सऊदी अरब ने 1-1 से ड्रॉ खेला, जबकि सेटल में खेले गए ग्रुप जी मुकाबले में बेल्जियम और मिस्र की टीमें भी 1-1 की बराबरी पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह के 5:11 और समय हो चला है भक्ति संगीत पर आधारित हमारी दैनिक हमारी नियमित प्रस्तुति आराधना का। इसका आगाज इसका शुभारंभ हम कर चुके हैं इस गणपति वंदना से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आगे भी सुनते रहेंगे आप आने वाले अगले लगभग पौने घंटे तक भक्ति संगीत पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम आराधना। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं। आप देश के हर कोने और विदेशों के भी हर हिस्से से हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं रजत।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,

0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।